0: Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front पेज पे रहूँ।
5: Front पेज का तो पता नहीं, but तेरा पेज 3 में होना मेरी guarantee है।
4: कैसे?
5: Page 3 eatery?
4: No, not another restaurant again.
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
6: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
7: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
10: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
14: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
13: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
14: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
15: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
16: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
17: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी।

तुझ बिन जाने क्यों। आई थिंक ये एक सवाल रहता है हमारे मन में, स्पेशली फॉर समबडी क्लोज वेरी क्लोज, जिसको हम समझते हैं दैट दे आर दी वन। और वन नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं पेरेंट्स के साथ और दोस्तों के साथ, बहुत खास हमारे कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड। मैं भी ये कोशिश करती हूँ सोचने की कि ऐसा क्यों कि ये इंसान जो है इतना स्पेशल है एंड व्हाई नॉट दी अदर पर्सन। बट बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं दैट वी कैन नॉट डिटरमिन अ लॉट ऑफ टाइम लॉजिकली। मुझे ऐसा लगता है हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। और हमारे एक आरजे है, एंड आई विल टेल दिस, हमारे फनीशा की ही आरजे है, सो आई वोंट नेम इट, बट मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, एंड व्हेनेवर वी मीट, अगर वो सुन रही होगी तो समझ जाएगी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। व्हेनेवर वी मीट, हम लोग कहीं पर भी मिलते हैं, किसी पार्टी में या कहीं, एंड शी सेज दैट एंड आई से दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बचपन की बिछड़ी हुई फ्रेंड मिल गई है, इवन दो वी मेट हेयर इन द स्टूडियो ऑफ फनीशा रेडियो। और वो भी यही कहती है कि पारो तुम्हें मिलकर ऐसा लगता है कि मतलब इसको तो मैं पिछले जन्म से जानती हूँ। ऐसा क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ तो है तार हमारे बंधे हुए, और इन्हीं बंधे हुए तारों को समझने के लिए तो हम ये शो करते हैं, एंड वी ट्राई टू मेक दोज कनेक्शंस इवन स्ट्रॉन्गर इन दिस शो विद पारो। कोई गाना सुनना चाहते हैं ट्यूसडे इवनिंग का, कोई परफेक्ट गाना अगर आपके है जहन में, मैं इतना स्ट्रेस नहीं डालना चाहती हूँ, परफेक्ट का स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी गाना आप सोच रहे हैं वो परफेक्ट ही है, आई कैन टेल यू दैट, बिकॉज इट्स परफेक्ट फॉर यू, सो इट मस्ट बी परफेक्ट फॉर द इवनिंग। 9723555555 पर कॉल कर सकते हैं, आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू।

0: Phanisha Radio, you are on air.
1: Hi, ma'am. Can you play Dhurandhar song, Destiny?
0: धुरंधर के गाने की आप फरमाइश कर रहे हैं और इतने नम्र तरीके से कि मैं तो डरी गई. धुरंधर yes. का डेस्टिनी, ऐसे आपको बोलना चाहिए, मैडम प्ले धुरंधर डेस्टिनी. तब आएगा ना कुछ धुरंधर वाला फ्लेवर. अब वो फिल्म ऐसी है और आप ने जब बोला तो मुझे लगा कोई बड़ा ही स्लो सा गाना आप कर रहे होंगे रिक्वेस्ट, पर यस आई विल प्ले. सर आपका नाम?
1: राहुल. इसमें बहुत अच्छा रैप है, अगर इफ यू लिसन टू द लिरिक्स ऑफ द रैप, इट्स अमेजिंग.
0: ओह यस डेफिनेटली आई विल डू दैट. अगर आप मुझे सुनते हैं, यानी कि पारो को, मैं बता देती हूँ कि मैं पारो हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपने मुझे सुना है तो आपने ये जरूर पता होगा कि आई लव लिरिक्स. मैं लिरिक्स की जब भी मौका होता है बात करती हूँ, तो ये भी सुनते हैं और थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे. यू कैन कॉल बैक इफ यू एग्री डिसएग्री और वॉन्ट टू एड समथिंग. ओके राहुल जी, घर वापस लौट रहे हैं? हैप्पी जर्नी. ओके बाय. अगला गाना मैं राहुल जी का तो चलाऊंगी, लेकिन उसके पहले तानिया जी ने गाने की रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने मेरी बात के बारे में एक बात बोली, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि सम पीपल आर सो स्पेशल, देयर इज नो रीजन, राइम रैशनल कई बार हमें नहीं होता. कई बार होता है कि कुछ रैशनल कि मे बी दिस पर्सन इज नाइस और डज समथिंग नाइस फॉर अस, लेकिन हो सकता है उससे भी बहुत ज्यादा नाइस करने वाले लोग हों लेकिन वो हमें इतने पसंद ना हो. तो इनके साथ क्या तार जुड़े हुए हैं, कौन सा हमारा गिटार वायलिन वाला रिश्ता है, ये कई बार हम समझ नहीं पाते. और यही चीज तानिया जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे परिवार वाले हों, चाहे कुछ परिवार वाले बाद में बन जाते हों, जैसे शादी होती है तब परिवार बन जाता है, कई बार दोस्त बाद में बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ऊपर वाला ये रिश्ते ये लोग हमारे लिए भेजते हैं. ये कह सकते हैं लोग पहले से होते हैं, हमें ढूंढने होते हैं. कैसे ढूंढेंगे आप? कीप लिसनिंग टू फर्निशर रेडियो 104.9 FM.

ये प्रॉब्लम क्या है भैया अदिति का? इस गाने में जिनेलिया जो है वो अदिति का रोल कर रही है, आई थिंक अदिति का ही रोल कर रही है वैसे, मुझे लगता है फिल्म बहुत पहले देखी है, जाने तू या जाने ना, लेकिन अभी मैं इस गाने को इतने सालों बाद सुन रही हूँ, काफी पुरानी पिक्चर है, एंड आई एम रियलाइजिंग कि इसमें इनका नाम अदिति है, क्योंकि वो कह रहे हैं अदिति मुस्कुरा दे जरा, हंस दे, मतलब बेचारे ने पूरा गाना घसीट दिया लेकिन अदिति जी के चेहरे पर स्माइल नहीं आई। प्रॉब्लम क्या है अदिति जी का? इतना अगर कोई खुशामद करे तो मतलब मैं तो ठाके लगा के हंस दूं। एंड विद दैट आई वांट टू टेल यू दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय देसी मंडी, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन इज देसी मंडी, एंड इट हैज अमेजिंग ऑफर्स इफ यू आर क्रेविंग मोर फॉर लेस, हु इज नॉट राइट? दिस वीक हैज यू कवर्ड। मंडे एंड वेंसडे को आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस। ट्यूजडे एंड थर्सडे, आज है ट्यूजडे, और ट्यूजडे और थर्सडे को मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स एवरी वीक डे 5 to 9 p.m. There is no mix and match. TNC supply. More flavor, more savings all week long. Desi Mandi located in Louisville, Texas. Rahul sahab ne ek gaane ki request kari aur jo mujhe bahut achi cheez lagti hai wo unhone kara. So thank you so much Rahul sahab. Aapne reason bataya ki aapko ye gaana kyun pasand hai aur ye mujhe bahut acha lagta hai because when you share the reason, it makes the connection with the song, jo aapka connection hai, deeper and it helps the other person as well to make a connection. अगर आप कहें कि आपको ये गाना पसंद है, चलिए ठीक है पसंद है, बहुत सारी चीजें हमें पसंद होती है ना पसंद होती है, बट दैट इज अ वेरी जेनेरिक थिंग राइट। लेकिन जब आपने ये कहा कि इसके जो लिरिक्स हैं वो आप ध्यान से सुनिए, तो मुझे बड़ा मजा आया और अब मैं इसके लिरिक्स ध्यान से सुनूंगी। हमारे सारे श्रोता जो हमारे डैलस के फनेशिया के लिसनर्स हैं, मैं कहूंगी आप भी इसके लिरिक्स सुनिए। मैंने थोड़े तो पढ़ लिए, चीटिंग पहले से कर लेती हूं मैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द लिरिक्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब पढ़ के अच्छे लगे, अब सुन के भी अच्छे लगेंगे। राहुल जी आपके लिए।

What a masterpiece and thank you so much Rahul Sahab for making me see it so clearly. मतलब actually क्या होता है जब ये फिल्म देखी है मैंने धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर जो पहली है what happens is the storytelling, the emotion, the acting, characterization, everything really is so so strong और music भी that आप कई बार खो जाते हैं and then you are not able to parse out the different elements from craft standpoint. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भी इस गाने को मैंने एक separately appreciate किया और समझा and I really liked it because it's such स्ट्रॉन्ग सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्यूजन मैं कहूंगी इसे फ्यूजन गाना इट ब्लेंड्स इमोशन थीम स्टोरी टेलिंग मतलब पूरा गाना अपने आप में कहानी बता रहा है एंड सच अ स्ट्रॉन्ग थीमेटिक कनेक्शन और इसमें सूफी संगीत के साथ साथ जो ये रैप है ये टोकन साहब हैं जो अमेरिकन रैपर हैं उनका उन्हीं का लिखा हुआ है रैप और वो ही उसमें गा रहे हैं सो आई एंड आई एम थिंकिंग अबाउट द लिरिक्स मैं ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी एंड पकड़ने की कोशिश कर रही थी बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहे थे So destiny, you know what I want to be, destiny, so please don't you lie to me, what am I supposed to be, should I change what's close to me or is it all destiny, destiny, don't lie to me, ye paro ka style hai, ye paro ka style hai, wo aapne suna hai, wo bauro ka style hai, to ye token sahab ki copy nahi kar rahi hu, main dekhi rap ki to main kya gaane ki bhi copy, kisi bhi singer ki copy nahi kar sakti, lekin ye पारो का स्टाइल है लेकिन अगला गाना मैं चलाना चाहती हूँ हमारी सभा के लिए हेयर इट गोज़

व्हाट अ वंडरफुल चेंज ऑफ मूड कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है ट्यूसडे शाम को, बड़े अलग अलग तरह के मूड होते हैं, एकदम धुरंधर वाले और राहत फतेह अली खान साहब जैसे गाने, इनके प्यारा रोमांटिक सा गाना है वैसा मूड, लेकिन थोड़ी देर में मूड बदलने वाला है, यानी कि थीम होने वाली है हमारी, हम थीम की करेंगे बात 7:30 के बाद। बट फिलहाल एक गाना और मैं चला देती हूँ फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वी विल बी हेयरिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे यहीं पर। आज क्या है खास दिन, उसकी करेंगे बात, बहुत ही खास दिन है, वैसे तो हर दिन ही खास होता है, पारों के साथ है आप लोग, खास तो होना ही चाहिए।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
5: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं, बताया ना जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
4: मतलब
5: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
6: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
11: घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी?
12: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
10: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
12: सच में बिल्कुल घर जैसा।
10: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
13: If you're ever involved in a car accident, remember these important 3 tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.

स्पैनिश फेस्टिवल है आज एंड मेक्सिकन त्यौहार है आज एंड लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस क्योंकि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है ये विच इज सिंको दे मायो मे 5th को और आई वांट टू मेंशन दिस दैट आई एब्सोल्युटली लव द मेक्सिकन लैटिन अमेरिकन क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है खाने में लेकिन वहाँ का मतलब आई थिंक उस तरह का जो फ्लेवर है नॉट पुटिंग दैम ऑल इन वन बॉक्स क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे मेक्सिकन फ्रेंड्स कहते हैं नो नो नो नो ब्राज़ील का खाना अलग है यहाँ का खाना अलग है एंड आई एग्री दैट इज हाउ वी फील एज वेल कोई अगर हमें कहेगा कि भाई दिल्ली का खाना और हैदराबाद का खाना या चेन्नई का खाना एक ही है तो दैट वी वॉन्ट एग्री एज वेल राइट थोड़े शायद मसाले कॉमन होंगे बट वी नो द डिफरेंस वेरी वेल तो ऐसा होता है लेकिन इट द फूड एंड द कल्चर इज सो कलरफुल एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेक्सिकन फ्रेंड्स एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कल्चर एंड इज दैट डांस और फेस्टिवल और इंजॉय मस्त बड़ा कल्चर है लेकिन इतना मस्त कल्चर है दैट बिल्कुल सारी परेशानियाँ छोड़ो और डांस करो खाना खाओ ड्रिंक भी काफ़ी करते हैं ये लोग मतलब दैट इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव मतलब जीना अगर सीखना है तो यू लर्न फ्रॉम पीपल दैट आर हिस्पैनिक एंड लैटिन अमेरिकन कैसे मस्ती में लाइफ जीते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और सिंको दे मायो बहुत जगह सेलिब्रेट किया जाता है वी हैड अ पॉटलक एज वेल तो मैं बढ़िया बढ़िया तोस्तादा मैंने लंच में खाया है एंड प्लीज शेयर विद मी व्हाट इज योर फेवरेट मेक्सिकन डिश थोड़ी देर में गिव अवे भी करेंगे दिस इज नॉट गिव अवे दिस इज जस्ट अ फन थिंग एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक अ रूल क्योंकि देखिए इतना बड़ा त्यौहार है तो एक छोटा सा रूल तो ब्रेक करना बनता ही है यूजुअली हम इसमें बॉलीवुड के गाने चलाते हैं लेकिन मैंने एक गाना ढूंढा जो मुझे बॉलीवुड से बड़ा क्लोज लगा एंड दैट आल्सो सेलिब्रेट्स वेल व्हाट सिंको दे मायो वेरी हैप्पी सिंको दे मायो टू यू ऑल.

डजंट मैटर वॉट कल्चर यू बिलोंग टू, डजंट मैटर वॉट योर रिलीजियंस टू, लेकिन ये अगर आपने सुना और आप नहीं नाच रहे, मैं या बाय द वे स्टूडियो में नाच रही थी जब मैं सुन रही थी, एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स डेफिनेटली आप थोड़ा सा ये अपना टेस्ट कर रही है, शायद आपको सुना ही कम देता है, बिकॉज दिस इज सच एन अमेजिंग म्यूजिक. और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिंको दे मायो, विच इज 5th of May, विच इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द US, बट इट एक्चुअली इज अ डे दैट सेलिब्रेट्स मेक्सिकन रेजिलियंस कल्चर एंड हेरिटेज. और दिस इज नॉट द इंडिपेंडेंस डे, बहुत सारे लोग इसे मेक्सिकन इंडिपेंडेंस डे से कन्फ्यूज करते हैं, वो बाद में आएगा, वो सितंबर 16th को आता है, वो हम तब जब आएगा तब सेलिब्रेट करेंगे. इस वक्त हम सिंको दे मायो की बात कर रहे हैं, विच एक्चुअली कमेमोरेट्स द मेक्सिकन आर्मीज अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ओवर फ्रेंच फोर्सेज एट द बैटल ऑफ पुएबला. ये बैटल ऑफ पुएबला कब हुआ था? ये हुआ था May 5th, 1862. बहुत जबरदस्त कनेक्शन है हिस्ट्री से, मुझे ऐसा लगता है मेक्सिकन कल्चर का और हमारे कल्चर का भी. और आज एक और एक स्पेशल दिन है जिसको मैं करना चाहती हूँ सेलिब्रेट, और वो दिन चांद तारों से जुड़ा हुआ है. चांद तारों और आसमान और ड्रीम्स, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड, अबव एंड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इन चीजों से जुड़ा हुआ है. तो अगर ऐसा कोई गाना है आपके मन में जिसमें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से है, कहीं जो हमारी जो मंडेन लाइफ जिसको कहते हैं, जो हम तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, बोर होते हैं, वापस आते हैं, चाय पीते हैं, फिर बोर होते हैं, फिर टीवी देखते हैं और ज्यादा बोर होते हैं, फिर पारों को सुनते हैं, फनीशा सुनते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, कहने का मतलब है जो हमारी ये रोजमर्रा की जिंदगी है, इससे बाहर उठ के जो सपने हैं, जो यूनिवर्स ने हमें इतने सारे चांद तारे दे रखे हैं ताकि हमारी इमेजिनेशन और तेजी से भागे, उससे रिलेटेड अगर कोई बॉलीवुड, अब आप इस बॉलीवुड पे आ गए हैं, स्पैनिश गाना नहीं सुनेंगे, अगर कोई बॉलीवुड का, कोई हिंदी का गाना अगर आप सुनना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं 9723555555. क्यों कर रही हूं मैं चांद तारों की बात आज, बताऊंगी थोड़ी देर में. पारो इन द हाउस.

दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका। कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में बताती हूँ। विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन ट्रस्ट योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन। और यहीं पर नहीं खत्म होती है इनकी बात, दे डोंट स्टॉप इट हियर। दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 years और लेस, मतलब 10 साल के अंदर निपटा दीजिए पूरा मॉर्गेज का जो सरदर्द है वो। एंड बिल्कुल, इससे अगर आप चीज चाहते हैं, ये अवेल करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में लर्न करना चाहते हैं, सो डोंट वेट, कॉल जेम्स टुडे एट 321-888-7345 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स। ये की वर्ड है, टुगेदर है, कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स .com एंड स्टार्ट टर्निंग योर डेली एक्सपेंसिस इन टू इनकम। कनेक्टिंग अमेरिका इज वेयर स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट इन टू कैश। बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स देखते भी हैं हमें, बिकॉज इट्स एन ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म, और मैं भी अपने आपको सामने देख रही हूँ। सो आई डोंट वांट टू से दैट इफ यू आर एट होम, यू आर नॉट ड्राइविंग, एंड यू, आई नो लॉट ऑफ यू लिसन एंड वॉच अस एज वेल, बट यू कैन एक्चुअली डू दैट। हमारी फनीशा की ऐप अगर आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप फनीशा.net पर चले जाएं, सो यू कैन वॉच अस, यू कैन लिसन टू अस एंड ऑल्सो वॉच अस एंड वॉच द सॉन्ग्स। जो हम गाने चला रहे हैं उनकी पिक्चराइजेशन का जैसे मैं लुत्फ उठा रही हूँ यहाँ स्टूडियो में, और कई बार थोड़ा डांस भी कर देती हूँ, स्पेशली जिन गानों पर कुछ होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा डांस, आई डू दैट एज वेल। कई बार उनकी रील भी बना देती हूँ मैं डांस करते करते, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं आप लोगों के साथ, मैं भी स्टूडियो में उतने ही मजे ले रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कनेक्टेड हैं इन गानों के सरगम के साथ, ऐसा मुझे लगता है, और इस फनीशा के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हमारे एक और चीज से मुझे लगता है हम कनेक्टेड हैं, और वो है हमारे सपने। सपनों की बात करेंगे, लेकिन पहले बताना चाहती हूँ, पारो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं आप बियॉन्ड दिस यानी कि ऑफ एयर एज वेल, तो यू कैन कनेक्ट पारो प्रिंसेस पारो 27 इंस्टाग्राम में, या पारो कौशिक ऑन फेसबुक एज वेल। क्या है आज का दिन? आज का दिन है 5 मई। बहुत प्यारा दिन है, बहुत अच्छा मौसम है, सिंको डी मायो की हम बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ और भी है आज। टुडे इज अ डे दैट इज नेशनल एस्ट्रोनॉट डे। अब आप बोलेंगे नेशनल

एस्ट्रोनॉट डे की क्या कहानी है. ये कहानी की ये है दैट इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग एस्ट्रोनॉट्स. यस, दैट बट हु आर एस्ट्रोनॉट्स? एस्ट्रोनॉट्स आर दोज दैट आर दे गो इनटू स्पेस. जो हमारे जो सपने हैं वो जीते हैं. जो हम बाहर जिस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में क्या है, ये जो एक बड़ी मिस्ट्री है, इसको हमारी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़ी जतन करते हैं. बट दिस रियली इज अबाउट नॉट जस्ट एस्ट्रोनॉट्स, बट इट इज नॉट जस्ट दैट प्रोफेशन आई मीन, बट इट इज अबाउट ड्रीम्स. It is about stars, it is about universe, it's about क्या है ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें हम घिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, इसके बियॉन्ड क्या है. दैट इज द टुडेज डे. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. कोई गाना है जो आपको ऐसा लगता है कि गाना आपको इस दुनिया से अलग की एक दुनिया दिखाता है, कोई एक दुनिया के ख्वाब दिखाता है. शायद ख्वाब अपने आप में ही एक अलग दुनिया है. ख्वाब में अगर आपको ले जाता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट फिट्स अर थीम. 972-235-5555. और जैसे मैंने कहा, कभी कभी ऐसा होता है दैट हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे फंस जाते हैं, जमे रहते हैं, कि हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारे तारे और सितारे हैं इस जमी पर.

बिल्कुल सही बात है. मतलब इतना ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो. मतलब ये धाई है क्या हम लोग जो जम जाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता. कई बार लोग कहते ना जमे रहो, ये जॉब बड़ा अच्छा है इसमें जमे रहो, ये बहुत अच्छा तुम्हारी पोजिशन है जमे रहो. ये क्यों भाई जम रहे हैं? हम दही नहीं है, हम तो पानी की तरह हम बहेंगे. हम वी और आई फील दैट मेकअप ऑफ ड्रीम्स, और आज हम वो कर रहे हैं सेलिब्रेट. मेरे पास अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, सॉन्ग्स दैट मेक यू फील समथिंग बियॉन्ड दिस मंडेन लाइफ. ऐसे बहुत सारे गाने हैं, उस गाने में तारे या फिर कुछ स्टार्स या आसमान इस तरह का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फीलिंग है. अगर फीलिंग है दैट इज इनफ. अगर दिस मेक्स यू फील समथिंग स्पेशल, जो आपकी इस रोजमर्रा की जिंदगी से आपको अलग कहीं सपनों में ले जाता है, जैसे कि अगला गाना प्रीत को ले जाता है. प्रीत आपका नाम मुझे बड़ा पसंद है वैसे. प्यारा नाम है बड़ा, प्रीत. एंड आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू.

सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अगला गाना मैं चलाती हूँ बिकॉज उसके बाद एक छोटे से ब्रेक में चले जाएंगे. शफी जी ने ये रिक्वेस्ट किया है और थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी दैट आई एंजॉय अ लॉट जब ये गाने चल रहे होते हैं. ये तो थोड़ा रोमांटिक सा गाना है तो मैं भी थोड़ा सा हल्का हल्का झूम रही थी इसके साथ, एंजॉय कर रही थी. लेकिन जो अगला गाना है उसके साथ थोड़ा ज्यादा झूम सकती हूँ. एंड दोज हु आर नॉट ड्राइविंग कैन ऑल्सो एंजॉय. एंड तो शफी साहब ने कहा कि आप और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज ये अगला गाना झूमने वाला ही गाना है इसमें बिल्कुल. लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमारे लिसनर हैं जो घर पर हैं और जो ड्राइव नहीं कर रहे हैं और जो झूमना चाहते हैं इसके साथ, देखिए आप गलत मत झूमिएगा, बिल्कुल बराबर झूमिएगा क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इस गाने की, झूम बराबर झूम. तो बिल्कुल बराबर झूमेगा और उसके बाद लौटेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद राइट हियर ऑन 104.9 FM फरेशा रेडियो, पारो इन द हाउस.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए, easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N-400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me? It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस।
14: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6822-346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं।
15: Astrology readings have for guidance only and results may vary.
16: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कॉल्स एंड योर सजेशंस. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस थीम ऑफ अवर विच इज नेशनल एस्ट्रोनॉट डे. एस्ट्रोनॉट डे, जी हाँ. एस्ट्रोनॉट मतलब जो इस दुनिया से इस जीते जी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जान नहीं है तो फिर हमने खिसक लिए हैं इस दुनिया से. लेकिन जीते जागते आंखें खुले हम जब ऐसे सपने देखते हैं और हम जब आसमान कह सकते हैं स्टार्स एंड मून और इस तरह के जो भी और सारे जो ऊपर ऊपर वाले ने बनाई हैं हमारे लिए इतने बढ़िया चीज़ें इतनी चमकती हुई चीज़ें उन सब के बारे में सोचते हैं या उधर जाते हैं. एस्ट्रोनॉट्स तो वहाँ एक्चुअली जाते हैं, स्पेस में जाते हैं. सो दैट इज़ ये उड़ान होती है एक. तो ये उड़ान की हम बात कर रहे हैं और ऐसे गाने जो आपको ये उड़ान देता है. दोज आर द सॉन्ग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. दोज सॉन्ग्स कैन बी एनी सॉन्ग. दीप्ति जी, आपने गाना करा रिक्वेस्ट. इंटरेस्टिंग बात यह है और हो सकता है शायद मैं गलत हूँ लेकिन मैंने उस गाने का सर्च किया एंड बड़ा लिरिक्स मुझे बड़े अच्छे लगे इस गाने के कि चलो चांद की सवारी करते हैं और कैलाश खेर साहब ने गाया भी है, मुझे मिल गया. लेकिन दिस इज समथिंग दैट ही सैंग विदाउट म्यूजिक. ऐसा आई थिंक उन्होंने शायद इसको ऐसे ही गा दिया है और बहुत अच्छा गाया है. बट हम म्यूजिकल गाने चलाते हैं रेडियो पर, वैसे ही कभी गुनगुनाने वाले गाने हैं तो हम सुन सकते हैं लेकिन ऑन रेडियो वी प्ले रियली म्यूजिकल सॉन्ग्स बिकॉज दैट इज यू नो लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू अस एन ए गिवन मोमेंट. तो अगर शायद कोई ऐसा गाना है शायद आपने कुछ इसमें कुछ ऐसे भी उन्होंने गाया हो और उसके लिरिक्स कुछ अलग हो तो मैं नहीं ढूंढ पाई हूं, आप कॉल करके फिर बता सकते हैं 972-355-5555. लेकिन चूंकि आपने कैलाश खेर की बात करी और मुझे लगा आपको उनकी आवाज पसंद है और आपने कुछ उड़ने की या चांद की, देखिए चांद की बात कर रहे हैं तो उड़ ही रहे हैं राइट, वो तो बहुत ही ऊपर है चांद. तो अगर आपने ऐसी बात करी तो मैंने सोचा कि मैं वो गाना चलाती हूं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा. और ये गाना बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया गाना है और इस गाने ने कैलाश खेर को, छोटी सी हाइट है कैलाश खेर साहब की, छोटे से हैं बहुत लंबा कर दिया आप ये कह सकते हैं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग बहुत ऊंचा कर दिया. दिस इज द सॉन्ग दैट मेड कैलाश खेर वेरी वेरी फेमस.
1: टूटा एक

0: आएगा अल्लाह।
1: ये 2003 का गाना है, 20 साल से ऊपर हो गए हैं। कैलाश के छोटे से इसमें नजर आ रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं अपना, एंड ही बिकेम सो वेरी फेमस विद दिस सॉन्ग। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विशाल ददलानी साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और इसके कंपोज भी विशाल ददलानी साहब ने करा है। और मैं हमेशा जब भी ये लिरिक्स सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ विशाल साहब थोड़ा और लिखिए ना, आप इतना बढ़िया लिखते हैं। और ही इज़ अ ग्रेट कंपोजर, ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। उनका कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, सेंसिटिव तो खैर होना ही चाहिए, होना ही पड़ता आर्टिस्ट तो है ही। अगर आप दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ सकते तो आप क्या खाक फीलिंग डालेंगे तो वो तो है ही, बट आई एक्चुअली रियली लाइक एंड दिस सॉन्ग इज सच अ फेवरेट ऑफ माइन। जरा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे इसके लिरिक्स बहुत पसंद है। अल्लाह के बंदे हंस दे मतलब जस्ट बी हैप्पी एंड स्माइल। और सबसे अच्छी लाइन मुझे इसके बाद ये लगती है, जो भी हो कल फिर आएगा, हम रहे ना रहे, हमारे आसपास कुछ भी रहे ना रहे, लेकिन कल जो है वो फिर आएगा। कई बार हम बड़ी चिंता करते हैं, टेंशन बड़ी रहती है हम लोगों को ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये लोन पास होगा कि नहीं, ये मॉर्गेज पे होगा कि नहीं, ये होगा वो होगा, आगे बढ़ेंगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद। इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स। अरे यार अभी तो जीने दो, 10-15 साल का तो बाद में देखेंगे, किसने देखा है, हम हो ना हो कल लेकिन फिर आएगा। एब्सोल्यूटली अमेजिंग लिरिक्स, और बहुत ही ध्यान से आप कभी सुनिएगा इनके सारे ही, मुझे पूरे ही, वक्त कम है नहीं तो मैं सारे ही लिरिक्स की बात करती, मतलब पूरा एक घंटा, इतने अच्छे लगते हैं मुझे। और कैलाश खेर साहब ने देखिए इसमें मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगती है, अगर आप इसमें देखें ना, म्यूजिक बहुत हल्का, इट्स रियली द वॉइस एंड द लिरिक्स दैट इज कैरिंग ओवर। और ये एक बहुत बड़ी बात है, आई थिंक जब ये गाना आया कैलाश खेर साहब पे, कई साल पहले मैंने एक पूरा शो किया था एंड देन आई टॉक्ड अ लॉट मोर इन डिटेल अबाउट इट। लेकिन कैलाश खेर का जब ये गाना आया तो लोगों को ये पता चला कि यार ये बंदा कैन कैरी ओवर द सॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वॉइस। ऑब्वियसली गाना, लिरिक्स, ये सब भी मैटर करते हैं, लेकिन म्यूजिक अगर नहीं भी ज्यादा हो, म्यूजिक का आप ये कह दें उसको टोन डाउन कर दें, तब भी ये बंदा कैन कैरी ओवर, एंड वेरी फ्यू सिंगर्स कैन डू दैट। एंड जब लोगों ने ये देखा, जब लोगों ने ये समझा और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार पकड़ लिया हमने, तो एक नया बंदा पकड़ लिया हमने एंड ये जरूर लोगों को हंसाएगा एंड रुलाएगा भी कभी कभी अपने गानों से, लेकिन इन अ गुड वे। और इस वक्त हम कर रहे हैं बात नेशनल एस्ट्रोनॉट डे की। देखिए कई बार मेरा पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, एस्ट्रोनॉट क्योंकि दिल्ली के हैं, वही पंजाबी तो हमारे खून में है, दिल्ली के लोग, पंजाब, मतलब हमारा पंजाबी कल्चर बहुत होता है दिल्ली में। सो यस, एस्ट्रोनॉट डे, नेशनल एस्ट्रोनॉट डे की बात कर रहे हैं। और इस दिन में हम क्या कर रहे हैं, दिन में हम आपको लिफ्ट करा रहे हैं, जो ये जो हम जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें चलती रहती हैं, इसमें हम पिसते रहते हैं एवरी डे, तो ये जो पीसिंग है ना, पीसिंग, इससे ऊपर उठा रहे हैं, यानी कि लिफ्ट करा रहे हैं इन अ गुड वे।

इस गाने में मुझे सबसे अच्छी चीज बहुत सारी मतलब अच्छा है पूरा ही गाना, लेकिन आई थिंक व्हाट आई रियली लाइक सो मच इज दी एंडिंग जिसमें गोविंदा साहब आ जाते हैं एंड हिज एक्सप्रेशंस आर सच अमेजिंग. मतलब इतने नेचुरली, ऑब्वियसली उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, इतनी सारी बढ़िया फिल्में देकर, नंबर वन फिल्में देकर उनके एक्सप्रेशंस भी नंबर वन हो गए हैं. बताना चाहती हूँ नंबर वन की बात से ओमर ख्वाजा साहब के बारे में. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट it is brought to you by Omar Khwaja with traffic updates around DFW and accident report. It is, if you're involved in a car, truck accident or a slip and fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and get you the help the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies, bahut stressful hoti hai. You need an attorney that is on your side and will make sure that you are compensated. Aap pay nahi karte hain jab tak aap jeette nahi hain. Free consultation ke liye aap call kar sakte hain. Number hai 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दें, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल एस्ट्रोनॉट डे. नेशनल एस्ट्रोनॉट डे मतलब कि हम जो स्काई है ना, स्काई को कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, स्काई की लिमिट से भी बाहर, यानी कि उसकी भी लिमिट से आगे जा रहे हैं. एंड ऐसा कहा जाता है, एक मुझे बड़ी प्यारा कोट लगता है, विच इज डोंट टेल मी sky is the limit. Yes, don't tell me the sky is the limit when there's footprints on the moon. जी हाँ, जगर चांद के अब तो लोग बहुत ही उससे भी आगे पहुंच गए हैं. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर. कार्ड दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, अगर फिर से कॉल कर सकते हैं हम फिर कॉल ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. 9722355555 स्टूडियो का नंबर. अभी भी मैं आपकी रिक्वेस्ट इन रिलेशन टू दिस थीम ले रही हूं, विच इज समवेयर अबाउट ड्रीम्स, अबाउट उड़ना, उड़ी उड़ी जाए. मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा मन करता है कि हम भी चिड़िया बन जाएं और उड़ जाएं.

0: Phanisha Radio, you are on air.
1: I just want to say that wo song Kailas Kher ka wo he dedicated to ISRO.
0: Right, ISRO. So I think he sang it separately. वो कहीं उसमें म्यूजिक या उस तरह का नहीं है. हाँ, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन वो रेडियो पे नहीं, वैसे कभी आराम से आप घर में गुनगुना सकते हैं. बट इसलिए मैंने आपके लिए एक दूसरा गाना चला दिया कैलाश खेर का. ये बताइए वो कैसा लगा?
1: वो अच्छा था. कैन यू प्ले वन मोर इफ यू कैन? तलत अजीज, मैंने पूछा चांद से.
0: ये तो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा.
1: ओके,
0: लेट मी सी.
1: प्ले व्हाटएवर,
0: लेट मी सी. अगर मुझे, आई थिंक ये इतना पुराना नहीं है, राइट? लेट मी फाइंड आउट. दीप्ति बोल रही है ना?
1: Yes.
0: हाँ दीप्ति जी, let me find out. I think if I find it, I'll definitely play. थोड़ा सा मतलब
1: no problem.
0: मूड वैसा होना चाहिए. बट देखिए आप मुझे लगता है कि जब तक चांद का गाना नहीं सुनेंगे ना, आपको चैन
1: आप
0: नहीं मिलेगा.
1: वो चला रही है तो मैं भी चांद तारे
0: या अच्छा वैसे और मुझे ये पता था, मुझे पता था कि आप चांद ढूंढ रही हैं, क्योंकि अगला गाना जो मैंने लाइनअप किया, मैं तलत अजीज का गाना सुनती हूँ, उनका अजीज साहब का. मेरी मम्मी को बहुत पसंद है तलत अजीज साहब, तो मैं डेफिनेटली.
1: डैलस में आए थे ना, ही परफॉर्मड दैट सॉन्ग टू, सो
0: हाँ, बहुत ही मतलब ही इज सच अ गुड सिंगर एंड ही इज ऑल्सो सच गुड लुकिंग. मतलब उनको देख के लगता है तो हीरो बन जाते हैं. एंड आई विल प्ले. लेकिन अगला गाना देखिए, मैंने चांद वाला ऑलरेडी आपके लिए लाइनअप करके रखा है, ये भी आप सुनिए. तो आपको हम दो बार चांद दिखा देंगे. ओके, श्योर, थैंक यू, बाय.
1: ओके, बाय.
0: देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लिसनर्स जो है मेरी थीम को इतना ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद दे प्ले अलॉन्ग. सो थैंक यू सो मच दीप्ति जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द कॉल्स दैट आई हैव गॉट इन रिलेशन टू टुडेज थीम, व्हिच इज अबाउट स्काई इज नॉट द लिमिट. पारो इन द हाउस.

ये जब तक बातें करेंगे इसमें थोड़े डायलॉग्स वायलॉग्स हैं. आई एम गोइंग टू प्ले अनदर सॉन्ग क्योंकि हम छोटे से एक ब्रेक में जाने वाले हैं. आई वांट टू प्ले सॉन्ग. अशोक साहब ने आज की थीम से ही रिलेटेड एक गाने की रिक्वेस्ट करी है. दीप्ति जी, मुझे आई थिंक ये चांद वाला गाना मैंने चलाया, लेकिन आई थिंक हम थोड़ा सा नए गाने या उस तरह के गाने चला रहे हैं. 90s तक इज ओके. सो ये अगला गाना 90s का है और अशोक साहब ने इसमें इसकी रिक्वेस्ट करी है क्योंकि इसमें चांद जो है आसमान में नहीं रहता, नीचे उतर के आ जाता है. After this, we will be back after a short commercial break. Sunte rahiye Funisher Radio, Paro in the House.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Chicken banana?
4: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
5: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
6: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Are you seeking clarity in life, wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
7: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: के टू ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
2: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
12: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
2: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
12: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
13: So, ruko jara, sabar karo.
14: Agla gana. फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
15: हाय, दिस इज प्रियंका चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो।

वेलकम बैक। बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पर पहुंच गए हम अपने शो के, यानी कि 9 बजे तक रहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ आप लोग रहते हैं, मैं रहती हूँ आप लोग के साथ, मतलब हम लोग सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के, झगड़ा नहीं होता हमारा 9 बजे तक, तो बिल्कुल झगड़ा नहीं होता, उसके बाद हो तो अलग बात है। तो बड़ा सुखी परिवार है हमारा फनीक्षा का, कि हम बिल्कुल जैसे वो होता है ना, हम आपके हैं कौन वाला, वैसा परिवार है हमारा, मतलब कि हमारे लिसनर्स के साथ हम लोग बड़ी खुशी रहते हैं और हमेशा नाचते गाते रहते हैं। दैट इज द वंडरफुल टाइम दैट वी स्पेंड हेयर। मुझे बड़ी खुशी होती है शो करते हुए और शो से जाकर भी घर में, आई ऑलवेज फील वेरी एनर्जेटिक। का मैं आती हूँ यहाँ पे तो थोड़ी सी एनर्जी कम होती है, और लेकिन जाते जाते मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर एनर्जी की देखिए बात करें, हम भागते रहते हैं इस एनर्जी में, ये कह सकते हैं कि ये फ्यूल का काम करती है, एंड वी कीप रनिंग। मगर कई बार हमें थोड़ा सा शांत रहकर, रुक कर कुछ करना चाहिए, जैसे कि ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट, उसके बारे में आपको बताऊंगी। बट पहले मैं गाना लगा देती हूँ, बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट आई थी थोड़ी देर पहले जिमरान साहब, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। चांद को आप देख लीजिएगा, कहते हैं उन्होंने, कहते हैं हमने चांद देख लिया। वैसे आज चांद निकला था क्या? अभी तक तो निकला नहीं है शायद, मेरे ख्याल से जिमरान साहब आपकी, आपका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि मैंने उनसे कहा आपने चांद देख लिया, कहते हैं हाँ मैंने देख लिया। नहीं नहीं आपने आज तो नहीं देखा, जब निकले तो देख लीजिएगा।

0: फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
1: हेलो हेलो पार्वती, कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया। मुझे एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करना था।
0: हाँ जी करिए, आपका नाम भी बता दीजिए।
1: मेरा नाम निकिता।
0: हाय निकिता, कौन सा गाना सुनेंगी?
1: मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार साहसी।
0: बता दिया फिर चांद ने।
1: नहीं, ऐसा तो कौन मिल सकता है रियल लाइफ में।
0: ये गड़बड़ है राइट, चांद बताता नहीं है कुछ, हम इतना पूछते हैं लेकिन बड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है हमें। कंप्लेन करनी चाहिए, किसे कंप्लेन करें चांद की? क्या लगता है आपको निकिता जी? चांद से ही करनी पड़ती है। चलिए आज चांद निकले तो सब खड़े होकर बाहर कंप्लेन करें, शायद कुछ बोल दे। वैसे अगर चांद ने किसी दिन बोल दिया ना तो मुझे लगता है कि हम सब भाग जाएंगे डर के मारे। आई थिंक उसे साइलेंट ही रहना चाहिए। बिल्कुल जी, आई थिंक जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, हैलोवीन नहीं बनाना चाहिए, बड़ा अच्छा माहौल है।
1: कोई लिसनर भी चाहिए ना, वरना तो सबको सुनानी ही होती है।
0: बिल्कुल सही बात करी, शायद इसीलिए नहीं बोलता होगा कि ये सारे इतना बोलती हैं ये सब हम लोग, मैं आप भी मुझे लगता है बोलने के शौकीन है, मैं तो खैर हूँ ही बहुत ज्यादा। तो चांद भी कहता होगा यार इन्हें बोलने दो छोड़ो।
1: वही है।
0: थैंक यू थैंक यू। निकिता जी ने जो गाने की रिक्वेस्ट करी है तो बहुत अच्छा गाना, लेकिन ये थोड़ा पुराना गाना है तो मैंने इसका एक रीमिक्स ढूंढा है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पुराने गाने नहीं चलाते, 90s के बाद का या फिर रीमिक्स भी चलता है।

ये एक नया रेंडिशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक मूड में भी डिफरेंट है, एंड दिस इज बट अगेन दिस इज अ रीमिक्स, क्योंकि जो पुराने होते हैं कई बार उनके इट्स जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट आर लिटिल डिफरेंट उस टाइम का, तो इसलिए हम थोड़ा रीमिक्सेस चलाते हैं. एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग व्हिच यू नो व्हिच वी कैन प्ले व्हिच इज लाइक अगेन ब्रॉडर थीम या बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम, वी कैन प्ले दैट. और मैं बताना चाहती हूँ, अगर पर्सनल है कोई गाना जो आपने गाया है, समथिंग लाइक दैट दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम यू नो, बिकॉज ये दिस हमारे हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं फनीशा, सो वी वांट टू कीप इट समथिंग दैट अपील्स टू एवरीवन. बताना चाहती हूँ आपको, आज की जो थीम है नेशनल एस्ट्रोनॉट डे, तो नेशनल एस्ट्रोनॉट डे की अगर एक बड़ी प्यारी मुझे बात किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैं दोहरा देती हूँ, एक्सप्लोरेशन इज वायर्ड इन टू अवर ब्रेन्स. जी हाँ, एक्सप्लोरेशन इज वायर्ड इन टू अवर ब्रेन्स, इफ वी कैन सी द होराइजन वी वॉन्ट टू नो व्हाट्स बियॉन्ड. ये है कुछ कहानी हम लोगों की, हम इंसानों की, कि अगर हमें अगर कुछ नजर आता है तो हमारी इच्छा होती है कि उसे आगे देखें. अगर हमें स्काई के आगे कुछ चीजें नजर आती है, मुझे लगता है अगर हमें और दूसरे प्लैनेट्स भी अच्छे से नजर आ रहे होते ना, हम खुश नहीं होते क्योंकि हमें उसके आगे का देखना होता. तो आई थिंक दैट इज वी आर वेरी क्यूरियस पीपल. यू क्यूरियस जॉर्ज है ना, हम सारे क्यूरियस जॉर्ज हैं ऐसा मुझे लगता है. वो क्यूरियस जॉर्ज एक कैरेक्टर है, लॉट ऑफ यू वुड नो दोज हु हैव किड्स, बहुत फेमस कैरेक्टर है, बड़ा मंकी है बंदर है लेकिन अंदर से मुझे लगता है हम सारे वही हैं, थोड़ा सा कोई ज्यादा है थोड़ा सा कम है. मैं तो बहुत ही ज्यादा हूँ, मतलब आई एम लाइक क्यूरियस जॉर्ज टाइम्स टू. लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी आर गोना डू अ शॉर्ट गिव अवे.

What a wonderful, wonderful song. मतलब बड़ा मजा आता है मुझे. I feel like dancing. थोड़ा सा मैं कर भी रही थी. And now is the time for our giveaway, जो मैंने बचा के रखा है आप लोगों के लिए. And that is, लेकिन giveaway के पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि I will tell you about Osho Universal Retreat. Especially हम लोग अगर भागते रहते हैं, बहुत जिंदगी में पिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, we need some place where we calm ourselves down and slow down and do some reflection. और ये चीज हो रही है. Osho Universal Retreat is going to be from May 14th to 17th. And when you join this, you step into a 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks, and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Because sometimes the best thing you can do for yourself is slow down. कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? यू हैव टू रजिस्टर एट oshouniversal.org. अब बात करते हैं हमारी गिव अवे की. सो द गिव अवे इज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं शुरू से, यानी कि 7 बजे से, तो आप जानते होंगे, एक्चुअली 7 बजे नहीं, हमने बात करी थी इसकी. वी एक्चुअली डिड दैट, सो वी डिड दैट, आई थिंक 7:30 बजे, राइट? 7:30 बजे जब हमारी थीम शुरू हुई थी, तब मैंने ये बात करी थी. अगर आप मुझे 7:30 से सुन रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने बात करी थी सिंको दि मायो की, एंड सिंको दि मायो इज अ वेरी बिग फेस्टिवल. आज का दिन सबसे ज्यादा फेमस तो एक्चुअली उसी के लिए है. सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस टू ब्यूटिफुल मैक्सिकन कल्चर, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बहुत सारे खाने के जो आइटम्स हैं और बहुत सारी जो थीम्स हैं, उस तरह का कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस और दूसरे कल्चर से भी लिया गया है. अभी नहीं शायद, लेकिन हिस्टोरिकली. एंड that we want to talk about that and we want to dedicate to other cultures as well, kyunki jo hamara culture hai wo kahin na kahin dusre cultures ke sath bahut juda hua hai aur dusre cultures hamare sath jude hue hain. So we are going to do this giveaway on Chandigarh Bites. Kya hai Chandigarh Bites? Kaun sa hai restaurant, bata deti hu. Waise to sare ye hamare log jante hain Chandigarh Bites ke bare mein, but let me tell you this. Ji ha, Chandigarh Bites kahan par hai ye? It is located off McDermott Allen in McDermott Drive in Allen. You can visit chandigarhbites.com for details. और ये जो गिव अवे है, ये है कढ़ाई पनीर का, या अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, या फिर आप कढ़ाई चिकन खा सकते हैं, मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छा है उनका. एंड दिस इज गोना बी फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. एंड यू कैन आल्सो एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. अब आपको जवाब देना है. मैं एक गाना चलाऊंगी, गाने से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है गाना, तो मैंने ऐसी समथिंग दैट काइंड ऑफ गोज विद द थीम ऑफ सिंको दि मायो, इसलिए मैं चला रही हूं. लेकिन आपको मुझे बताना है 5 डिशेज दैट आर मैक्सिकन. और एक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं यार हमें तो नहीं पता 5 डिशेज. नहीं नहीं, आपको पता होंगी, क्योंकि आप, एक मैं ऑलरेडी बोल देती हूँ, 4 आप बता दीजिएगा. जैसे सालसा है फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो डांस भी है, सालसा इज अ वेरी फेमस डांस, लेकिन सालसा बड़ा चटपटा भी होता है. चटनी है, बड़ी चटपटी चटनी. सो यस, समथिंग लाइक दैट. तो एक मैंने आपको बता दिया सालसा. इफ देयर आर 4 अदर्स दैट यू नो, 9722355555 पर कॉल कर सकते हैं फॉर दिस गिव अवे फॉर चंडीगढ़ बाइट्स. और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये गिव अवे आपने पिछले 1 महीने में नहीं जीता हो.

0: I absolutely love all the answers. Thank you so much. The first person to give the right answer, पांच चीजें बतानी थी और उन्होंने पांच बताई. एक मैंने सालसा बता दिया था तो चार और बतानी थी. And she said, बहुत सारे आप लोगों ने जवाब दिए and they were all right. बहुत सारी dishes हैं जो हम we love and Tex-Mex, भाई हम तो Texas में हैं तो हम तो और भी ज्यादा पसंद करते हैं. I think Mexican, और मुझे तो इसलिए भी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि it is closer to our own food. मतलब मसाले वगैरह. और आज I was mentioning this कि at work we had party of सिंको दे मायो की पार्टी हुई थी, पॉटलक हुआ था, मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था उसमें, रीफ्राइड बीन्स का. बट पीपल इन माय ऑफिस वर हिस्पैनिक, दे गॉट लाइक सच डिलिशियस एंड यमी थिंग्स एंड ऑल दैट. तो इट वाज रियली सच, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कुछ इंडियन खाया है. मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसी फुलनेस सी फीलिंग आती है, ऐसा मतलब तृप्त हो जाता है इंसान ना खा के. दैट इज द फीलिंग आई गॉट. वो अलग बात है कि मुझे बहुत आफ्टरनून में नींद भी आई तो मुझे लगा कि पक्का ही फिर तो इंडियन जैसा खाना खाया है क्योंकि नींद आ रही है और हमारा खाना भी अच्छा, मतलब भरपूर होता है मतलब. सो दैट इज सिंको दे मायो एंड आई वांट टू विश यू ऑल सिंको दे मायो, दोज हू सेलिब्रेट, एंड इट इज सच अ स्पेशल डे. एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट नेशनल एस्ट्रोनॉट डे एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद दैट. आई वांट टू मेंशन कि कल मिलूंगी आप लोगों से 7 से 9 और एक नई थीम लेकर आऊंगी आप लोगों से करने बातें और गाने चलाने. एंड एक लास्ट गाना मस्ती वाला सुनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, मतलब एकदम गुड फील, रेट्रो वाइब्स आ जाती है. रेट्रो गाना है नहीं लेकिन वाइब्स वो वाली आ जाती है. एंड विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ.
1: प्राणप्रिय

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है? हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
3: Contact 9453387670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR, all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
15: अभी बजा आएगा ना भिड़ो.
16: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.

0: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर,
1: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
0: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
1: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
0: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: Yeah! Abhi hum baja aayega na bhiro.
6: Apun bole to, full Bollywood dhamaka, Panacea.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
4: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
5: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
6: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
7: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
8: जिंदगी के कई रंग फन एशिया रेडियो के संग
9: गुड इवनिंग डैलस आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 FM और मैं हूँ स्निग्धा लेकर आ गई हूँ दिल से डैलस सो व्हाट्स अप गाइस सो मैं सोच रही थी आज का थीम ना लेट्स गो विथ देसी हैबिट्स गॉन ग्लोबल मतलब वो ही आदतें जो हम इंडिया के साथ लाए हैं और भी प्राउडली कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ भी जैसे फ्रिज में 10 डब्बे पर खाना वही कल वाला या फिर प्लास्टिक बैग्स का कलेक्शन जो काम आ सकता है जो हमारी मम्मियाँ करती है सो आज रात होगी हंसी नॉस्टैल्जिया और फुल ऑन देसी एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं एक गाने के साथ

इट्स दैट टाइम ऑफ द नाइट जहाँ पे हमें स्लो मोशन में ही सब करना पड़ता है. सो वेलकम बैक डैलिस, ये है दिल से डैलिस विद स्निग्धा, और हम बात कर रहे हैं देसी हैबिट्स की जो ग्लोबल हो चुकी है. सो आई गेस हमारी सबसे पहली हैबिट ये है एक्स्ट्रा ना संभाल के रखना. इंडिया में मम्मी बोलती थी ये मत फेंको काम आएगा, और आज हम यहाँ में भी वो ही ड्रॉअर जिसमें रैंडम वायर्स, ओल्ड चार्जेस और अननोन कीज पड़े ही होते हैं. एंड यू नो, एक क्लासिक चीज, घर में जब गेस्ट आए तुरंत पूछ लेना चाय लोगे या कॉफी, चाहे रात के 11 बजे क्यों ना हो. ये छोटी छोटी सी आदत है तो हमें कनेक्ट करती है अपनी रूट से, और ऑनेस्टली इनके बिना लाइफ थोड़ी बोरिंग होती है. तो हमेशा कीप योर रूट्स ऑलवेज कनेक्टेड.

That was from Jab Kahe Jaan, starring Shah Rukh Khan and Katrina Kaif. And of course, the music, A.R. Rahman. So, Dallas, हम बात कर रहे थे हमारी देसी आदतों के बारे में. So, अगला देसी आदत हुआ overfeeling. इंडिया में किसी के घर जाओ तो और लो ना का प्रेशर. और यहाँ भी वही सीन कंटिन्यू, बट यहाँ थोड़ा अलग से. मील प्रेप फेल हो जाता है जब कोई दोस्त घर आ जाए. है ना, आई नो ऑल ऑफ यू आर रिलेटिंग टू दिस. और याद है वो स्टील के डब्बे इंडिया से लाए थे जस्ट इन केस, और अब वो लंच बॉक्स बन चुके हैं ऑफिस के लिए. और एक फनी सा चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम इंडियंस ना कहीं पे भी हो बारगेनिंग का टैलेंट नहीं छोड़ते, और वो जाता भी नहीं है. गराज सेल हो, फ्ली मार्केट हो, थोड़ा तो नेगोशिएट बनता है बॉस, तभी तो वाइब रहती है देसियों की. ये हैबिट सिर्फ या हैबिट ही नहीं होते, ये हमारे लाइफस्टाइल होते हैं.

0: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं। मेरे से नहीं होगा ये।
1: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
0: मतलब
1: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में। और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
2: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Yeah! Abhi baja aega na bhiro.
5: Apun bole to full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe.
6: Zindagi ke kai rang. Fun Asia Radio ke sang.
7: So Dallas, it's 10:31 p.m. on the clock. अगर आपकी कोई मर्जी हो गाने सुनने की, if you have any request, call कीजिए हमारी स्टूडियो पर 972-235-5555 पर.

game show Dallas. I know सब गुजराती वाइब में चले गए होंगे. So welcome back guys. आज का शो फुल देसी फ्लेवर में चल रहा है. So हम बात करते हैं हमारी अगली हैबिट की. लेट होना है बट स्टाइलिश में. इंडिया में बस 5 मिनट एक इमोशन था और यह भी वही सेम चलता है. बट डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ लोग पंक्चुअल होते हैं और हम एक्सक्यूजेस क्रिएटिवली बनाते हैं. सो एक्सक्यूजेस क्रिएटिवली बनाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है जो हम देसियों कर ही देते हैं. एंड और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप चैट्स, इंडिया हो या डैलस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस और फेस्टिवल फॉरवर्ड्स कभी नहीं रुकते. और सच बोलो, कभी कभी वो मैसेजेस इरिटेट करते हैं ना, पर जब भी आते हैं तो थोड़ा मिसिंग भी फील होता है. सो इसी लाइक अच्छा फैमिली मूड के साथ सबके साथ मिलना भी अच्छा लगता है, बात करना भी अच्छा लगता है. बट व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस तो ऑलवेज क्लोज भी अच्छे लगते हैं.

0: सो इट्स 8:45 PM फॉर यू गाइस. ये है दिल से डैलस विद स्निग्धा. तो हम हमारी आदतों के बारे में बात कर रहे, तो हमारे अगला आदत होगा जुगाड़. इंडिया का सबसे पावरफुल, आई मीन आई थिंक इट्स सबसे पावरफुल स्किल है ना, जुगाड़ करना. सो कुछ भी टूट जाए सॉल्यूशन मिल ही जाता है, लाइक टेप, रबर बैंड या यूट्यूब ट्यूटोरियल. और बिलीव करो ये स्किल अमेरिका में और भी यूजफुल हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, और एक और, फेस्टिवल मोड ऑन. चाहे दिवाली हो या होली, यहाँ भी इंडियंस फुल एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. DIY डेकोरेशन, पॉटलक पार्टीज और बॉलीवुड प्लेलिस्ट. डिस्टेंस चाहे जितना भी हो, सेलिब्रेशंस कभी कम नहीं होते. सो DIYs करना, आई सी लॉट ऑफ इंडियन ब्लॉगर्स आजकल हमारे डैलस में भी, लाइक ऑल ओवर US. हम हमारे रूट्स को कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमारी नानियाँ, हमारी मम्मियाँ सब अपने आप से बना लेते थे. अभी हमें वही, उसका बस जेंजी का नाम है DIY.
1: हम सोचते जाएंगे.

0: So that was Dil Jhoom from Gadar 2, starring Sunny Deol, Utkarsh Sharma, Simrat K. So अभी अभी मुझे एक कॉलर ने कॉल किया, अमिता जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फनी एशिया 104.9. शी वाज टेलिंग वो हमारे शोज बहुत एंजॉय करती है एंड शी इज़ अ फ्रीक्वेंट लिसनर. आपके वजह से हम ये शोज और भी बेहतरीन कर पा रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम रात के 10:55 पे कॉल करके हमें बताना कि यू आर डूइंग गुड. दिस मीन्स अ लॉट फॉर अस एंड वी विल ऑलवेज मेक श्योर टू एंटरटेन यू.
1: मिक्का सिंह.

दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. क्या अच्छे लिरिक्स थे यार ये गाने की. आई विश कोई लड़का मेरे लिए ये गाना गाता ना, मैं ऐसे ही फ्लैट हो जाती. सो डैलिस, हमारे आज का थीम था ग्लोबल हैबिट्स. सो हम अगर अगले हैबिट के बारे में बात करें तो कंपैरिजन मोड, ये हर देसी में होता है. इंडिया में शर्मा जी का बेटा और यहाँ लिंक्डइन का अपडेट्स. किसी ने क्या अचीव किया, ये क्यूरियोसिटी ग्लोबल है बॉस. सो और एक क्यूट सी हैबिट भी होती है हमारी, घर में स्लीपर्स अलग और बाहर के शूज़ अलग. ये रूल तो हर देसी घर की कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं तो मम्मी अंदर तो आएगी नहीं देगी. सो और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, फूड लव. कैन एनी कंट्री बीट इंडिया का खाना, देसी खाना? नो नो नो, इट्स अ बिग नो. पिज़्ज़ा हो या पास्ता, थोड़ा सा देसी ट्विस्ट ज़रूर आता है. अगर हमें पिज़्ज़ा भी चाहिए उसमें थोड़ा अचार डाल देना, अचारी पनीर चाहिए ऐसे वाली, क्योंकि देसी तड़के की ना बात ही अलग होती है और उनकी टेस्ट भी अलग होती है. सो ये सब हैबिट्स हमें यूनिक बनाता है और ऑनेस्टली इन पे थोड़ा प्राउड भी फील होता है, क्योंकि मुझे तो फीका खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो किसी भी देसी को फीका खाना पसंद भी होता है. सो चलिए इसी देसी बातों के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ.

That was Chet Khania from movie Shehzada, starring Kartik Aaryan, Kriti Sanon, और हमारे प्यारे से अरिजीत ने ये गाना गाना है संग निकिता के साथ, and the music obviously प्रीतम. प्रीतम can never make us feel like ये क्या है. And this movie is a full on family packed movie. अगर आपने देखी नहीं तो देख लो. एंड इसी बात पे अगर हम हमारी देसी आदतों के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल कनेक्ट. देसी आना कहीं भी हो, फैमिली कल्चर ट्रेडिशंस हमेशा जुड़े हुए रहते हैं. हम वो कभी भूल ही नहीं कर सकते. इवन दो वी स्टे फार फ्रॉम आवर लव्ड वंस, वीडियो कॉल्स करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, हर तरह की फूड कुकिंग, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको खाना बनाना भी नहीं आता, जिनको बस वहाँ पे बैठो और मम्मी को पूछो ये बनाओ वो बनाओ, वो खुद भी बनाने लगते हैं. और शायद इसलिए हम कहीं पे भी जाके अपना मिनी इंडिया बना ही लेते. इसलिए तो डैलस बन गया डैलस से डैलसपुरम.

0: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Panacea
2: So ruko zara sabar karo
3: agla gana full vibe badalne wala hai Stay tuned to Panacea
4: Zindagi ke kai rang Panacea Radio ke sang
5: So it's 11:31 PM. तो हमारा शो काफी आई थिंक मजेदार जा रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमें हमारी देसियों की आदतों के बारे में. तो हम आदतों के बारे में और बात करें तो मैं ये बताऊँ देसियों की सेविंग मोड लाइक कूपन्स डील्स ऑफर्स. इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट होता है सेविंग मोड क्योंकि घर के लिए सेव करो, जेवर के लिए सेव करो, शादी के लिए सेव करो, बच्चों के लिए सेव करो, बस सेव करते ही जाओ भाई क्योंकि वो हमारा फेवरेट स्पोर्ट भी है और फेवरेट पास टाइम भी होती है. बट सच बोलो जब डिस्काउंट मिलता है ना अलग ही हैप्पीनेस मिलती है ना, चाहे वो $1 हो, $2 हो, चाहे वो सेंस ना हो जाए, बट हम सोचते हैं कि जब कम में मिल रहे तो लेना क्यों नहीं चाहिए. एंड हमारी और एक सी आदत मल्टीटास्किंग, फ़ोन पे बात, कुकिंग और बैकग्राउंड में टीवी भी ऑन. ये ना देसियों की एफिशिएंसी लेवल हमेशा अलग ही होती है. तो हमारी एफिशिएंसी लेवल हमेशा ऊपर रखते हुए लेट्स गो ऑन फॉर आवर नेक्स्ट ट्रैक.

इट्स 11:41 PM फॉर यू. सो जैसी जैसी रात बढ़ रही है वैसी वैसे नॉस्टैल्जिया भी. हमारी और एक आदत बताऊं, म्यूजिक लव. देसी हो तो म्यूजिक लव तो बनता है, उसके ऊपर बॉलीवुड सॉन्ग्स का कनेक्शन ही अनबीटेबल होता है. चाहे मूड कुछ भी हो, एक गाना सब सेट कर देता है. और शायद इसीलिए आप सुन रहे हैं फनीशा 104.9 FM पर.

सो डैलिस, हम अपने शो के फाइनल फेज में आ चुके हैं और हमारी इतनी सारी देसी बातें को रीफिर करके, रीविजिट करके रियलाइज़ किया है, ये सिर्फ आदतें नहीं, ये आइडेंटिटी है सिर्फ जो हमें देसी वालों के पास होती है। इंडिया हो या डैलिस, हम जहाँ जाते हैं अपनी कल्चर को साथ ले ही जाते हैं और वही तो दिल से डैलिस की एसेंस है और मेरी शो की। चलिए, आपके लिए मैं अगला गाना बजा रही हूँ।

चलिए डैलस, इट्स 11:58, मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं दिल से डैलस सिर्फ फनीशिया 104.9 FM पर। आज की रात की बहुत सारे देसी बातें की है हमने और ये शाम आपके नाम। कल फिर मिलेंगे एक नए थीम के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे देसी, गुड नाइट डैलस।

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
3: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
2: Literally playing with your heartbeats.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फन एशिया रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।
1: क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई?

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई फिर पार्टी बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
5: अरे यार बोला ना लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं, बताया ना जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
4: मतलब
5: देख जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
6: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
7: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: फिर नजरें मिलाती हूँ।

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स यूनिसेक्स सॉन्ग।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आरे मैं, अरे भैया आरे मैं।
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
5: फनेशिया!

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
5: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग
6: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
1: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
0: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
1: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।

0: Oh, baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
4: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
2: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।
3: असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
4: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
5: अच्छा, सुना है? सुना?
4: हाँ। वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
5: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं। मेरे से नहीं होगा ये।
1: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वही खाना है, जहाँ खाना है वही पार्टी है। सिंपल।
0: मतलब
1: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वही ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
2: विजिट फन पिज्जा किचन FPK@colony इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
3: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुन रानी नी ठाट बाट देख किंग दे, तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
4: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
9: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
10: Heere moti, main na chahu.
11: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
12: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
14: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
13: रोज का सेम प्रॉब्लम।
15: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
16: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
15: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
17: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
18: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
19: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
17: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
19: सच में बिल्कुल घर जैसा।
17: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and 4th,
20: from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. In Ravi's, just bigger, older and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
21: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this Wednesday morning. It's the 6th of March today and it is a cool morning. Sabse pehle, tareef super wale ki, jisne duniya banai, chaand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye saari kainat ko, insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज़ वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम दिस मॉर्निंग.

0: Let's get you some messages from our sponsors. And of course, we'll have the world news coming up for you. We do that every hour on the half hour, so at 7:30.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Get ready for the smoky, flavorful goodness of tandoori chicken pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma, layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
12: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
13: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
12: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
13: वेट, व्हाट?
14: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
15: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
14: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
16: K2 ड्राइव मतलब
17: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
13: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
13: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
14: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468.
19: Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
20: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: world news will be coming up shortly for all of you to be completely informed.
1: वो भी नहीं आया पर तो टेंशन मत ले मुझे भी नहीं फर्क पड़ता कोई नहीं ना मैं तुझसे शादी करूंगी कोई नहीं तुझसे शादी करूंगी सच्ची

0: on that sweet note, we'll reach 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
8: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
7: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग सफर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
14: ये क्या होता है?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
17: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
18: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
19: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
20: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program. It is a beautiful Wednesday, the 6th of March, cool outside. For those of you that like slightly cooler temperatures, 50s and just 60s later, we might just touch 65, but that's it. Nothing more than that. A lovely day, and let's get it started for you. Thank you very much for joining us and being a part of our morning.
21: Sat Sri Akal, Namaskar, Adab. Ye hai All India Radio ka Amritsar Station. Aur aaj farmaish aayi hai border pass se hamare dost Shams Alam ki, jinki Begum Sahiba Samia Zehra unse naraaz baithi hain. To ye khoobsurat sa meetha sa tohfa hamari taraf se

0: Thank you very much for all your calls. Enjoy the rain. Enjoy the rest of your day. And if I have your best wishes with me, I'll be back at 7 o'clock tomorrow morning. Right now, we will welcome Me Too to the studios right at 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम।
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
10: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनएशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
12: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
12: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
12: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं।
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
14: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAT, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स, और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me? It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस।
17: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
14: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
17: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
14: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
11: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.

Well, that will be a good idea because that's going to warm you up, ladies and gentlemen. It is 54 degrees outside right now. और आज का हाई हमारा जाने वाला है कुछ 70 के आसपास पहुंच ही जाएगा शायद. थोड़ा सा ब्रीजी है और इसलिए ठंडा थोड़ा ज्यादा लग रहा है. एंड इट इज दैट चेंज ऑफ वेदर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वील टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल इन ए लिटल बिट हियर. हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: You are listening to Funisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. और ये गपशप गली पे जो मैं आपके साथ ये जो बातचीत कर रही हूँ, it is to do with this event which is happening on May 9th and May 10th. It is India Property Expo जो हर साल होता है, बड़ी शानदार तरीके से होता है. And when I say that, it actually means that this event actually connects Indian builders, top builders with global NRIs. और ये event जो यहाँ Dallas में होने वाला है, it is at Hyatt Regency Frisco, जहाँ पे आपको top builders from cities like Hyderabad and Bangalore, Mumbai, Chennai, Pune, Delhi, NCR जैसी जगहों के साथ आप connect कर पाएंगे. And they are bringing for you over 200 plus premium projects from luxury apartments and villas to plots and farmland. So there is plenty of option for you. And the biggest fact is that you will be able to connect with the builders themselves and get to know about the project. And ye seedha connection once again grihapravesh.com lekar aata hai, jahan jaakar aapko karna hai register for this event. Do that definitely if you intend to attend, or yes, take that first step towards your ड्रीम होम बैक इन इंडिया. चाहे वो आपका ड्रीम होम हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप जाना चाहते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, आज बस जाके समझना चाहते हैं द इंटायर बिजनेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू टू गो एंड चेक आउट दिस इवेंट. कीप लिसनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन.
1: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
2: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
3: क्या?
2: सैलरी बंद हो जाती है
3: और बिल्स बंद नहीं होते.
2: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
3: मतलब
2: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
4: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
5: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
6: Astrology readings for guidance only and results may vary.
7: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service, all under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
8: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 4693627755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
9: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
10: ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टेक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
11: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
16: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio.

0: ओहो भाई, वेदर में जो चेंज आया ना, दैट ऑल्सो डेफिनेटली कॉल्स फॉर दैट रिएक्शन. यू नो, नॉर्थ टेक्सस आज काफ़ी ठंडा है और लेसर ह्यूमिड दैट इट इज, और टेम्परेचर्स हमारे कुछ 50s में है. सम ऑफ आर रेड रिवर काउंट्रीज दिस मॉर्निंग मे एक्चुअली हैव सीन अपर 40s एज वेल. और याद रखें कि कल का हमारा कुछ जो 90s टेम्परेचर था, वहाँ से हम पहुँच चुके हैं आज जैकेट वाले वेदर पे. तो अगर आप अभी तक बाहर नहीं निकले हैं तो मेक श्योर यू कैरी वन विथ यू. द कोल्ड फ्रंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अस दिस कूलर टेम्परेचर इज स्टॉलिंग आउट टू आर साउथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास जो शावर और स्पॉट स्टॉर्म के जो चांसेस हैं, इट इज टू द साउथ एंड ईस्ट टूडे. सिवियर वेदर रिस्क इज मेनली टू दैट एरिया जहाँ पर कि हेल या गस्टी विंड्स पॉसिबल है, और अगर ये डेवलप होती हैं देन हेल एंड गस्टी विंड्स आर पॉसिबल. वी हैव ओनली 20% चांस ऑफ रेन इन द फोरकास्ट टुडे, बट इट इज गोइंग टू बी एन ओवरकास्ट डे विथ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सनशाइन, एंड टेम्परेचर्स टू नाइट विल बी इवन कूलर अक्रॉस द मेट्रोप्लेक्स इन द 50s, एंड ऑल ऑफ आर रेड रिवर काउंटीज डिप डाउन इन टू द 40s टू नाइट एंड टमोरो मॉर्निंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, टेम्परेचर्स जो हैं कल हमारे वापस से बढ़ने वाले हैं, एंड टमोरोज हाई विल बी अराउंड 70s, मिड 70s दैट वी आर गोइंग टू सी. और फ्राइडे तक वापस 80s में आ जाएंगे, और वीकेंड आते आते सैटरडे संडे को इवन वार्मर दैट इट इज गोइंग टू बी, एंड मोर ह्यूमिड एज वेल. तो आइसोलेटेड स्टॉर्म चांसेस मदर्स डे के लिए मुझे फिलहाल तो कम लग रहा है, लेकिन एज वी गो अलॉन्ग विद द वीक वी विल बी एबल टू टेल यू मच बेटर. आइसोलेटेड स्टॉर्म्स के चांसेस ऑल दो मदर्स डे पे हैं, ये मैं आपको बताते चलूँ. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. इट इज अबाउट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्लेइंग द राइट ट्रैक फॉर यू.
1: Tracks that put you on the right track.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Chicken banana. Chicken, chicken banana? Banana?
6: Bro, banana nahin. Banana. Matlab, make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
8: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
9: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
8: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
9: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

दैट एक्सक्लूसिव वॉइस दैट यू हर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रीतम थे जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था. एंड द नेम इज जेम्स एंड ही इज दिस अमेजिंग सिंगर फ्रॉम आई बिलीव असम दैट ही केम फ्रॉम. अनदर सिंगर दैट आई विल लव टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू, जुबीन गर्ग. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मीठू, जहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ इस इवेंट के बारे में जो कि होने वाला है 14 मई से लेकर 17 मई तक. प्लीज रिमेम्बर दिस 3 डे इवेंट इज दैट एक्सक्लूसिव इवेंट जहाँ पर आपके लिए वो सारी तैयारी है, वो मेडिटेशन एंड ऑल द अदर टेक्निक्स दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू फैसिलिटेट दैट स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ एन इफेक्ट दैट इट विल ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू. जो इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं ना आपके, वो क्लियर आउट करना, माइंड को थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट करना. और इसीलिए कभी कभी आप दूसरों की बातें सुनते हो और दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो ऐसे कैंप्स में, और आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कॉन्ट डू. बिफोर सेइंग यू कॉन्ट डू, यू नो यू नीड टू ट्राई. सो 14th to 17th of May, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वेरी एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रीकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. तो इस इवेंट का पूरा पूरा फायदा उठाएं आप, और थोड़ा सा स्लो डाउन जो आपको ये करने में आपकी मदद करेगा, एंड टू डी क्लटर योर माइंड, यू नो. सो डू रिमेंबर टू रजिस्टर ऑन oshoyuniversal.org. वंस अगेन, इट इज oshoyuniversal.org. यू ट्यून इन टू गपशप गली विद मी टू. All right, let's dive into this next track right here.

Time check, ladies and gentlemen. It is 54 minutes past 10 by the studio clock here. और आज की तारीख है 6th of May, which tells you कि बस अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं for schools to close here. May end तक सारे हमारे schools बंद हो जाते हैं और तब शुरू होता है planning for summer vacation, right? और अगर आपका कुछ इरादा है, कुछ plan बन रहा है to take flight to any destination, तो आप अपने seat belts बिल्कुल बांध लीजिए, क्योंकि the aviation industry has been completely blindsided by this massive and sudden surge in jet fuel prices. तो obviously जो आप जानते हो वही मैं दोबारा बताना चाह रही हूँ कि ये जो ongoing US-Israel war on Iran का जो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, fuel costs have skyrocketed from around $90 a barrel to a staggering $200 a barrel. क्योंकि jet fuel किसी भी airline का जो total खर्चा है उसका almost approximately 25-30% होता है. तो इस सडन रेट इंक्रीज के कारण इसका पूरा जो है असर एयरलाइंस पर भी दिख रहा है हमें. अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट्स का जिस्ट निकालें तो चाहे वो अमेरिकन एयरलाइंस हो या डेल्टा या एयर इंडिया या फिर इवन लुफ्तांसा, हर बड़ी एयरलाइंस इस फ्यूल क्राइसिस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली पैसेंजर्स पे डाल रही है. अब हो क्या रहा है ये बताने वाली हूँ मैं आपको. एयरलाइंस अपने स्केड्यूल से हज़ारों फ्लाइट्स कट तो कर ही रही है और हायरिंग भी स्लो कर रही है, और जो फ्लाइट्स चल रही हैं उन पर टिकट प्राइसेस जो है 10% से लेकर 20% तक बढ़ा दिया जा रहा है. यहाँ तक कि चेक्ड बैग्स पर भी फी इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा फ्यूल सर चार्जेस भी लगाए जाने वाले हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ समर वेकेशन और अ क्विक गेट अवे, बी प्रिपेयर टू पे सिग्निफिकेंटली मोर फॉर योर फ्लाइट्स एंड योर लगेज. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, एंड दिस नेक्स्ट ट्रैक विल टेक अ स्ट्रेट इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और फिर मिलते हैं राइट आफ्टर दैट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
5: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologereeshwar.com.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
11: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
12: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
14: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla Clarity ke saath.
15: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Kra Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
16: Tracks that put you on the right track.

You are listening to Gupshup Gali with me too. Hopefully you all are doing well. आज का मौसम ठंडा है और आज क्योंकि ऐसे बादल छाए हुए हैं ना, तो इसका नतीजा ये हुआ कि I overslept today. आज मैंने अलार्म बंद करके मस्त होके मैं सो गई और ऐसे सोई कि फिर जब नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई टाइम बहुत कम है. एंड देन द रश स्टार्टेड एंड दैट ट्रांसफर्ड इनटू माय ड्राइविंग स्पीड ऑल्सो. और ऐसे में आपको लगता है कि यू नो द इंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट यू. वो कंस्पिरेशन जो है आपके दिमाग में ऐसी होती है कि आपको लगता है कि लेट मी बीट दैट रेड लाइट एंड लेट मी यू नो मूव हेड ऑफ द स्लो ट्रैफिक जो मतलब आपके सामने है. आपको लगता है कि वो गाड़ी ज़्यादा धीमी चल रही है, बट बिलीव इट और नॉट, जब आप रश में होते हो ना, जब आप ऐसी होड़ में होते हो कि जल्दी पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन तक, तब एक्चुअली आप ही केवल रश कर रहे हो. बाकी सब शायद अपने सही पेस में चल रहे होते हैं. और यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि नहीं, टिकट मुझे नहीं मिला एंड आई एम ऑल गुड, बट यू नो व्हाट, वन शुडन्ट डू दैट. मुझे ये रियलाइजेशन हुआ क्योंकि एक बार ऐसे मेरे पहले भी एक बार हुआ था एंड देन आई गॉट अ टिकट. एंड मैंने उस दिन ना कसम खाई थी कि कितनी भी ऐसे लेट हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, स्पीड नहीं करूंगी यार बिल्कुल भी, इट इज़ नॉट गुड. कुछ भी हो सकता था, राइट? तो ये मैं उन लोगों को जो शायद अभी जो स्पीड लिमिट है उससे 10 ज़्यादा 20 ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ऐसे यू नो वीडियो गेम की तरह अपनी गाड़ी चला रहे हैं कि थोड़ी जल्दी पहुंच जाए डेस्टिनेशन की तरफ, तो जी हाँ, आप सबको मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज स्लो डाउन. जिस डेस्टिनेशन पर भी आप पहुंच रहे हो, आई एम श्योर कि अगर आप 5-10 मिनट लेट भी पहुंचते हो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर फर्क पड़ेगा तो गेट रेडी विद एन अपॉलॉजी, एन ऑनेस्ट अपॉलॉजी देयर, एंड आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन देन. क्योंकि क्या है ना कि ऐसे में ही होती हैं गड़बड़, ऐसे में ही आपके एक्सीडेंट्स भी कई बार होते हैं. गॉड फॉरबिड, आई मीन रियली गॉड फॉरबिड, जो भी अभी तेज रफ्तार से चल रहे हैं, मैं रियली चाहती हूँ कि आप सेफ एंड साउंड पहुँच जाएँ, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग यू नो कि जल्दबाजी में ही कांड होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर कोई स्लिप एंड फॉल या वर्क प्लेस इंजरी या यू नो एक्सीडेंट में आप फंस गए हों और यू नो आपको एक कॉम्पनसेशन आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो फ्रॉम द अदर पार्टी, यू मस्ट गेट इन टच विद अटर्नी ओमर ख्वाजा. एंड मैंने ये बात हर बार कही है कि जितनी जल्दी आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे उतना आपके केस के लिए अच्छा होगा. तो अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, गेट इन टच विथ हिम एंड हिज टीम 4693005046. एंड द प्रॉमिस दे ब्रिंग अलॉन्ग विद देम इज यू डोंट हैव टू पे ए डाइम अंटिल यू विन. तो कॉम्पनसेशन मतलब बिल्कुल जान लगा देते हैं, वो आपको आपका कॉम्पनसेशन मिले. attorneyomar.com इज दैट वेबसाइट दैट यू मस्ट रिमेंबर टू विजिट एंड फाइंड आउट मोर. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM और ये है गपशप गली विथ मी टू.

मैं अपने लिसनर्स से ना बहुत इन्फ्लुएंस होती हूँ, उनको मूड, उनके मूड को एब्जॉर्ब करना जानती हूँ, और इसीलिए तो कह रही हूँ कि भाई आप अपने डेडिकेशंस एंड रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाएं, एंड वी विल प्ले द सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन ऑन दिस डे. इट इज 6th of May, लेडीज एंड जेंटलमैन. और थोड़ी देर पहले हमारे एक लिसनर ने राजमा चावल की बात की, और सच्ची में यार ये मौसम हो और राजमा चावल हो, क्या ही कहने. मतलब आप सोचते होंगे कि टाइम टू टाइम मैं खाने पीने की बात करने लगती हूँ, क्योंकि इट इज़ द कॉल ऑफ द वेदर. ये मेरी दिल की आवाज़ नहीं, एक्चुअली ये मौसम की आवाज़ है, कि ऐसे कुछ मौसम में ना ऐसा गर्मा गर्म इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम सो इन्फ्लुएंस्ड बाय माई लिसनर्स कि आप लोगों से इंस्पिरेशन लेकर मैं एक्चुअली कभी कभी करती भी हूँ. जैसे कि मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी अपने एक लिसनर से, जिन्होंने खिचड़ी की बात की थी. ऐसा ही कुछ मौसम था, आई थिंक इट वॉज ओवर द वीकेंड, और आई एम सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैंक. इट वॉज लास्ट वीक, आई वॉज डेफिनेटली ऑन एयर, सो लास्ट वीक डेज की बात है, लास्ट वीक के वीक डेज की बात है. एंड द वेदर वॉज अ सिमिलर काइंड, और हम ऐसे वेदर के लिए क्या खाना पसंद करते हैं, एंड समथिंग ऑन दोज लाइन्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. एंड दिस लिसनर ऑफ माइंड, शी टॉक्ड अबाउट खिचड़ी, एंड उस दिन मेरे घर में खिचड़ी बनी, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो क्या पता राजमा चावल इज इन द फोरकास्ट फॉर माई फैमिली टूडे. आपके घर में क्या बन रहा है आज? दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

ऑल राइट, आ जाएं आप ऑन एयर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना आता है. जी हाँ, ये वो गेम है जो मैं किसी से इंस्पायर होके खेल रही हूँ, और वो कोई जो है, मैं उनका नाम भी लेना चाहती हूँ. रेडियो संगम से याशनी, आई वॉज लिसनिंग टू हर शो एंड आई थरली इंजॉयड दिस गेम. मैंने कहा यार ये करने की कोशिश करती हूँ, उसने बड़े स्मूथली किया था. लेट मी सी इफ आई कैन स्मूथली डू इट. एंड टॉकिंग अबाउट विच, रेडियो संगम ने कल 1 साल पूरे किए हैं एंड यू नो वी आर वेरी ग्लैड टू टेल यू ऑल दैट कि आप सब साथ रहे हैं. इस तेलुगु स्टेशन को आपने जिस तरह से एम्ब्रेस किया है, वेल कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. और 1 साल के बाद कई और साल की दुआएं जो दी हैं, ये हमेशा साथ रखिएगा. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. तो चलिए मैं वो गेम खेलना चाहती हूँ जहाँ पे मैं आपके लिए एक गाने का मुखड़ा प्ले करने वाली हूँ और एक लाइन पे मैं ब्लैंक देने वाली हूँ, और वो लाइन आपको सप्लीमेंट करना है. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. दैट इज द गेम, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ये गाना लगाने वाली हूँ, और जहाँ पर भी बीच में म्यूजिक से मैं फिल कर रही हूँ, वो फिल करना है आपको विद द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. ऑल राइट, नाउ दैट बींग सेड, लेट मी टेल यू ऑल, यू आर प्लेइंग फॉर फन पिज्जा किचन, लेडीज एंड जेंटलमैन. $10 का गिफ्ट कार्ड होगा आपका, वेयर विच यू कैन गो एंड रिडीम इट एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. और ये गिफ्ट कार्ड जो आपके लिए है, दैट कैन गिव यू दोज अमेजिंग अमेजिंग देसी स्टाइल पिज्जाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड एवरीथिंग बियॉन्ड दैट एज वेल. तो चलें 972-235-5555. I'm going to try. Let's see how it works. ठीक है? Here we go. Let's see. And the song is this. एक लाइन आपको फिल इन करना है. Here we go. All right. Let's see if I can get you the beginning of this song. चलो फिर से चलते हैं. ठीक है?

0: All right, I have somebody on the airwaves of Fun Asia Radio 104.9 FM. पहले तो बताइए गेम कैसा लगा?
1: गेम बढ़िया.
0: बढ़िया ना, बिल्कुल झकास टाइप्स ना. Well, thanks to Yashni. आप बताएं अपना नाम.
1: हिमांशु.
0: हिमांशु, supplement the line. क्या है? Fill in the blank.
1: Sun.
0: जी हाँ, लेकिन आपको क्या करना था? यू हैड टू फिल इन द ब्लैंक. मैंने एक लाइन जो है उसको इरेज करके आपके लिए ये गाना प्ले किया था. वो लाइन आपको मुझे बतानी है. ऑलराइट हिमांशु, नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, थैंक यू जी. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
2: यस
0: यस.
2: इन द मिडिल इज लाइक पलकों पे रह जाएगा यादों का समा.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. वंस अगेन टेल मी हाउ वाज द गेम.
2: इट्स अ गुड गेम. इट्स अ गुड गेम. आई लाइक इट.
0: है ना? क्या नाम है सर आपका?
2: आतिफ.
0: कैन यू से दैट अगेन?
2: आतिफ जमाली.
0: आतिफ, आतिफ जमाली साहब, आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. कंग्रेचुलेशंस टू यू. आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड और इस बारी जो लाइन आपने कही उसके साथ ये गाना सुनवाने वाली हूँ. थैंक यू जी. होल्ड द लाइन. हाँ,
2: थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस टू यू.

0: जाने ये
1: तो रुको जरा, सबर करो।
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
8: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
8: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
9: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
10: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
9: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
10: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
17: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

0: 104.9 FM Fun Asia. Fun Done.
1: और डन है जी कि इसी सेगमेंट में आप लोगों से कुछ कॉन्वर्सेशन की जाएगी. दिस इज द गपशप गली. वी टेक दैट राउट जहां पर एक सवाल होता है जिसका ना कोई सही जवाब ना कोई गलत जवाब होता है. जवाब होता है आपका अपना, वेरी यूनिक. और आप में से एक को हम देने वाले हैं दिस गिव अवे. और उसके बारे में भी डिटेल्स दूंगी आपको. लेकिन उसके पहले ये भी कहना चाहती हूँ आप सबसे कि यू नो दिस प्लेस दैट यू मस्ट डेफिनेटली थिंक अबाउट, एंड दैट्स श्री कृष्णा. और सोचने से कुछ नहीं होता है, जाके देखने का होता है. क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शन इनकी जो टाइमलेस गोल्ड की है, डायमंड्स की, एक्सक्विजिट कुंदन और पोलकी की जो डिज़ाइंस हैं उनके पास, वो आप देखोगे तो समझ में आएगा. क्योंकि एवरी पीस टेल्स ए स्टोरी दैट इज सो यूनिक टू दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी. इट विल स्पीक टू यू. मुझे ऐसा लगता है कि हर ज्वेलरी पे लिखा होता है लेने वाले का नाम. दैट ज्वेलरी स्पीक्स टू यू. दैट्स फॉर मेनी अदर थिंग्स आई फील कि ज़रूरी नहीं है कि एक कोई चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है वो आपको भी पसंद आए. वो हालांकि हो सकता है कि ब्यूटिफुल इट इज़ एंड इट इज़ इन योर बजट एंड एवरीथिंग, लेकिन होता है यार, एक वो आँखों से ना कनेक्शन बन जाता है दिल का. और ये जो है श्री कृष्णा ज्वेलरी मेक्स एग्जैक्टली दैट फॉर ऑल ऑफ यू. आफ्टर ऑल क्राफ्टिंग क्रिएशन सिंस 1967 लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दे आर सिचुएटेड इन फ्रिस्को. डू विजिट श्री कृष्णा ज्वेलर्स. और आपके GPS के लिए दैट एड्रेस इज 13145 सुइट 220 ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. Once again, thank you very much for tuning in. बस इस गाने के बाद एक सवाल आपके तरफ यूं फेंकने वाली हूँ, ठीक है? तो स्टूडियो के नंबर के साथ तैयार हो जाएं. 972-235-5555. ये है गपशप गली और मैं हूँ मीठू.

All right, I am getting ready to give you this giveaway from Neon Cactus, ladies and gentlemen. एक ऐसी जगह है जहां पर आपको मेक्सिकन फ्यूजन खाना मिलेगा और ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलेगा इनके खाने में. एंड जस्ट नॉट दैट, ये भी बताना चाहती हूँ यहाँ का एम्बियंस फुल ऑफ एनर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एक वो यंग कलरफुल मॉडर्न एम्बियंस जो है, इट विल मेक एनी डेट, एनी हैंग आउट और एनी प्लान टू चिल देयर आउट देयर रियली रियली मेमोरेबल. आई एम telling you, you have to go to this place to witness it yourself. इस जगह का नाम फिर एक बार Neon Cactus, जहाँ पर fresh ingredients होती है, ज़बिया हलाल options भी हैं और साथ ही हमारे vegetarian friends के लिए बहुत सारी choices हैं, ये भी कहना चाहती हूँ. वैसे अभी फ़िलहाल आपके लिए ये choice है कि अगर आप यहाँ से जीतना चाहते हैं $20 का discount on dine-in, तो आपके लिए ये याद रखिएगा कि दिस ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, वेयर इन यू कैन गिव मी अ कॉल 972-235-5555 नंबर है स्टूडियो का. और सिंपल सा सवाल है ना, जिसका कोई सही जवाब है ना कोई गलत जवाब है, यू नो. सो यू हैव टू जस्ट गिव मी ए कॉल, ट्रस्ट मी इट इज़ नो ब्रेनर फॉर ऑल ऑफ यू. क्या है ना कि हमारा जो डैलस फोर्ट वर्थ का स्काई लाइन है, इट इज़ अबाउट टू गेट ए मैसिव अपग्रेड. और अगर आप लेनो या उसके आसपास रहते हैं तो ये न्यूज़ आप ही के लिए है, समझ लें. AT&T ने अपने प्रपोज वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के नए डिटेल्स रिवील किए हैं और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है. द प्रोजेक्ट स्पैन्स ए मैसिव 54 acres एंड इंक्लूड्स 2.3 million स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस. बट द वन थिंग ग्रैबिंग एवरीवन्स अटेंशन is the proposed 280-foot iconic tower. In fact, जो locals हैं उन्हें उन्होंने decide किया इसे mini reunion tower का नाम देंगे फिलहाल. And this mini reunion tower, I am sure it's going to look amazing. और हमारे प्लेनों के लिए एक landmark, एक जगह हो सकती है ये. अब आगे क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. प्लेनो जोनिंग कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी यूनानिमसली अप्रूव कर दिया है. द प्लेनो सिटी काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू वोट ऑन द फाइनल जोनिंग अप्रूवल ऑन May 26. अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो इन जस्ट कपल ऑफ ईयर्स प्लेनो का नया लैंडमार्क बिल्कुल तैयार है बनने के लिए. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लैंडमार्क, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू. आप जिस भी शहर में बड़े हुए हो ना, वहाँ का कुछ लैंडमार्क मुझे बता दो, शहर का नाम और साथ में लैंडमार्क कुछ बता दो. देखिए, मैं हूँ भोपाल से और भोपाल तो यू नो दैट इट इज़ एक्चुअली नोन एज सिटी ऑफ लेक्स. और वहाँ पे हमारा बड़ा तालाब और छोटा तालाब, दैट वाज अ प्लेस टू हैंग आउट, वो सनसेट देखने के लिए, और बड़ा खूबसूरत एक इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है. तो बताइए आप जहाँ पे बड़े हुए हैं उस शहर का लैंडमार्क क्या है, आई'd लाइक टू नो. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो, सो कॉल मी. इस गाने के बाद लेट्स स्टार्ट टेकिंग योर कॉल्स राइट आफ्टर द सॉन्ग.

0: एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल वही आप लोगों से जो हमने AT&T के जो प्रपोज वर्ल्ड हेडक्वार्टर के बारे में बताया, जो प्लेनों में बनने वाला है, 54 एकर्स का एक मैसिव प्रोजेक्ट जो बनने वाला है, और वहां पे एक जो 280 फुट का जो आइकॉनिक टावर होने वाला है, वो डेफिनेटली एक लैंडमार्क बनेगा प्लेनों का, अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है और ये जो जोनिंग प्लेनो सिटी काउंसिल जो कि करने वाली है वोट ऑन द फाइनल जोनिंग अप्रूवल जो May 26 को होगा, और अगर ये ग्रीन सिग्नल मिल जाए जैसे कि मैंने कहा कि देन इट विल बी रेडी इन कपल ऑफ इयर्स एंड प्लेनो विल हैव इट्स न्यू लैंडमार्क जिसे मिनी रीयूनियन टावर का नाम फिलहाल दिया जा रहा है, और अगर वो होता है तो वो बड़ा शानदार होगा। और आपकी सिटी से जहां पर आप बड़े हुए हैं वहां पर क्या शानदार लैंडमार्क है, आई वॉन्ट टू नो। लेट्स टेक दिस कॉलर लाइव ऑन एयर, थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन, एंड क्या नाम है आपका?
1: जी हाँ, मेरा नाम संदीप है।
0: हाँ जी संदीप, बताइए कि आपके शहर का नाम बताइए जहाँ पे आप बड़े हुए हैं और वहाँ की लैंडमार्क जगह बताइए हमें।
1: जी हाँ, मैं बड़ा हुआ हूँ मुंबई से।
0: ओके।
1: और मुंबई में तो काफी सारे लैंडमार्क है और हर लैंडमार्क से हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, तो जो मेरी पहला लैंडमार्क जो मैं बोलूंगा वो है गेटवे ऑफ इंडिया, जो चर्च गेट पे है समंदर के एकदम सामने।
0: एक्चुअली या
1: एंड अक्सर जाते रहते हैं।
0: बिल्कुल, गेटवे ऑफ इंडिया मैंने लिख लिया है, फ्रॉम मुंबई दैट यू आर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर, एंड दिस वी आर प्लेइंग फॉर नियॉन कैक्टस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लाइव ऑन एयर। स्टूडियो का नंबर मैं बाकी जनता के लिए बता दूं, इट इज 9722355555। यस, टेल मी विच सिटी यू ग्रू अप इन और वहां का लैंडमार्क। हेलो, कैन यू हियर मी?
2: Yes.
0: Yeah. Please go ahead and tell me your name और अपने शहर जहाँ पे आप बड़े हुए हो।
2: जी, मेरा नाम वंदना है।
0: वंदना,
2: और मैं जी तो मेरा फर्स्ट प्लेस है अमृतसर।
0: अमृतसर
2: जी,
0: तो फिर मैं समझूं गोल्डन टेम्पल।
2: जी, गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली,
2: बिल्कुल, जलियांवाला बाग।
0: बिल्कुल, मल्टीपल प्लेसेस दैट वन कैन थिंक ऑफ। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल वंदना जी, थैंक यू। गोइंग टू माय नेक्स्ट कॉलर, यू आर लाइव ऑन एयर और हमारी जनता के लिए नंबर स्टूडियो का 9722355555। बताइए कहाँ से हैं?
3: गुड मॉर्निंग मिट्टू जी, सिटी का नाम है फैसलाबाद, लालपुर।
0: फैसलाबाद आपने कहा, राइट?
3: Used to be Lailpur, now new name is Faisalabad.
0: Faisalabad, और वहाँ का लैंडमार्क क्या है बताएं जरा?
3: घंटाघर।
0: घंटाघर?
3: जी।
0: घंटाघर मतलब वही क्लॉक का हुआ क्या? मतलब मतलब घंटा तो समझ गई, घंटा मैं समझ गई।
3: घंटाघर is American flag, and you enter that city to घंटाघर from it.
0: I see. Interesting,
3: yeah.
0: Very interesting, sir. Thank you so much. और आपका नाम सर हमारी जनता के लिए?
3: खान, खान के HAN, और वहाँ पे हर चीज घंटाघर में मिलती, यानी कि you name it, they have it.
0: Oh really? How interesting. Yeah. Well, thank you so much for sharing. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर। This is the next caller that we are going to take on air. You are live on air. बताइए।
4: हाँ, मैं अहमदाबाद से हूँ।
0: ओके।
4: और हमारा गांधी आश्रम फेमस है, पूरे देश के लिए, विश्व भर में प्रख्यात है।
0: विश्व भर में पॉपुलर है, बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। और आपने अपना नाम क्या बताया?
4: नेहा,
0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो। द सिटी दैट यू ग्रू अप इन, वहाँ का लैंडमार्क क्या है, ये बातचीत चल रही है फॉर द लिसनर्स हु आर ट्यूनिंग इन जस्ट नाउ। बताइए, आप ऑन एयर हैं, बताइए आपका नाम और आपके शहर का नाम जहाँ पे आप बड़े हुए हैं।
5: मेरा नाम धीरज, शहर का नाम लुधियाना, पंजाब, इंडिया।
0: ऑल राइट, और वहाँ का लैंडमार्क?
5: लैंडमार्क है जी घंटाघर, क्लॉक टावर।
0: घंटाघर, अभी थोड़ी देर पहले

0: फैजलाबाद के बारे में हमारे,
1: मैंने सुना है।
0: हाँ जी, घंटा घर ही कहा उन्होंने। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, रियली अप्रिशिएट। 9722355555। आई एम गोइंग टू गो टू दिस नेक्स्ट कॉलर, एंड अगर इन्होंने नियॉन कैक्टस की तरफ से नहीं जीता तो इन्हीं को दे दे, क्या बोलते हैं आप?
2: हेलो,
0: यू आर लाइव ऑन एयर, आप बताइए आप कहाँ से हो, कहाँ पे बड़े हुए हो और लैंडमार्क?
2: Hi, yes. I grew up in Calcutta and it's a very famous landmark. Is one is, we have a lot,
0: yeah,
2: but one of them is like Howrah Bridge.
0: Oh, yes. Oh, yes. Yes. Absolutely.
2: And the second one is Victoria Memorial.
0: You know, that is what exactly came to my mind first, actually. Ki Victoria Memorial. Abhi bhi wahan pe kya bhel puri shayad bahar milti hai, wo abhi bhi milti hai?
2: हाँ, लाइक बहुत ही अच्छा है, लाइक हाउ दे लाइक यू नो कीपिंग सो वेल एंड एवरीथिंग क्लीन एंड नाइस। पूरा बाहर गार्डन है वहाँ, लाइक
0: मुझे बहुत वक्त हुआ है कि वहाँ पे मैंने
2: शाम के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, और लाइक पूरा फ्लावर्स गार्डन बना हुआ है बाहर में एंड फुल्ली एरिया इज प्रोटेक्टेड, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, वो बिल्ट इन द ब्रिटिश टाइम्स है।
0: मेमोरियल एंड यू नो वॉट, देर इज अ सॉन्ग मैं आपके लिए वेरी स्पेशली बजाने वाली हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यू आर द विनर फॉर नियॉन कैक्टस बाय द वे। हमने ना ये डिसाइड कर लिया था कि अगली जो कॉलर होंगे उनको हम देने वाले हैं,
2: तो
0: यू आर द लकी विनर। एंड टेल मी योर नेम अगेन।
2: माई नेम इज मौसमी।
0: मौसमी, एंड मौसमी आपने नियॉन कैक्टस से पहले जीता है क्या?
2: नहीं, कभी नहीं।
0: कभी नहीं, तो यू गोना हैव एन अमेजिंग अमेजिंग फूड एक्सपीरियंस देयर, एंड द एम्बियंस दैट इज एब्सोल्युटली सो वाइब्रेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप होल्ड करो लाइन, एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ एयर, एंड मैंने इनको डाला होल्ड पे, और आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि ये कोलकाता के बारे में बोल रही थी, तो मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ आपके लिए वेरी स्पेशली, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से, जो कि हावड़ा ब्रिज पे जिसके एक वो फ्लैश मॉब हुआ था इस गाने पर, इस पर्टिकुलर गाने पर, तो मैंने सोचा कि यार मौका भी है, लगा देते हैं किसी बात पर।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville, Dallas का सबसे बड़ा देसी grocery स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
7: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
9: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
11: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
12: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601
13: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
12: Amreen Salon, style that moves with you.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me, it's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
16: K2 ड्राइव मतलब?
17: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
19: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.
2: All right, ladies and gentlemen, thank you very much for tuning in. This is Gapshap Gali with me too. और मेरे साथ इस वक्त हर वेंसडे को जुड़ने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट. एंड दिस स्पेशल गेस्ट इज फ्रॉम जीनू क्रेडिट. जीनू क्रेडिट रिपेयर डॉट कॉम इज द वेबसाइट. वी वॉन्ट यू ऑल टू लॉग ऑन टू द वेबसाइट. बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, दिल में हैं, जो आपके भी शायद दिमाग में होंगे. तो सबसे पहले हम अपने स्पेशल गेस्ट को लेते हैं ऑन एयर एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू हिम एंड फिगर आउट एंड फाइंड आउट हाउ दे कैन हेल्प अस. गुड आफ्टरनून मिस्टर दीप, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके?
20: जी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स.
2: एब्सोल्युटली बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हूँ. और जी हाँ, ये जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, मुझे लगता है कि कई लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है. तो सीधे टॉपिक पे जाने वाली हूँ. सबसे पहले आप बताएं अपनी कंपनी के बारे में, जीनू क्रेडिट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें.
20: जी एक्चुअली जीनू क्रेडिट है जो हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करा हुआ है. हम उन इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं जो हु आर स्ट्रगलिंग विद द बैड क्रेडिट.
2: ओके ओके, सो व्हाट इज द नंबर टू कॉल यू?
20: सो वी हैव अ टोल फ्री नंबर, इट्स 800-400-9468.
2: 800-400-9468. I have it down for my listeners कि किसी को भी अगर चाहिए हो तो जरूर कॉल करें. Otherwise you definitely can log on to zenucreditrepair.com and get all the information. तो मुझे आप बताइए कि exactly ये जो credit repair होता है, इसका क्या use है? मतलब क्या कैसे हमारे listeners इससे इसकी मदद ले सकते हैं?
20: जी definitely. जी जैसे most of the people वो realize नहीं करते भी उनका जो credit scores का influence है उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है.
2: अच्छा.
20: अगर मैं बात करता हूँ घर लेने के लिए या किसी तरीके का लोन अप्लाई करो या इवन securing बेटर रेट इंटरेस्ट, राइट? सो अ गुड क्रेडिट स्कोर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, राइट? तो हम वही हेल्प करते हैं जो भी इंडिविजुअल है जो भी बैड क्रेडिट्स को स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई भी किसी तरीके का भी लोन कर रहे हैं.
2: हाँ जी.
20: तो वो लोन सैंक्शन नहीं हो रहा. लोन्स क्यों नहीं सैंक्शन हो रहा? इट कैन बी मैनी रीजंस. जो कॉमन रीजंस क्या है? मिस पेमेंट्स, राइट? हम पेमेंट्स को टाइम पे नहीं पे कर रहे. अगर हम मिस पेमेंट्स करेंगे डेफिनेटली आपके क्रेडिट स्कोर ड्रॉप कर जाएंगे, ठीक है?
2: जी.
20: बाद में आ जाता है क्लोज चार्ज ऑफ कमेंट. अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो क्लोज, अगर आपने बैलेंस को पे ऑफ भी कर दिया पर जो वो क्लोज अकाउंट और चार्ज ऑफ कमेंट है आपकी रिपोर्ट से नहीं निकलेगा एज पर द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, राइट? तो उसको अगर और बारीकी में जाए तो कलेक्शन अकाउंट्स, कभी कभी क्या होता है आप ओरिजिनल लैंडर को पैसे नहीं पे करते तो ओरिजिनल लैंडर आपका अकाउंट को थर्ड पार्टी को सेल करता है, राइट? आपने बैलेंस को पे ऑफ भी कर दिया पर वो कमेंट, कलेक्शन कमेंट स्टिल रिफ्लेक्ट्स इन द क्रेडिट रिपोर्ट फॉर 7 to 10 years,
2: राइट?
20: तो जो ये चीजें, सारी चीजें, इनको बोलने में तो काफी छोटी चीजें हैं पर ये बड़ा इम्पैक्ट करती है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट.
2: एब्सोल्युटली.
20: ये आपके क्रेडिट स्कोर्स को बूस्ट नहीं होने देता और आपको गोइंग फॉरवर्ड आप कोई भी लोन अप्लाई करते हो वो सैंक्शन नहीं होता.
2: जी.
20: सो अगर कोई भी इंडिविजुअल, जो भी लिसनर मेरी कॉल को सुन रहा है, मेरी आवाज सुन पा रहा है, तो अगर उनको स्ट्रगलिंग विद द बैड क्रेडिट, दे डोंट नीड टू वरी. उनको बस एक स्टेप लेना है, दे जस्ट नीड टू कॉल अस. वी आर जस्ट वन कॉल अवे. हमारे पास सर्टिफाइड क्रेडिट स्पेशलिस्ट है, राइट? जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे, वो आपके एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे.
2: Okay.
20: और क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं उसके ऊपर काम करेंगे और उस चीजों को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्रेडिट को रीबिल्ड करेंगे. यू विल बी बैक ऑन ट्रैक इन कपल ऑफ मंथ.
2: दैट सीम्स लाइक अ बिग हेल्प हमारे लिसनर्स को मिल सकता है. तो बेसिकली अगर आपको कोई अप्रोच कर रहे हैं तो वहां से प्रोसीजर क्या होता है कि वो अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए? व्हाट इज द, हाउ डू दे स्टार्ट विथ यू?
20: जी देखिए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, हमें क्लाइंट की क्रेडिट रिपोर्ट पुल करना होता है, राइट?
2: ठीक है.
20: अगर क्रेडिट रिपोर्ट होगा तो उससे क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगे, कौन कौन से डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उसकी रिपोर्ट के अंदर, राइट?
2: ओके.
20: तो चाहे वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करे हमें अपनी क्रेडिट रिपोर्ट, राइट?
2: हाँ जी.
20: देयर आर मेनी वेबसाइट, काफी वेबसाइट जो आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती हैं.
2: अच्छा.
20: हम उसको ऑडिट करेंगे, हम आपको प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे और सबसे बढ़िया चीज, हमारा जो प्रोग्राम है दैट्स 100% परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम. नो अपफ्रंट फी. हम अपफ्रंट फी कोई चार्ज नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आते.
2: ओह दैट्स अ बिग प्रॉमिस, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉमिस. आई थिंक लिसनर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर जाएं आप इनके पास. और फिर एक बार मैं आपका वो टोल फ्री नंबर शेयर करना चाहती हूँ अपने लिसनर्स के साथ, 800-400-9468, और वेबसाइट है xenocreditrepair.com. तो व्हाट आर द स्टेट्स जहाँ पर आप काम करते हैं एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये भी एक सवाल मेरे ख्याल से हमारे लिसनर्स के दिमाग में होगा.
20: जी डेफिनेटली. सबसे पहले तो हम पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर करते हैं, वी आर वर्किंग ऑल द स्टेट्स इंक्लूडेड कनाडा, राइट. हम कनाडा और अमेरिका सब में काम करते हैं. जो टाइम फ्रेम की बात करी आपकी रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंतर होगा, फर्क होगा, राइट.
2: करेक्ट.
20: तो जो जो टाइम फ्रेम है ये इंडिविजुअल की क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर बेसिस है. अच्छा. उसकी रिपोर्ट पे कौन कौन सी चीजें काम करने वाली है.
2: हाँ.
20: पर एक चीज है, कोई भी क्लाइंट अगर हम एवरेज आउट की बात करें, 45 to 60 days क्लाइंट को अपनी रिपोर्ट में चेंजेस नजर आएंगी और उसके क्रेडिट स्कोर्स बूस्ट होते हैं उसको नजर आएंगे. और बेस्ट थिंग हमारे प्रोग्राम का क्या है, हम आपको एक पोर्टल एक्सेस देंगे, राइट. पोर्टल एक्सेस के साथ बाय सिटिंग एट योर होम आप अपनी फाइल को मॉनिटर करो. आप अपनी फाइल के ऊपर क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, हर एक चीज यू कैन मॉनिटर बाय सिटिंग एट योर होम. आपको पता लगेगा भी आपकी फाइल के ऊपर क्या चल रहा है.
2: दैट्स अमेजिंग, बिकॉज यू नो हम क्यूरियस रहेंगे ना कि मतलब जो वेट टाइम होता है इन ऑर्डर टू क्लियर दैट क्रेडिट रिपेयर जो आप कर रहे हो, उस दौरान हमें भी पता चलता रहेगा एज ए क्लाइंट एट योर्स कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, सारी चीजें पता चलती हैं.
20: इसीलिए बोला दैट्स अ ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट.
2: दैट्स अमेजिंग रियली. और यहाँ पे मैं कॉस्ट के बारे में भी जानना चाहती हूँ. आपने टाइम भी बता दिया कि सबका एक यूनिक होगा, एंड आई थिंक कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगा कि सबका, क्योंकि यूनिक केस है. ओके.
20: 100% वो आपकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा. पर जो मैंने पहले बताया था, हम आपको परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान देंगे. अगर काम करेंगे तो पैसे लेंगे, अगर काम नहीं होगा वी विल नॉट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी.
2: दैट्स अ बिग प्रॉमिस दैट यू आर कमिंग विद, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे. और कनेक्ट करने के लिए नंबर मैं बता देती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, टोल फ्री नंबर है 800-400-9468, 800-400-9468, xenocreditrepair.com is the website. और आपके साथ बात करके बहुत सारी जानकारी मिली मिस्टर दीप, और लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे.
20: थैंक यू वेरी मच हैविंग मी हियर. थैंक यू.
2: थैंक यू. इट वाज माय प्लेजर कंप्लीटली. थैंक यू सर. And ladies and gentlemen, it is this frequency that you are tuned into which always gives you amazing, amazing advice, information, entertainment, all of that packaged in one bundle which is called Funisha Radio 104.9 FM. And this is Gupshup Gali with me too.

ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था राहत साहब की आवाज में एक गाना जो कि मेरे ख्याल से एक वेब सीरीज है या फिल्म है, काबली वाला, उस काबली पुलाव मेरे ख्याल से. इट वॉज फ्रॉम दैट. यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM. आप लोगों के लिए एक और खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड इट इज़ टू डू विद देसी मंडी, जहाँ पर आपको बाई वन गेट वन फ्री मिल रहा है, जो सुनते ही मेरे दुकान खड़े हो जाते हैं. और इसीलिए जो चीज़ मुझे भाती है ना, मैं आप लोगों के साथ बार बार लगातार शेयर करती हूँ. देसी मंडी की तरफ से ये जो डील है आप लोगों के लिए, मंडे से लेकर वेंसडे तक बाई वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. और ट्यूजडे और थर्सडे आपके लिए डोसा और चाट का बाय वन गेट वन फ्री है. ये भी बताना चाहती हूँ, ये वीकडेज में केवल आपके लिए ये डील्स हैं. 5 PM to 9 PM नो मिक्स एंड मैच दैट यू कैन डू, लेकिन फ्लेवर्स गारंटीड है ऑल वीक लॉन्ग. तो जरूर जाइएगा देसी मंडी, जो कि लुइसविल में है, बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ. और आप जानते ही हैं कि यहाँ पे आपको ग्रोसरीज पे भी अमेजिंग डील्स मिलती हैं. तो जरूर जाइएगा देसी मंडी. एंड फॉर देसी म्यूजिक यू आर एट द राइट प्लेस. इट इज फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. ऑलराइट, एक गाने पर लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि ये फिल्म जो है आज के दिन रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम लव का दी एंड. श्रद्धा कपूर एंड अली जफर्स फिल्म लव का दी एंड जो आज के दिन रिलीज हुई थी, द ईयर वॉज 2011. Everybody say yeah.

आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है लव का दी एंड. 2011 में रिलीज हुई थी एंड दिस वाज दिस टीन कॉमेडी ड्रामा जिसमें श्रद्धा कपूर ने लीड रोल प्ले किया था एंड इट वाज हर फर्स्ट फिल्म इन विच शी प्लेड दिस यू नो द लीडिंग रोल इन द फिल्म. और ये जो कहानी है ये लिखा था शहनाज ने, शहनाज ट्रेजरी वाला, और ये अपेरेंटली उनकी अपनी कहानी से इंस्पायर्ड था जहाँ पे वो रिवेंज ले रही थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से. एंड इट वॉज प्रिटी आई थिंक विद अ टच ऑफ ह्यूमर एंड ऑल ऑफ दैट इट हैपेंड. आई थिंक लव का दी एंड बॉक्स ऑफिस का पे भी दी एंड हुआ था, उतना कुछ चला नहीं था, लेकिन इसका ये गाना वॉज स्टिल क्वाइट पॉपुलर देन एंड दैट्स 2011 आई एम टॉकिंग अबाउट. एक और फिल्म के बारे में बात करूंगी जो आज ही के दिन रिलीज हुआ है, बट दिस सॉन्ग मेड मी प्ले यू नो मेड मी थिंक ऑफ दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू.

0: right, it is time to go to another movie, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी in the year 1994, May 6, 1994. और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार और काजोल the one and only time that they were seen together. क्या आप जानते हैं कि काजोल उस वक्त बिल्कुल फ्लैट थी अक्षय कुमार पर, यानी कि बहुत बड़ा था क्रश अक्षय कुमार पे. और एक इंटरव्यू है जो आप यूट्यूब पे आपको मिल सकता है, एंड यू कैन सी दैट ग्लिटर इन हर आईज वेन यू नो द थ्री ऑफ देम वर इंटरव्यूड, एंड द थर्ड पर्सन इज सैफ अली खान ऑफ कोर्स. और यू नो काजोल की आंखों में वो चमक दिखती है अक्षय कुमार के लिए, एंड इट इज सो क्यूट बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग देन, अक्षय कुमार वॉज ऑल्सो वेरी यंग, ऑल थ्री ऑफ देम वर वेरी यंग. एंड दिस फिल्म विच एक्चुअली हिट द बॉक्स ऑफिस एंड वॉज ए सुपर हिट फिल्म अलॉन्ग विथ ऑल द म्यूजिक फ्रॉम द फिल्म. तो बस उसी फिल्म का एक गाना लगाने वाली हूँ, लेकिन इस सुपर हिट गाने के पहले सुपर हिट एक जगह की बात करने वाली हूँ. क्योंकि चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या सिंपली अपनी हार्ड अर्न सैलरी बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, टैक्सेस और बुक कीपिंग का स्ट्रेस हमारा सबसे कीमती एसेट चुरा लेता है, एंड दैट एसेट इज आवर टाइम. हम घंटों पेपर वर्क और IRS के रूल्स समझने में निकाल देते हैं. तो ऐसे में CPA सुधीर पाए का नाम आपके सामने आना चाहिए, ठीक है. एंड इट इज़ mytimeequity.com जहां पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड एनी फाइनेंशियल गाइडेंस दैट यू आर सीकिंग बिकॉज दे ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, दैट्स द प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू. नंबर टू कॉल इज 4697021272. mytimeequity.com इज द वेबसाइट.
1: देखो जरा देखो.

0: बस इसी गाने के साथ वाइंड अप करने वाली हूँ आज का अपना शो. कल मुलाकात होगी ठीक 10 बजे. लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 to 12:30 विथ मी राइट हियर ऑन गपशप गली विथ मी टू. अप नेक्स्ट इज सिमरन. लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू गिव हर अ वार्म वेलकम. मोस्ट लिटरली यार ठंड हो रही है बाहर. दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Ghar ki aadmi aayi tujhe jaise.
3: Aati hai yaar. बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
3: सच में बिल्कुल घर जैसा.
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
5: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सब को थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
13: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
12: रोज का सेम प्रॉब्लम.
14: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
15: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
16: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
4: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
17: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
18: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
0: A very good afternoon, Dallas. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे देसी गर्ल आरजे सिमी. मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक और हम करने वाले हैं आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और न्यूज और बहुत सारी गपशप. और मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगी जिसका जवाब देने पे आपको मिल सकता है एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू Fun Asia Radio.

आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा और सो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की। आजकल जो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, वो है यूएस में बढ़ते गैस प्राइसेस के बारे में। दोस्तों थोड़ा ग्लोबल अपडेट लेते हैं। आजकल यूएस और ईरान के बीच टेंशन काफी बढ़ गया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डेली लाइफ, आपके वॉलेट पे भी पड़ रहा है, स्पेशली आपके गैस प्राइसेस पर। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग 20% ऑफ ऑयल सप्लाई गुजरता है। तो जब भी यूएस ईरान टेंशन बढ़ता है तो ये रूट डिस्टर्ब हो जाता है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है इस वॉर पर डिपेंड करता है, तो इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट यूएसए में भी डायरेक्टली फील होता है। तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि क्या आपकी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग ऑयल प्राइजेस। यू कैन कॉल मी एट 972-235-5555।

अगर आप भी शाहरुख या अनुष्का की तरह जो है डैजल करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में, जो कि सिचुएटेड है प्रेस्टन रोड पे फ्रिस्को में, और ये है आपका गो टू डेस्टिनेशन स्टनिंग डायमंड रिंग्स के लिए, इयररिंग्स के लिए, नेकलेसेस और हर उस स्पार्कल के लिए जो आप अपने स्पेशल मोमेंट्स के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे वो क्लासिक सॉलिटेयर्स हो या फिर कंटेम्प्रेरी स्टाइल। इनका डायमंड कलेक्शन जो है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है एंड एवरी पीस स्पीक्स अबाउट द टाइमलेस डिजाइन एंड इट इज परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, या फिर अगर आप कोई भी ओकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में जाइए, उनके वैरायटी ऑफ कलेक्शंस को एक्सप्लोर कीजिए।

दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे यूएस में बढ़ते गैस प्राइसेस के बारे में, जो कि काफी चर्चाओं पे है हर जगह बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वॉर बिटवीन यूएस एंड ईरान. और इसका रिजल्ट ये है कि जो एवरेज गैस का प्राइस है वो करीब करीब $4.5 पर गैलन तक पहुंच गया है, जो कि रिसेंट ईयर्स का अभी तक का सबसे ज्यादा हाई है. कुछ जगहों पर तो ये $6 तक पहुंच गया है. मतलब बात सिंपल है कि चाहे वॉर कहीं भी हो रहा हो, बिल तो आपके वॉलेट को ही ना पड़ता है. चाहे स्कूल जाना हो, स्कूल ड्रॉप करना हो, ऑफिस जाना हो, वीकेंड पे ड्राइव जाना हो, सब कुछ महंगा पड़ने लगता है. लेकिन इसका एक इलाज बताया है समीर जी ने, उन्होंने अभी अभी कॉल किया है कि उनके पास जो है ईवी गाड़ी है. तो ईवी गाड़ी के तो बड़े फायदे हैं, ना आपका गैस, ना आपका कोई खर्चा.

0: झुमका
1: यू हैव ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और मैं हूँ आरजे देसी गर्ल आपकी अपनी आरजे सिमी और हम बातें कर रहे थे बढ़ते यूएस के गैस प्राइसेस के बारे में। दोस्तों अभी जो यूएस और ईरान के बीच की जो टेंशन चल रही है ना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो या आपके घर पे पेरेंट्स से सुना हो तो जब गल्फ वॉर हुआ था तब भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, ऑयल सप्लाई तब भी डिस्टर्ब हुई थी, सेम पैटर्न आज भी है। डिफरेंस बस इतना है कि उस वक्त इम्पैक्ट थोड़ा धीरे धीरे फील होता था, आज ग्लोबल मार्केट इतना कनेक्टेड है कि न्यूज इतनी आसानी से सबको मिल रही है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नया है, और कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, मतलब वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन चीजें तो वही हैं जनाब।

टाइम हो गया है लंच का और बातें कर लेते हैं थोड़े खाने पीने के बारे में भी। तो अगर आप एक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा खाने के लिए कि यू नो आपका पेट भर जाए और मन भी भर जाए, तो आप जा सकते हैं पेज 3 ईटरी में, और ये सिचुएटेड है एट हब 121 पेज 3 ईटरी, जहाँ की इंडियन स्ट्रीट फूड जो है वो मॉडर्न फ्लेवर से मिलती है और फिर बनता है वैरायटी, जैसे कि कबाब, चाट, फ्यूजन बाइस एंड मॉकटेल्स। अगर आप देख रहे हैं कोई वाइब्रेंट वाइब वाली जगह अपने ब्रंच के लिए, लंच के लिए या फिर डिनर के लिए, या फिर हैं आप मेरे जैसे फूडी या आप देख रहे हैं लोकेशन अपने डेट्स या किसी फ्लेवर चेजर के लिए, तो बिल्कुल आप हब 121 में जाएं, पेज 3 ईटरी में जाएं, क्योंकि आपको डेफिनेटली वहां पे स्वाद का एक अच्छा संगम मिलेगा। और अभी अभी कॉल आया है सोहेल जी की तरफ से और हमने बात की थी बढ़ते गैस प्राइसेस और उसके सॉल्यूशंस, या फिर ड्राइविंग हैबिट्स में कुछ अगर चेंज करना हो तो, और कुछ लोगों ने बताया था कि हम ईवी पे स्विच कर सकते हैं, पर उनका जो डर है वो ये है कि उनको रेंज एंग्जाइटी होती है, विच इज अ वेरी वैलिड केस। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और ईवी के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। मीनवाइल प्लीज एंजॉय दिस सॉन्ग dedicated by Maryam to all our listeners and me. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो और मैं हूं आरजे सिमी और द शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा। अगर आप भी अपने बिजनेस एक्सपेंस को पावरफुल इनकम स्ट्रीम में बदलना चाहते हैं और आप जो है देख रहे हैं एक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कनेक्टिंग अमेरिका। और ये जो है ये डिजाइन किया गया है आपके बॉटम लाइन को, आपके प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और ये सिर्फ इतने पे ही खत्म नहीं होता, ये जो है हेल्प करता है सारे होम ओनर्स को उनके मॉर्टगेजेस पे करने के लिए 10 या उससे भी कम सालों में। तो इंतजार किस बात का है, कॉल कीजिए जेम्स को आज ही एट 1-321-888-7345 पे, या फिर उनका वेबसाइट पे आप विजिट भी कर सकते हैं connectingamericafinancials.com, और तैयार हो जाइए अपने डेली एक्सपेंसेस को इनकम में बदलने के लिए।
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
4: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
2: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
5: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
2: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
5: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
4: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
12: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
4: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
12: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
4: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
5: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org। पॉज द नॉइज, meet yourself.

ये है फन एशिया रेडियो और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा विद मी आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। अब वक्त हो चुका है हमारे गिव अवे राउंड को, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। ये जो सेगमेंट है ना आज का, स्पेशली मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉल करें और अपने अपने आंसर शेयर करें। क्वेश्चन ये है कि अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते और अपने 18 या 20 इयर्स के वर्जन में जा पाते, उनसे मिल पाते, तो आप उनसे क्या कहेंगे? एक लाइन, एक एडवाइस जो मे बी आपकी लाइफ चेंज कर सकती थी। एक बार रिपीट करती हूँ, एक एडवाइस जो आप यंगर सेल्फ को देना चाहोगे अगर आपका जवाब इंटरेस्टिंग हुआ और काफ़ी लोगों को दिल तक छुआ, तो हम आपके लिए लाए हैं देसी मंडी का गिफ्ट हैम्पर। एक्साइटिंग है ना? तो कॉल कीजिए हमें 972-235-5555 पे।

तो दोस्तों, अभी हमारा गिव अवे राउंड चल रहा है और हमने आपसे पूछा था कि अगर आप अपने 18 या 20 इयर्स के वर्जन को मिलते हैं, अपने यंगर सेल्फ से मिलते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे। बहुत लोगों ने जवाब दिया है, बट मैं चाह रही हूँ कि और से और आंसर्स आए ताकि मैं सबके आंसर्स सुनूं और फिर अपना विनर डिक्लेयर करूं। तो अगर आप भी अपना आंसर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

तो ये सॉन्ग सुनने से पहले हमने आपसे एक गिव अवे क्वेश्चन किया था कि अगर आप वक्त में वापस जा पाते, अपने 18 या 20 साल के वर्जन को मिल पाते, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देते। बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए, सजेस्ट किए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कॉलिंग। और आज की जो हमारी विनर है वो है मोनिशा चौकसी। कॉन्ग्रेचुलेशन मोनिशा, एंड आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप बेशक वहां जाएं और अपना गिफ्ट हैम्पर कलेक्ट करें 24-48 घंटों के बीच में। हम उनको आपका पूरा डिटेल्स दे सकते हैं, एंड मैं इसके बाद बाकी लोगों का, और जो मैक्सिमम लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए थे, और जो सबसे अच्छा जवाब था और जो कॉमन जवाब था वो ये था कि जी लो अपनी जिंदगी, आगे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आगे बहुत सब कुछ देखना है, कोविड देखना है, AI देखना है, आपको नहीं पता कि आगे लाइफ में क्या है। तो ये जो टाइम है ना वो एंजॉय करो, अपने पेरेंट्स के साथ बिताओ ताकि आपको बाद में दुख ना हो।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
4: क्योंकि ये कौन बोला?
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
5: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Desit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
9: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई। ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
10: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
9: मतलब?
10: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में। और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
8: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
11: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
11: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
14: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
13: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
15: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
12: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
15: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
12: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
15: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
12: Exactly. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
15: नंबर बोल जल्दी।
12: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
16: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
17: Yeah! अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
18: अपुन बोले तो full Bollywood धमाका, funny.

अब बात कर लेते हैं सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स के बारे में। अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं और आप प्लान कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं US परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता के पास, क्योंकि वो आपकी इसमें खासा मदद कर सकती हैं। अटर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो स्पेशलाइज करती है एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, PERM, लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। अगर आपको इस पे और अधिक जानकारी चाहिए EBF इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम पे, तो आप ईमेल कर सकते हैं info@seemamehtalawfirm.com और उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको जरूर हेल्प होगी।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और मैं बात कर रही हूँ आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल। हमने ब्रेक के जाने से पहले आपसे एक गिव अवे क्वेश्चन किया था, उसका विनर भी डिक्लेयर कर दिया था और क्वेश्चन ये था कि अगर आपको अपने यंगर सेल्फ से दोबारा मिलने का मौका मिले, आपके 18 या 20 साल के सेम शख्स से आपको दोबारा वापस मिलने का मौका मिले तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए और उनमें से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। किसी एक ने कहा कि सबसे पहले तो हम ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। सच बताएं, हम सब ने लाइफ का इतना टाइम इस सोचने में वेस्ट किया है कि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या बातें बनाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर जॉब हो। हम डिसीजंस अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा लेते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि लोग तो दो दिन बात करते हैं, फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो काश ये पहले समझ में आता तो शायद चॉइसेस और बोल्ड होती।

तो दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया है और आज का सेगमेंट काफी ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देनी हो तो शायद ये भी हो सकता है कि इतना भी सीरियस मत हो जाओ, सब कुछ अंत में ठीक ही हो जाता है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर हर फेज कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। मैं थी आपके साथ सिमरन सिमी, आरजे देसी गर्ल, और आप सुन रहे थे आफ्टरनून अड्डा। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम मस्ती, टेक केयर। और आज का दिन है ना, थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। आई होप यू एंजॉय योर डे, टेक केयर, बाय बाय।

वेरी वार्म वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और जी आज है वेंसडे और आप जानते हैं ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं लेकर आती हूँ हर रोज आपके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर. और आज का फ्लेवर क्या है? पॉप फ्रीक्वेंसी. वेंसडेज 2:30 to 4 PM मैं लेके आऊंगी, आप लेके आई हूँ, एक्चुअली आ चुकी हूँ पॉप फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम करेंगे कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक प्ले, सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. आपकी रिकमेंडेशंस ले रही हूँ, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है. लेकिन इफ यू हैव यू नो सम ब्यूटीफुल पॉप म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान दैट यू वुड लाइक टू लिसन टू, या किसी ड्रामे का गाना या किसी फिल्म का गाना, तो आप जरूर मुझे कॉल करके बता सकते हैं. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. अच्छा, 2 बजे से और 3:30 तक हम कुछ पॉप फ्रीक्वेंसी में कुछ गाने प्ले करेंगे. सेलिब्रेटिंग अ फेमस पर्सनालिटी सेगमेंट होगा. और उसके बाद 3:30 से लेके 4 बजे तक के दरमियान मैं लेके आऊंगी आपके लिए द टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान, टॉप 10 ड्रामास ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने TRP चार्ट्स में किया राज पिछले हफ्ते जो गुजरा है हफ्ता. सो बने रहिए मेरे साथ, आई हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइंड अप फॉर यू. फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस.

आबिदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गाना। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि अगर आपको बिल्कुल घर जैसा खाना खाना है लेकिन खाना पकाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको घर जैसा खाना किस रेस्टोरेंट से मिलेगा। और वो रेस्टोरेंट है जी तंदूरी फ्लेम। गार्लैंड में लोकेटेड हैं तमाम आपकी नॉर्थ इंडियन फेवरेट डिशेस, जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, उसके साथ यू नो कबाब के प्लैटर्स, वेलवेटी करीज, फ्रेश नान्स, जो कुछ भी आपको पसंद है वो सब कुछ मिलेगा आपको तंदूरी फ्लेम पे, जो कि लोकेटेड हैं गार्लैंड पे। जरूर चेकआउट कीजिए आप, ये है वो जगह जहां मिलेगा आपको एब्सोल्युटली घर जैसा खाना। This song is the official soundtrack of the drama serial Manmayal.

मन मायल ड्रामे का ये ऑफिशियल साउंडट्रैक आप सुन रहे थे। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये ड्रामा हमजा अली अब्बासी और माया अली की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। ऑल्दो अगर आप मेरे से पूछें तो थोड़ी सारी एपिसोड्स के बाद आई वाज लाइक कि मतलब क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये जो भी हो रहा है। लेकिन बहरहाल वो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों बोला कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या परेशानी चल रही है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल जी, हमजा अली अब्बासी और माया अली के इस ड्रामे को बहुत पॉपुलरिटी मिली। MD प्रोडक्शंस का ये ड्रामा जो कि 2016 में रिलीज हुआ था, 33 एपिसोड्स थी इसके अंदर और समीरा फजल ने इसे लिखा और हसीब हसन ने इसे डायरेक्ट किया। सो फिर भी अगर आपने नहीं देखा मन मायल तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज ऑफ दैट ईयर। और अब आगे बढ़ते हुए अगला गाना आपके लिए लगाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं जी कि अगर आप सोच रहे हैं अपने करियर को लेवल अप करने के लिए यानी कि टेक्नोलॉजी में, टेक में, तो फिर टेक सन सॉफ्ट इंक इज हायरिंग। मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स हैं उनके पास जावा इंजीनियर्स के लिए, फ्रिस्को टेक्सस में लोकेटेड हैं, फुल टाइम रोल्स ऑफर कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप ऑथराइज हैं US में काम करने के लिए एंड यू आर लुकिंग टू वर्क ऑन एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, देन टेक सन सॉफ्ट इज द प्लेस फॉर यू। सेंड योर रेज्यूमे at email them at gautam@techsunsoft.com, which is gautam@techsunsoft.com, or you can also send your resume through mail at this mailing address, 12800 Westridge Boulevard, Suite 229, Frisco mein located hain ji ye। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को जो आपके लिए आई है कहां से, टेक सन सॉफ्ट इंक की तरफ से।

और जी, और अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेटली, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद ऑफ कोर्स योर हेल्थ इश्यूज, देन इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वर्क, लीगैलिटी. आपको ये खुद नहीं करना, बल्कि आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपके लिए ये सारे काम करें, हु इज एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड हु कैन गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. ना सिर्फ वो आपका केस फाइट करेंगे एंड हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन, बट द बेस्ट पार्ट इज कि जब तक आप जीत नहीं जाते केस, आपको कुछ पे नहीं करना. सो दिस इज एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर यू. आइदर यू गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट और समवन यू नो और यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, उनको उमर ख्वाजा का नंबर दीजिए ताकि फ्री कंसल्टेशन के लिए आप वो कॉल प्लेस कर सकें. दैट नंबर इज 4693005046. 4693005046 उनका नंबर.

this is an absolute win-win situation for you. Either you're going through something like that, or someone you know or you care for is going through something like that. Unko Umar Khwaja ka number dijiye taki free consultation ke liye aap wo call place kar sakein. That number is 469-300-5046. 469-300-5046. उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज attorneyomar.com. दैट इज OMAR, attorneyomar.com. अच्छा जी, कल जो है, बल्कि मैं आपके यहाँ शो ही कर रही थी अपना सुनहरी किरण, आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, तो एकदम से एक खबर मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें लिखा था कि रूना लैला जी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, उनकी डेथ हो गई. And I was like, absolutely, I've been a huge fan of Rooha Leela. And I'll play her song for you. And you'll definitely enjoy that song. So, I also researched it. Because nowadays, the news are like this. And I don't even know if it's true or not. So, I researched it on the internet. What happened to Rooha Leela? Or whatever. So, I realized that someone had a fake news. And when these news were public, और रूना लैला जी का अपना कहना था कि भाई मुझे कॉल्स आने लगे, तो फिर उन्होंने रिफ्यूट किया. कुछ खबर आपको तफसील इसकी ये बताती हूँ कि लेजेंडरी जो हमारी बांग्लादेशी सिंगर हैं रूना लैला, उन्होंने डिसमिस कर दी रूमर्स सराउंडिंग हर डेथ, कॉलिंग देम स्ट्रेंज मिस इन्फॉर्मेशन आफ्टर फॉल्स रिपोर्ट स्प्रेड वाइडली अक्रॉस सोशल मीडिया. रूना लैला जो कि इस वक्त करंटली इंडिया में है, वो अटेंड कर रही हैं एक सेरेमनी जहाँ पे उन्हें मीनारे दिल्ली अवार्ड मिल रहा है. तो सून आफ्टर द प्रोग्राम वॉज कंक्लूडेड ऑन मंडे इवनिंग, rumors claiming that the singer had began that the singer had died began circulating. So sab logon mein jo unke fans hain wo khalbali mach gayi ki kya ho raha hai. To is incident ke bare mein baat karte hue Rooha Leela ne ye kaha ki mujhe calls aane lage, people from Bangladesh, United States, England, India, Pakistan, aur har jagah se mujhe calls aane lage ki main theek hu, ye kis tarah ki khabar hai, and it was truly shocking for me. So the happiest part is that she has denied all the rumors. She is healthy, she is happy, she is fine. She just received her Minare Dilli award and she is absolutely doing well, and she has negated all these rumors surrounding her demise. तो ये हुई अच्छी खबर आपके लिए. और अब जब रूना लैला की बात हो रही है, तो मैं उनका ये गाना, एक दम मस्त कलंदर हम सब ने कई बार सुना हुआ है, लेकिन जब रूना लैला जी ने इसे गाया तो एक अलग ही एनर्जी लेके आई इसमें. दिस इज द मस्त कलंदर इन रूना लैला's voice.

0: जी हाँ, रूना लैला की आवाज में ये डिफरेंट ट्विस्ट था एक दमादम मस्त कलंदर का। ऐसा गाना है जिसे बहुत सारे लोगों ने गाया और हर बार जब भी गाया गया खूबसूरत ही गाया गया। अच्छा जी, हम बढ़ रहे हैं अराउंड एक मिनट में ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाते हुए आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक देसी मंडी को ट्राई आउट नहीं किया, जो कि लुइसविल में लोकेटेड है, तो आप डेफिनेटली जाइए, ट्राई आउट कीजिए। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर्स इन टाउन और ब्रिलियंट ऑफर्स हैं उनके पास सारी ग्रोसरीज पे। सबसे पहले तो उनका जो पूजा का सेक्शन है वो बहुत अमेजिंग है। बहुत सारी आपको तमाम आपकी पूजा की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो देसी मंडी पे मिल जाएंगी। इसके साथ ग्रोसरी, चाहे आपने सब्जी खरीदनी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने हो, चाहे आपने दाल चावल जो हमारे डेली के रिक्वायरमेंट्स होते हैं देसी ग्रोसरी के, सब कुछ वहाँ पे शानदार और बेहतरीन मिलता है। सो ज़रूर चेकआउट कीजिए आप देसी मंडी। दे आर लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास और साथ ही साथ उनका रेस्टोरेंट भी है जो आपके लिए ब्रिलियंट खाना देता है। जब थक जाएं शॉपिंग से तो रेस्टोरेंट में चले जाएं। और आजकल डील चल रही है उनकी बोगो की, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। वीकडेज में 5 बजे शाम से 9 बजे तक आपके लिए ये बाय वन गेट वन डील है। मंडे या वेंसडे को आपको मिलेगा बाय वन गेट वन ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, जबकि ट्यूजडे और थर्सडे को मिलेगा आपको बाय वन गेट वन ऑन डोसास एंड चाट्स। सो बिल्कुल मिस मत कीजिए इस डील को। आज जाएंगे यानी कि वेंसडे को, तो खाइए बिरयानी, नूडल एंड फ्राइड राइस, बाय वन गेट वन फ्री। दिस इज देसी मंडी इन लुइसविल।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा।
3: कौन सा?
2: कैरेट लेन।
3: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
2: हाँ वही।
3: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली।
2: देखा, ढूंढ के दिया ना।
4: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को, लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे। कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट।
5: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
6: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now, serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
15: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
14: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
16: फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
17: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
18: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

कैफी खलील की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना, मरने से भी बदतर है एहसास का मर जाना। वैसे बात तो सच है, वो जैसे परवीन चाकर जी कहती है ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये खूबसूरत गाना खलील, कैफी खलील के बारे में आपको कुछ बताती चलूं जी। और वो ये कि बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तानी सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोज़र हैं, जिन्होंने ग्लोबल रिकग्निशन पाई अपने ख़ास तौर पे कहानी सुनो ज़बानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था की वजह से। बॉर्न एंड रेज्ड इन लियारी कराची, ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बलोच म्यूजिशंस, और आफ्टर ईयर्स ऑफ अपलोडिंग म्यूजिक टू यूट्यूब ही ब्रोक इनटू द मेन स्ट्रीम इन 2022 विद कोक स्टूडियोज सॉन्ग जो कि था कन्ना यारी। और कन्ना यारी के बाद उन्होंने अपना ये गाना रिलीज किया कहानी सुनो, एंड देन देर वॉज नो लुकिंग बैक। दैट वॉज कैफी खलील फॉर यू। और मेरे पास इस तरह के और भी बहुत सारे गाने आपके लिए lined up here. This is Pop Frequency. You're tuned into your afternoon drive time with Suneri Kiran. Main hu Kiran aapke saath. This one is Vital Signs, Junaid Jamshed.

0: All right, जी, that was vital signs for you, Junaid Jamshed की आवाज और सांवली सलोनी. Nobody can forget this song. इसके बाद जो है मुझे याद है कि जुनैद जमशेद से किसी ने कहा या वाइटल साइंस को कहा कि भाई सांवली सलोनी क्यों कुछ और भी करें, तो फिर जुनैद जमशेद ने गोरे रंग का जमाना गाना रिलीज किया था. सो एक छोटी सी किस्सा सांवली सलोनी मेरी महबूबा का वैसे आपको सुना रही थी. और अब वक्त आ चला है जी आपके साथ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में आने का. जी हाँ, दिस इज Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Fun Pizza Kitchen. और सबसे पहले तो ये कि अगर आपको देसी पिज्जा खाने का मन है, मतलब पिज्जा खाने का मन तो होता है लेकिन दिल करता है कि कुछ देसी ट्विस्ट हो जाए उसके अंदर, तो Fun Pizza Kitchen से बेहतर जगह नहीं है. Either you are a veg lover or a non-veg lover, हर तरह के पैलेट को केटर करता है Fun Pizza Kitchen. Log on to their website funpizzakitchen.com to check out their menu, their locations as well as what they are offering you. और अब ये जो conversation corner आपके लिए आया है, ये मौका होता है मेरा और आपका, हर रोज आपके लिए लेकर आती हूँ एक conversation corner जहाँ हम बात करते हैं, discuss करते हैं किसी चीज़. देखिए आज हम पॉप फ्रीक्वेंसी में है, कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक आपके लिए प्ले कर रही हूँ. तो जो है अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए ड्रामों का सेशन शुरू होगा, तो ड्रामों से के पेज जाने से पहले थोड़ी सी ड्रामों की बात कर लेते हैं. आप सभी लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, फैंस हैं पाकिस्तानी ड्रामा के, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी एबल टू कवर दोज टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामास एवरी वीक फॉर यू राइट हियर. तो मुझे बताइए कि आजकल आप जो है वो कौन सा ड्रामा देख रहे हैं जो आपकी लिस्ट पे नंबर वन है, मतलब जो भी आप फर्स्ट कीजिए, आप चार ड्रामे देख रहे हैं तो टॉप पे आजकल कौन सा ड्रामा आप देख रहे हैं. नॉट दैट कि फॉर एवर नहीं, जैसे पहले आपने देख लिए वो नहीं, आजकल के करंट ड्रामों में कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है जो आप देख रहे हैं. 9722355555 पे मुझे कॉल कीजिए. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद Sunehri Kiran, ब्रॉट टू यू बाय Fun Pizza Kitchen. और हम आज बात करेंगे कि आजकल का कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जो आप देख रहे हैं और आपको बड़ा मजा आ रहा है, जैसे कि सारा आप ही देख रहे हैं या कफील. तो कफील तो खैर अब खत्म हो गया लेकिन अभी भी एपिसोड अभी उनकी लास्ट आई थी. सो क्या देख रहे हैं, फोन करके बताइए. 9722355555.
1: हाय, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: जी बिल्कुल बताइए.
1: मैं दो तीन चार ड्रामे देख रही हूँ आजकल, लेकिन मुझे सबसे अच्छा गुलाम सुंदरी मुस्तफा, गुलाम बादशाह सुंदरी लगता है.
0: अच्छा,
1: वो शौक से देखती हूँ.
0: अच्छा, मुझे बताइए सईदा जी, गुलाम बादशाह, क्योंकि आपको तमाम फन एशिया के लिसनर्स सुन रहे हैं, व्हाई आर यू लाइकिंग गुलाम बादशाह एंड सुंदरी?
1: बस उसकी मुझे अच्छी लग रही है स्टोरी, बहुत ज्यादा
0: और आपको
1: अच्छी स्टोरी लग रही है, ट्विस्ट है उसके अंदर काफी.
0: जी जी,
1: और जी
0: ठीक है जी, बिल्कुल सही है.
1: वो बहुत कम लोग ये देखते हैं ये ड्रामे, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है.
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही, और मुझे ये मालूम है कि ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आ रहा है गुलाम बादशाह सुंदरी, और इस हफ्ते के टॉप 10 ड्रामास में भी इसको इंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे. बट
1: अच्छा, जी, ये जी, तो जी. मुझे पता नहीं था लेकिन और भी दूसरे अभी ये देख रही हूँ मैं, रंग दे देख रही हूँ.
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा,
1: रंग दे देख रही हूँ.
0: और बताइए और क्या देख रही
1: हूँ? सिर्फ शबाना.
0: अच्छा, सिर्फ
1: शबाना और डॉक्टर बहू.
0: ठीक है,
1: और अभी वो नए शुरू हुए हैं, वो अभी देखना शुरू कर रहे हैं मैंने, शदाई वगैरह ये सब.
0: जी,
1: शदाई और हमराही.
0: आप सारे ड्रामे देख रही हैं, वेरी नाइस.
1: नहीं, थोड़े थोड़े करके वो सामने आ जाते हैं ना, तो वो उसके एड आ रहे हैं, तो अभी कुछ कुछ को पीछे छोड़ा हुआ है कि बाद में देखेंगे, तो अभी जो सामने आ जाते हैं जो मेरे पसंद के वो पहले देखती हूं.
0: बिल्कुल सही जी, थैंक यू सईदा जी, सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. Alright, जी, this is Conversation Corner with Sunehri Kiran, brought to you by Fun Pizza Kitchen. पूछ रही हूँ आपसे, आजकल आपका मनपसंद ड्रामा कौन सा है जो आप देख रहे हैं? Fun Asia Radio, you live on air. अपना नाम बताइए.
2: हेलो, सबा बात.
0: जी सबा, आजकल आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा चल रहा है?
2: अभी जो खत्म हुए वो तो सरपसंद था, एंड अभी कफी और एक रहमत आ रहा है, रहमत बेटियों के ऊपर.
0: जी बिल्कुल आ रहा है रहमत, और ये कौन से चैनल पे आ रहा है?
2: चैनल तो मुझे याद नहीं, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ.
0: ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा, रहमत की जरा थोड़ा सा टच बेस करें सबा, क्या कहानी है रहमत की?
2: एक्चुअली उनकी बेटियां हैं, तो बेटियों के मतलब बेटियों के सराउंड सारा घूमता है, मतलब क्या उनकी डिफिकल्टीज है, क्या उनका है, तो उसके मतलब सारा बेटियों से रिलेटेड है.
0: अच्छा ठीक,
2: तो
0: है,
2: जैसे हमारे रहमत उनको कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड है,
0: बेटियां रहमत होती हैं, तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया.
2: जी जी जी,
0: ऑल राइट.
2: फिर भी बहुत अच्छा था, तो अब कफील भी एंडिंग पे.
0: कफील तो एंड हो चुका, मेरे ख्याल 29 अप्रैल को उसकी लास्ट एपिसोड आई थी.
2: अच्छा, मैंने अभी लास्ट देखी नहीं है.
0: अच्छा ठीक है जी, ओके सबा, थैंक यू सो मच, सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस। ऑलराइट जी, अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि मैं जानती हूँ सभी लोग पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, पसंद को कोई चीज़, जैसे हम सब बॉलीवुड मूवीज देखते हैं वैसे ही पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, तो अगर आपका कोई पाकिस्तानी ड्रामा है जो आप मेंशन करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, मैं एक ड्रामे का ज़रूर बताऊंगी, और वो है जी अभी सज्जल अली, क्योंकि सज्जल अली मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए सज्जल अली के हर नई चीज़ पर मेरी नज़र होती है कि कब आ रहा है सज्जल अली का नया ड्रामा। इसी तरह आहद रज़ा मीर मुझे बहुत पसंद है, उनकी हर नए ड्रामे पे मेरी नज़र होती है। तो सज्जल अली का नया ड्रामा जंजीरें रिलीज़ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि इट इज़ टाइम नाउ टू वॉच दैट। एनीवेज, ये था आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, आप कॉल कर सकते हैं अभी, 2-3 मिनट में और कॉल्स ले रही हूँ, 972-235-5555।

ऑलराइट जी, सईदा जी, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकूं. यू आर द लकी विनर ऑफ टुडेज कॉन्टेस्ट, जो कि बल्कि एक्चुअली कॉन्वर्सेशन कॉर्नर जो आया था आपके लिए फन पिज्जा किचन की तरफ से. आपको जाना होगा फन पिज्जा किचन के फ्रिस्को लोकेशन पे टू कलेक्ट योर $10 गिफ्ट कार्ड एंड अवेल इट. सईदा जी, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे कॉल कीजिए. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: All right, that was Coke Studio Season 10, Katrina Kattay, जो कि आयमा बेग, हुमैरा अर्शद और रेचल विचर जी की आवाज में था. जो मेन आवाज थी वो हुमैरा अर्शद की थी, जो आप सुन रहे थे. अच्छा जी, हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी द टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक. डेट के साथ हम सारी बात करेंगे और उनकी TRPs भी आपके साथ शेयर करूंगी. बने रहिए मेरे साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. पॉप फ्रीक्वेंसी का ये एक घंटा हमने साथ स्पेंड किया. अनदर हाफ एन आवर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ लास्ट वीक. तो और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि मैं 5 बजे तक आपके साथ आज मौजूद हूँ. सो स्टे ट्यून्ड.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
4: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care. Precision diagnostic and top-tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
5: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
6: द फ्लेवर लाउंज, वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
5: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
6: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को, एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स, फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
9: चिकन बनाना,
10: चिकन बनाना
11: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
12: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
14: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
15: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

जी हाँ जी, ड्रामा सीरियल लीडर का ये ऑफिशियल साउंडट्रैक आप सुन रहे थे, और जो हमारे टॉप 10 चार्ट्स हैं इस हफ्ते के, उसमें ड्रामा सीरियल लीडर जो है वो 9th नंबर पे मौजूद है. इट इज टाइम नाउ टू टेल यू द टॉप 10 ड्रामास फ्रॉम 27th अप्रैल टू 3rd मई. जी हाँ, यही चलता है मंडे से लेकर संडे तक की पूरी जो वीक का चार्ट्स निकलते हैं. तो जो आपको मैं बता रही हूँ, दैट इज 50% व्यूअर्स पॉइंट्स एंड 50% TRP पॉइंट्स, और उसके हिसाब से जो बेस्ट ड्रामे इस हफ्ते रहे और लोगों ने जिनको देखना पसंद किया उनकी रेटिंग्स. तो नंबर 10 पे रहा जी रहमत ड्रामा 3 पॉइंट्स के साथ, यानी कि 4.3 TRPs एंड एक्चुअली 4.3 नहीं, उसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली टोटल जो उसके पॉइंट्स थे वो थे 3. तो 3 के साथ नंबर 10 पे रहा रहमत. रहमत के बारे में आपको बताते हैं, इट इज अ कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि March 30th से एयर होना शुरू हुआ है, और अभी कुछ मेरे ख्याल 10-15 एपिसोड्स इसकी आ चुकी हैं. जुनैद खान और हिना तारिक इस ड्रामे में हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक्चुअली मेरा ख्याल था 15-20 हैं, लेकिन 30-35 एपिसोड्स इसकी रिलीज हो चुकी हैं. ARY डिजिटल पे आपके लिए प्ले कर रहा है. द नंबर 9th पोजीशन पे जो ड्रामा इस वक्त स्टैंड कर रहा है उसका ये ऑफिशियल साउंडट्रैक आप सुन रहे थे. द ड्रामा सीरियल इज लीडर, जी हाँ, 4.3 TRPs एंड 2.1 व्यूअरशिप के साथ टोटल पॉइंट्स लिए इसने 3.2. और ये ड्रामा है जी हम टीवी पे आ रहा है. किंजा हाशमी और अली रजा इस ड्रामे में हमें नजर आ रहे हैं. इट सेंटर्स ऑन रोमांस, सोशल इश्यूज एज वेल एज यूथ एम्पावरमेंट. अली रजा जो हैं वो एक हॉट हेडेड रेवोल्यूशनरी का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि किंजा हाशमी जो हैं वो एक फ्यूडल लॉर्ड की बेटी का रोल अदा कर रही हैं. और क्या होगा अब जब फ्यूडल लॉर्ड की बेटी और एक सरफिरा नौजवान आपस में टकराएंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ लीडर. 8वें नंबर पे जो ड्रामा स्टैंड कर रहा है वो है जी सारा आपी, जो कि 2026 का जियो एंटरटेनमेंट पे ड्रामा आ रहा है. स्टोरी ऑफ अ वुमन हु हैज स्पेंट हर यूथ टेकिंग केयर ऑफ हर ब्रदर्स, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. नाउ दैट द ब्रदर्स हैव ग्रोन अप, तो आगे क्या हो रहा है और किस तरह से घर की डायनामिक्स चेंज हो रही है क्योंकि वो बड़े हो गए हैं एंड दे आर गेटिंग मैरिड और वट एवर थिंग्स जो उनके साथ हो रही हैं. सो ये है जी 8वें नंबर पे एक्चुअली सारा आपी. 7वें नंबर पे जो ड्रामा है वो है मिर्जा की हीर, जो कि एक इंटेंस ग्रैंड रोमांटिक ड्रामा कंसिडर किया जा रहा है. ARY डिजिटल पे आ रहा है. अली रजा और हिना आफरीदी इसमें हमें नजर आ रहे हैं. अली रजा वैसे जिस ड्रामे में होते हैं वो रोमांटिकली ग्रैंड तो हो ही जाता है, बिकॉज ही रियली परफॉर्म्स वेरी वेल एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोमांटिक हीरोज ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा दीज डेज इज अली रजा. और इसी के साथ जो 6ठे नंबर पे जो ड्रामा आया है इस हफ्ते वो है जी हमारी फेवरेट बहुत ही प्यारी सज्जल अली का नया ड्रामा शुरू हुआ है. सज्जल अली के साथ एहसन खान, अमीर गिलानी, सहर हाशमी, दानियाल जफर जो कि अली जफर के भाई हैं, मोमल शेख हमें अदनान सिद्दीकी, मतलब स्टडेड स्टार कास्ट है इस ड्रामे की. और आजकल आपकी सोशल मीडिया पे एक रील बड़ी वायरल हो रही होगी जिसमें सज्जल अली जो है वो एक रेस्टोरेंट की मतलब वो जो ऑर्डर ले रही हैं रेस्टोरेंट में और कुछ लड़के खड़े होकर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो ड्रामा जो है वही ये ड्रामा है. नाम है इसका जंजीरें, जो कि 29th अप्रैल से एयर होना शुरू हुआ है. फोकसिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इमोशंस एंड द सोसाइटल प्रेशर्स जो कि होंगे देखने को मिलते हैं लोगों को. तो ये है आपके लिए टॉप 6 ड्रामा, नीचे से लेके 10, 9, 8, 7, 6. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी द रेस्ट ऑफ द ड्रामास. अब जब जंजीरें नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस लिस्ट में हमारी, तो जंजीरें का ऑफिशियल साउंडट्रैक सुनते हैं. दिस इज सज्जल अलीज जंजीरें.

ऑलराइट जी, नंबर छह पे था जंजीरें. और इस हफ्ते यानी कि द वीक ऑफ 27 अप्रैल टिल 3 मई आपको बता रही हूँ द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन टीआरपीज एज वेल एज व्यूअरशिप. और पांचवें नंबर पे रहा गुलाम, बादशाह और सुंदरी. जी हाँ, ये है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आ रहा है ड्रामा. इमरान अशरफ जावियार नुमान एजाज और हिना आफरीदी हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. स्टोरी है पावर, लव, कॉन्फ्लिक्ट और सेंटर कर रही है एक लव ट्राइंगल पे जहाँ गुलाम हैं जी और बादशाह हैं. गुलाम बने हैं इमरान अशरफ, बादशाह बने हैं ये हमारे नुमान एजाज के बेटे जावियार, और जो हमारी सुंदरी हैं वो हैं हिना आफरीदी. बहुत पसंद किया जा रहा है ये ड्रामा, सो होपफुली वी आर सीइंग इट क्लाइंबिंग द चार्ट स्टेडिली. लेकिन बढ़ रहा है जी, चार्ट क्लाइंब कर रहा है. चौथे नंबर पे जो ड्रामा रहा इस हफ्ते वो था डॉक्टर बहू. एक बार फिर उसने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है. ये ARY डिजिटल पे ड्रामा आ रहा है. एक डेडिकेटेड डॉक्टर की स्ट्रगल है. कुबरा खान वो रोल प्ले कर रही हैं सानिया का, जो कि शी गेट्स मैरिड इनटू अ स्ट्रिक्ट पेट्रियाट्रिकल फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. और यहाँ उनको क्या प्रेशर्स फेस करने को मिलते हैं जहाँ डोमेस्टिक लाइफ को प्रायोरिटी देने के लिए उनसे करियर को छोड़ देने को कहा जाता है. हालांकि ये सारी खानदानी डॉक्टर हैं सारे, तो मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है जो डॉक्टर बहू में दिखाई जा रही है. एंड इट इज़ अ वेरी ट्रू कहानी, जो कि बहू चाहिए डॉक्टर लेकिन फिर उसको काम नहीं करने देना, उसको घर बिठा के रोटियां पकवानी है. तो ये है कहानी डॉक्टर बहू की. और इसके साथ तीसरे नंबर पे जो ड्रामा आया है वो है जी हमराही. TRPs और व्यूअरशिप के हिसाब से हमराही इज सिक्योरिंग 3rd पोजीशन दिस वीक. और हमराही जो कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का एक इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी है ये, और अराउंड 10 से ज़्यादा एपिसोड्स अब तक आ चुकी हैं. बाबर जावेद ने इसको डायरेक्ट किया है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है बिकॉज दानिश तैमूर की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है. और दानिश तैमूर के जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो उनके ड्रामों का ना सिर्फ इंतज़ार करते हैं बल्कि बड़े शौक से उनके ड्रामों को देखते भी हैं. तो थोड़ा सा ये ऑफिशियल साउंड ट्रैक हमराही का प्ले करते हैं और फिर आके आपको बताती हूँ द टॉप 2 ड्रामास ऑफ लास्ट वीक.

जी हाँ, तू ही दर्द, दर्द की वजह भी तू। हमराही का ये ऑफिशियल साउंड ट्रैक आप सुन रहे थे। और इट इज टाइम नाउ टू टेल यू द टॉप टू ड्रामाज ऑफ दिस वीक, यानी कि वीक ऑफ 27 अप्रैल टिल 3 मे, बेस्ड ऑन TRPs एज वेल एज व्यूअरशिप पॉइंट्स। और सेकंड नंबर पे रहा जी ड्रामा सीरियल शैदाई, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे आ रहा है। फिरोज खान और सहर हाशमी, फिरोज खान प्ले कर रहे हैं अली खान का किरदार और सहर हाशमी मीरल का किरदार प्ले कर रही हैं। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ये ड्रामा लेके आया है आपके लिए। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अली खान, जो कि एक रिलेंटलेस ड्रिवन आदमी हैं, और मीरल, जो कि एक शार्प टंग सेल्फ मेड गर्ल हैं। और जब इस तरह के ऑपोजिट्स टकराते हैं तो फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लव स्टोरी शेप में आती है। और जैसे कि दानिश तैमूर की अपनी फैन फॉलोइंग है और अपने उनके लोग ड्रामे का इंतजार करते हैं, वैसे ही फिरोज खान की एक अपनी फैन फॉलोइंग है और फिरोज खान के जो फैंस हैं वो उनके ड्रामे का बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि फिरोज खान एक टाइप कास्ट होते हैं, क्योंकि एक ही तरह का, जैसे दानिश एक ही तरह का रोल करते हैं, वैसे फिरोज खान भी एक ही तरह का रोल करते हैं। लेकिन भाई जो दिखता है वही दिखता है, तो जो पसंद है सबको वही रोल्स वो करते हैं। और नंबर वन पे कौन सा ड्रामा रहा जी? जी हाँ, ड्रामा रहा कफील एक बार फिर, क्योंकि हम 27 अप्रैल से हमारा ये वीक शुरू हुआ और 28 अप्रैल को कफील ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड आई। और इस एपिसोड से एक बार फिर, चूंकि ऑब्वियसली सारी नेशन ने, सारी दुनिया ने उस ड्रामे को इतना पसंद किया जहां जहां डायस्पोरा है, तो कफील का लास्ट एपिसोड ने टॉप रैंक पे बिठा दिया कफील ड्रामे को। बट नाउ दैट द ड्रामा हैज ऑफिशियली एंडेड, फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम श्योर लिस्ट से ये ड्रामा निकल जाएगा। सनम सईद और इमाद इरफानी के ऊपर पिक्चराइज्ड दिस ड्रामा हैज गार्नर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेजेस। अच्छा, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट हुआ है खत्म। आई एम यू नो वी आर लॉगिंग ऑफ फ्रॉम पॉप फ्रीक्वेंसी। 4 बजे के बाद से 5 बजे तक लेके आऊंगी आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक, ड्रामा सीरियल शैदाई, जो कि सेकंड नंबर पे रहा, उसके ऑफिशियल साउंड ट्रैक के साथ। लेट्स एंड द सेगमेंट।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
8: ओह हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
16: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 4693627755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
17: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
18: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
19: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
18: के टू ड्राइव मतलब
19: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
18: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
19: 100%
20: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0400 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह answers ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। Connect with Anita Chundru at the Colony, Texas. Chat reading, Vedic astrology, numerology और Havan services से मिले सही guidance. Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
17: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
14: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

जी हाँ, और इसी के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त गिव अवे. और गिव अवे क्या है जी, अगर आप सॉकर के लवर हैं, यानी कि यू लव टू प्ले सॉकर, देन देयर इज समथिंग एक्साइटिंग जस्ट फॉर यू. या आप खेलते हैं, या आप पसंद करते हैं, गेम्स देखना पसंद करते हैं, मिकिनी चुपाकैब्रास FC इज किकिंग ऑफ देयर होम ओपनर दिस May 16th. जी, और गेस वॉट, Page 3 ईटरी अलॉन्ग विथ फन एशिया रेडियो इज गिविंग यू अ चांस टू बी देयर लाइव टू सी दिस किक ऑफ गेम ओपनिंग ऑन May 16th. एंड हम दे रहे हैं 2 फ्री टिकट्स टू लकी विनर्स, लकी लिसनर्स जो आप हैं, जो कॉल करेंगे तो फिर विनर बन जाएंगे. सो यू एंड योर प्लस वन कैन एंजॉय एन एक्शन पैक्ड गेम राइट हेयर इन DFW. यानी कि आप अगर जीत लिए ये गिव अवे, तो आपके लिए 2 टिकट्स हैं, ताकि आप और आप अपने जो है एक फ्रेंड को या प्लस वन को ले आइए साथ. तो बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है एक बड़ा जबरदस्त गिव अवे. और Page 3 ईटरी और फन एशिया आपके लिए ला रहे हैं. वैसे फन एशिया ऑलवेज प्रॉमिसेस टू ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर, बट दिस टाइम वी आर ब्रिंगिंग द गेम क्लोजर टू यू. सवाल आपसे क्या है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करने वाली हूँ, कि BCCI जो है बैक देन इन 1983, सो इट वॉज सो कैश पुअर आफ्टर द 1983 वर्ल्ड कप विन, कि उन्होंने एक लेजेंडरी सिंगर से रिक्वेस्ट की कि वो फ्री परफॉर्म करें प्लेयर के लिए. और आपको बताना है कि वो कौन सी लेजेंडरी सिंगर हैं जिन्होंने BCCI की रिक्वेस्ट को माना और प्लेयर्स के लिए फ्री परफॉर्म किया. हिंट देती हूँ आपको, और हिंट है जी The Nightingale of India, of course. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. कॉल कीजिए, मुझे बताइए और जीत लीजिए ये मौका टू गेट अ टिकट फॉर योरसेल्फ एंड अ प्लस वन फॉर यू.

राइट जी, वैसे तो मैंने ये गाना भी उन्हीं की आवाज़ में चला दिया था, हिंट पे हिंट पे हिंट आपको दे रही थी, और वैसे हिंटों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते ही सबको पता ही लग गया जवाब क्या है. दिस वॉज द लेजेंडरी, द ऑसम, द आउटस्टैंडिंग लता मंगेशकर जी, जिन्होंने BCCI ने जिनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक कॉन्सर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज परफॉर्म किया. उस कॉन्सर्ट के बेचने से जो पैसे आए या जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उससे द 14 स्क्वाड मेंबर्स रिसीव्ड 1 लाख रुपीज ईच, और द 1983 विन ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन क्रिकेट कमर्शियली. तो जी, फ्रॉम लता जीज फंड रेजर टू $1 बिलियन IPL, व्हाट अ जर्नी वी मस्ट से दिस हैज बिन फॉर द इंडियन क्रिकेट. और जो है, मुझे अभी एक और कॉल आई और वो ये भी बता रहे थे कि इस कॉन्सर्ट के बाद लता मंगेशकर जी को BCCI की तरफ से फॉर लाइफ 2 टिकट्स, हर गेम के लिए उनको 2 टिकट्स मिलते थे, जो मुझे लिसनर ने बताया कि जाए ना जाए वो उनकी मर्जी, लेकिन उनके लिए 2 टिकट्स हमेशा उनको मिलते थे, रिजर्व रहते थे. व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर फ्रॉम बोथ ऑफ देम फॉर ईच अदर. और आज के जो हमारे लकी विनर हैं, एक तो आप सबकी फ़ोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, संजीव कुमार, बिंदु, अपेक्षित, कृति, इकबाल साहब, संदीप, मनीष, एवरीबडी हु कॉल्ड एंड गेव मी द राइट आंसर. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं संजीव मुधालियर. संजीव, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे दैट वाज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा, बाय फन एशिया एज वेल एज Page 3 Eatery. दिस वॉज आर वे ऑफ ब्रिंगिंग दिस गेम क्लोजर टू यू, जो कि हो रहा है आपके लिए May 16th को. सो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अबाउट हमें 2 से 3 दिन दीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए, एंड देन somebody विल गेट इन टच विद यू दैट हाउ यू कैन अवेल दीज टिकट्स. एंड ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया. फनीशिया इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.

0: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
1: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
0: रोज का सेम प्रॉब्लम।
2: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। Lumity लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। Lumity का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
3: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
2: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
4: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
8: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
7: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
9: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूज किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
12: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
15: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
16: सब कुछ साफ रख सकते हो
17: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
18: क्योंकि ये कौन बोला?
17: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
19: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
1: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। एजीबी, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
16: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ और लेके आई हूँ आपके लिए कुछ जबरदस्त गाने. Something or the other is happening right here every day. 2:30 बजे से 5 बजे तक हम different flavors लेके आती हूँ आपके लिए. अभी हम 2:30 से 4 तक Wednesdays को करते हैं जी pop frequency, top 10 trending dramas of Pakistan as well as trophy tracks जो अब हम कर रहे हैं. कुछ award winning गाने, award winning फिल्मों के आपके लिए play कर रही हूँ और अब कुछ ब्लॉकबस्टर बीट्स लेके आई हूँ आपके लिए. सो मच हैपनिंग. और ये टाइम होता है वेंसडेज को जब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ हुसैन पंजवानी जी के साथ फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज, डिवीजन ऑफ ब्राजर्स नेशनल बैंक. आज हमारे साथ हुसैन जी मौजूद नहीं है बिकॉज ही इज बिजी समवेयर एल्स, लेकिन मैं आपको जरूर बताती चलूँ कि आपका कोई भी नीड है मॉर्गेज की, जैसे कि यू नो दे आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग यू द लोएस्ट रेट इन रियल एस्टेट अवेलेबल इन योर एरिया. चाहे आप पहली बार घर खरीदना चाहते हो या आप कंसोलिडेट करना चाहते हो अपनी डेट को, या फिर आप रीफाइनेंसिंग के लिए यू नो अप्रोच कर रहे हो किसी को, या फिर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हो, जो भी आपकी फाइनेंसिंग नीड्स हैं, मॉर्गेज नीड्स हैं, उसके लिए ड्रीम होम मॉर्गेज और उनकी प्रोफेशनल टीम इज हेयर एंड दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए बेहतरीन है. और कई सारे प्रोग्राम्स आपके लिए ड्रीम होम मॉर्गेज वाले लेकर आते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अगर आप तो कुछ उनका नो टैक्स रिटर्न पॉलिसी भी चल रही है. बट उसके लिए आपको जी देखिए, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू एग्जैक्टली एवरीथिंग दैट ड्रीम होम मॉर्गेज इज ऑफरिंग यू. हुसैन जी होते तो बहुत डिटेल में आपको बताते, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, मैं आपको वो नंबर दे सकती हूँ और साथ ही साथ वो ईमेल आईडी दे सकती हूँ जिस पे ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप एन ईमेल ऑन दैट ईमेल आईडी, या फिर इस नंबर पे कॉल कीजिए और हुसैन जी की पूरी टीम आपके लिए डेफिनेटली मौजूद है आपको हेल्प करने के लिए. सो नोट डाउन दैट नंबर फर्स्ट. दैट नंबर इज 972-245-5626 पे कॉल कीजिए. या फिर जैसे कि हुसैन जी हमेशा कहते हैं, द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद ड्रीम होम मॉर्गेज इज बाय ड्रॉपिंग देम एन ईमेल. दैट ईमेल आईडी इज info@dreamhomemortgage.com. info@dreamhomemortgage.com. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट dreamhomemortgage.com. सो हमारे साथ अगले वेंसडे को डेफिनेटली हुसैन जी कनेक्टेड होंगे, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द मीन वाइल, वंस अगेन 972-245-5626 इज द नंबर और info@dreamhomemortgage.com इज द ईमेल आईडी.

If you're thinking of preparing your USCIS petition but you don't know where to start, then whether it's an H4 EAD extension ya phir F1 OPT application, or you're thinking of preparing your green card petition for yourself as well as your whole family, aapke liye ek aisa platform ab available hai jahan aap apni ye applications khud prepare kar sakte hain with step by step guidance. And that platform ya website is easypetition.com. और यही नहीं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट योर जॉब इन एन H1 एंड यू वांट टू प्रिपेयर अ चेंज ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन, यू कैन डू दैट एट easypetition.com एज वेल. बहुत ही सिंपल और गाइडेड वेबसाइट है, डिजाइन की गई है इमिग्रेंट्स के लिए ताकि वो अपनी कॉन्फिडेंटली अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकें एज वेल एज अपने कंट्रोल को अपने हाथ में रख सकें. सो दिस इज दैट वेबसाइट, लेट मी स्पेल इट आउट फॉर यू, इट इज EAZY, easypetition.com. And while you are at it, और जब आप चेकआउट करेंगे उस एप्लीकेशन से, तो आप प्रोमो कोड FunAsia यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, FunAsia, FunAsia, एंड यू विल गेट अ $30 क्रेडिट. सो दिस इज easypetition.com फॉर यू फॉर ऑल योर USCIS पेटिशन नीड्स.

और इसी के साथ वक्त आ चला है जब आप मैं आपको देने लगी हूँ वेदर अपडेट जी. आज है वेंसडे मे द 6th 4:48 PM इन द स्टूडियो एंड सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 60 degrees एंड इट फील्स लाइक 60 एज वेल. अबर आलूद सा समा पूरा दिन ही बादल रहे जी. क्लाउड्स विद 30% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स हियर एंड देयर. और दिन का जो टेम्परेचर है वो 60s में रहा. सो इट वाज अ कोल्ड डे टुडे. और शाम जो है वो भी मोस्टली क्लाउडी रहेगी विद लोज इन दी लोअर 50s. इसी के साथ पोलन काउंट आज का 6.4 है विच इज मीडियम. ओक और ग्रास इज वॉट इज बॉदरिंग जिन लोगों को पोलन से रहती है परेशानी. यूवी इंडेक्स आज का 5 है विच इज क्वाइट मॉडरेट. आज का सनराइज हुआ 6:34 AM पे जबकि आज का सनसेट होगा 8:12 8:12 PM. और कल थर्सडे मई 7th को पार्टली सनी रहने वाला है दिन. 74 तक हाइज जाने वाले हैं जबकि 61 विल बी रिकॉर्डेड एज द लो ऑफ द डे. सो इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल डे टुमारो एज वेल. दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

With that, it is time now to give you the currency update. US dollar aaj kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. So, ji, aaj May the 6th, which is Wednesday, 4:52 p.m. according to xrates.com, euro trade kar raha hai 0.85 pe, jabki British pound is trading at 0.73. Indian rupee 94.52 pe stand kar raha hai, jabki Pakistani rupee 278.77 pe stand kar raha hai. नेपाली रुपी इज ट्रेडिंग एट 151.31 जबकि बांग्लादेशी टका 122.93 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट देते चलें जी आपको. goldprice.org के मुताबिक राइट नाउ गोल्ड प्राइस पर आउंस इज $4,691.26 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $150.83. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में आज $4.28 का इजाफा देखने को मिला जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $133 का इजाफा देखने को mila. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Suneri Kiran. Le sariyil njangal ellam danger aanallo chuvappu nirathile sariyil njangal ellam danger.

But that's pretty much all that we have for you as well as traffic is concerned on the roads of Dallas. With that, मैं ले रही हूँ आपसे विदा कल, which is the first Thursday of the month. जी हाँ, आप जानते हैं afternoon drive time with सुनहरी किरण में first Thursday of the month को लेके आती हूँ food junction. कल हम करेंगे एक अनोखे शहर की बात और हर first Thursday of the month आपके लिए food junction में कोई नई city, कोई नई बात लेके आते हैं. Tomorrow will be very, very interesting. I am going to bring you lots of information on what? On a new city. अभी नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी. बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए. Have a lovely rest of your day.

Wonderful track there. This is your host Banda Bindas, Mar Bindas. A little bit of rush today in the traffic. में फंस गया यार, मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों की तरह, और कभी ना कभी मैं ही फंस जाता हूँ. But nonetheless, I'm back. It's 5:16 in the studio clock. 5:16. Wednesday की शाम है जी, मतलब मिड वीक में हम पहुंच चुके हैं. दो दिन का और सबर कीजिए आप, बस वीकेंड आता ही होगा. For now, it is रूप दी रानी, which is of course a new remake of the old track, but this one is sung by Guru Randhawa. Studio का number है आपके पास. Birthdays, anniversaries, खुशी की बात कोई भी है करो यार शेयर. 972-235-5555.

यू नो पेंटिंग और पेंटर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सारे कलाकार दुनिया में होते हैं। एक कलाकार मुझे मिला था, एक हम गए हुए थे गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे वो कलाकार बैठा था, वो फोटोग्राफ बनाता था, मतलब पेंटिंग करता था आपके चेहरे की। तो कहता है भाई साहब मैं आपकी वाइफ की एक फ़ोटो बना दूँ। मैंने कहा यार नहीं ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कैमरा है, फोटोएं अच्छी वहाँ से भी आ रही। नहीं नहीं कहता सर ऐसी फ़ोटो बनाऊंगा तस्वीर बोल उठेगी। तो मैं कहा मामा ये कम बोलती है, तस्वीर ही बुलवाएगा तू।

0: वेलकम बैक। इट्स 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि 5:25 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं जी। आज का दिन है मई की 6th तारीख, वेंसडे है, बुधवार है, और कल मैं जा रहा हूँ फ्लाइंग। कहाँ जा रहा हूँ? पहले मैं जाऊँगा मलेशिया, मैं पहले कभी गया नहीं, और उसके बाद मैं जाऊँगा इंडिया। इंडिया में तो आपको पता है अपा हैंगे जी पंजाब वाले, और जब पंजाब में उतरेंगे तो आवाज आएगी मेरे कानों में, पंजाबी आ गया।
1: पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: बड़े ही खास इंसान से, ओ यार पंडित जी बाद में बात करेंगे, हाँ बड़े ही खास बंदे से ना मैं आपकी बात करवाने वाला हूँ थोड़ी देर में, आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि समथिंग एक्साइटिंग डैलस इज गोइंग टू सी एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी। है ये क्या है? डैलस कुछ एक्साइटिंग देखेगा, आप लोग पैसे बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा। कैसे? बताते हैं। अच्छी चीजों को वक्त लगता है, कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो आप भी थोड़ा सबर करें, बड़ी मीठी चीज लेके आने वाला हूं। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय मलाबार गोल्ड एंड डायमंड, और ये हैं जी वो जिसको अनिल कपूर तो प्रमोट करते ही हैं, साथ साथ एक ऐसी जगह जहां पे आपको ज्वेलरी कलेक्शन मिलेगी इम्पेकेबल, मतलब उनका काम ऐसा है कि खुद ही बोल उठता है, जैसे तस्वीर बुलवाने वाला था वो, ये ज्वेलरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ है। एंड चाहे कोई भी आपका ओकेजन हो, कोई भी आपका फेस्टिवल हो, शादी हो घर में, या जस्ट सेलिब्रेटिंग योर वंडरफुल वाइफ, योर वंडरफुल मदर, या फिर वो, मतलब वो से मेरा मतलब आपकी बीवी की बहन, गलत मत सोचा करो हर बात को, आपकी तरह थोड़ी है सारे। चलो जी आपको लेके चलता हूँ अगले गाने की तरफ, एंड आफ्टर दैट समथिंग वेरी बिग इज कमिंग योर वे। व्हाट इज दैट? थोड़ा सा सबर एंड इट इज गोना बी राइट देयर फॉर यू। फॉर नाउ इट इज तौबा, तौबा कमिंग अप।

0: ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ
1: Get ready!

0: All right, with that, I have a minute before I let Mr. Shoaib Beg go from our studios. But Shoaib, what a wonderful job you're doing. Once again, in simplest of languages, if you were to summarize, what can you do for our listeners in 20 seconds? Go.
1: So because a lot of us already have assets and don't know it, the car sitting in the garage is a sleeping asset. We wake that up. No strangers, no stress, and no second job. South Asian families in this community are already earning with us every month. Some joined before we even advertise on this radio station. And I have to give a real shout out to our partners, who is Hendrick Auto Group, who really helps us acquire these vehicles. They really go to bat for our partners when it comes to financing and stuff like
0: How
1: that.
0: How has Funasia been?
1: Funasia has been amazing, man. I will tell you that literally before the interview even ended, I had 10 calls on the line.
0: KatoDrive.com is the place.
2: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
4: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
5: Main expert lifeline use karna chahunga.
4: Computer ji, SBA loan expert se connect kiya jaye.
6: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स returns needed to apply और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। Results सिर्फ 10 मिनट में।
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
10: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
7: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
11: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं। मेरे से नहीं होगा ये।
12: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
11: मतलब
12: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
7: Visit Fun Pizza Kitchen, FPK at Colony is now open for dine-in.
13: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
14: अरे relax, सब तुम्हारा ही तो है।
13: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
14: Wait, what?
7: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी family के decisions कोर्ट लेता है।
15: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
7: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो
16: ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
17: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
18: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
19: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

वंडरफुल ट्रैक देयर हीरिए नी नशा तेरा करके रेस थ्री सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मतलब सुन के एक एनर्जी आती है, फील होती है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स। डीप मनी और नेहा बसीन ने गाया था जी ये गाना। यू लिस्निंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट्स 5:49 इन द स्टूडियो क्लॉक। 5 बज के हो गए हैं जी कुछ मिनट, और ये जो कुछ मिनट हैं, कुछ पल हैं, ये जिंदगी के छोटे छोटे पल हैं, इन्हीं को इन्जॉय करना हमारा जो काम है, कर्तव्य है, वो यही है भैया। इफ़ वी टेन टू क्या करते हैं हम लोग, हमारे अंदर एक नेचर सी है कि यार कल वो करेंगे, हाँ वो तो कल करेंगे, आज क्या कर रहे हो? जहाँ हो वहाँ खुश हो, जो आसपास हैं उनके साथ खुश हो, जो खा रहे हैं उसका मज़ा आ रहा है, यही चीज़ें इंजॉय करनी है भैया। इस पल को इंजॉय करना है, इस कंपनी को इंजॉय करना है, और जो दिल में आए वो खाना है। हाँ, सेहत का ख्याल रखते हुए खाना है, ये नहीं कि बस तेल पीने का सिस्टम ऑन कर लो, ऐसा भी नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपका बिजनेस है, आपका पैशन है, आपकी स्पोर्ट्स है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर हेल्थ। और अगर यही साथ नहीं देगी तो फिर आप कुछ भी साथ नहीं देगा। यू लिसनिंग टू मी ऑल द वे टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। और अगर आपके मन में कोई गाना आज ऐसा बज रहा है जो आप सुबह से गुनगुना रहे हो, एंड इट्स अ न्यूअर ट्रैक, आई वुड लव टू प्ले इट। पुराना गाना भी लगा सकता हूँ अगर बहुत अच्छा हो। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। अगले 10 मिनट ना मैं आपके साथ एक चीज़ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट आर यू थैंकफुल फॉर? कोई एक चीज़ जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं उस ऊपर वाले के। आई एम थैंकफुल फॉर दिस जॉब, आई एम थैंकफुल कि मुझे ये काम दिया गया है जिसपे मैं अपना दिल जो है अपनी बातें जाहिर कर सकता हूँ। आई कैन टॉक माई हार्ट टू यू एंड यू आर एबल टू डू द सेम विद मी। आई थिंक इससे खूबसूरत क्या होगा यार। हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक, एंड आई एम सीकिंग योर अप्रिसिएशन फॉर व्हाटएवर यू आर थैंकफुल फॉर। गिव मी अ कॉल।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक एंड मेरे पास एक कॉल आया था जी, उनका नाम था गौरव भैया। गौरव भैया कहते हैं आई एम थैंकफुल फॉर माय वाइफ, कहते हैं जी उनकी वजह से मेरी लाइफ जो है थोड़ी सी इजी हो जाती है। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
1: हां जी नमस्ते जी।
0: और नमस्ते मैडम, कैसी हो सिस्टर, सब ठीक ठाक है?
1: बस ठीक ठाक। आज मेरी डॉटर इन लॉ का बर्थडे है।
0: क्या नाम है?
1: शिवानी शिवानी सेठी, पटेल सेठी।
0: शिवानी पटेल तो सेठी करता जी, क्या बात है, पंजाबी आ गए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: गाना जैसा सोना जा लगा दिया
0: जरूर शिवानी नु, वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड मिसेस सेठी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर हियर। गुड इवनिंग फन एशिया, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर? क्या है मन में जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं?
2: आई एम थैंकफुल फॉर द गॉड, बिकॉज़ God gave me everything more than I expected, you know, just, I think, just do good karmas and everything will be...
0: Aapka naam kya hai?
2: Dilip,
0: I agree with you, kyunki aajkal ki duniya mein na hum ye kehne lag pade hain ki yaar, a law of attraction, ask the universe, aray bhaiya universe ko jisne banaya hai, usi se kyun na maang le, hai na? So I think you are perfectly right, everything around us revolves with our creator. Dekho, koi to hai jisne is kainat ko banaya hai, koi to hai jisne itni variety of humans banaye hain, yet we are all one, yet we all like, we are all foodies. हम सबको अच्छी मूवियाँ पसंद हैं, हमें सबको अच्छी एक्टिंग पसंद है, येट वी आर सो डिफरेंट, येट वी आर सो क्लोज एंड सेम, है ना? तो दैट्स ब्यूटी ऑफ द क्रिएटर। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
3: हे हाय, दिस इज अजय।
0: अजय जी कैसे हैं?
3: थैंकफुल, yeah, I'm really good. How are you?
0: I am good, but now that you said you're really good, I think I'm really really good. मेरे मम्मी पापा ऐसा कहते थे। तो अजय भैया, what are you thankful for?
3: So, I'm thankful for your light jokes.
0: Are
3: you? The way you, and I remember one joke, I mean, I don't recall exactly, but yeah, I remember one of the joke, and I, same day, I just said to my my wife, and she was laughing.
0: कौन सा जोक था? कुछ आइडिया है, कुछ याददाश्त का बटन?
3: It was regarding a realtor. Realtor, he went to some community and saying his customer that in this community everyone is happy except one. So he said, okay, why this one only? Why he is not happy? Then he said, he's a doctor. Everyone is in this community is totally fine. Because of that, he is unhappy.
0: सही है, क्योंकि उस मोहल्ले में सारे लोग अच्छे हैं, बट वो डॉक्टर है, और डॉक्टर खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सारे लोग अच्छे हैं, इलाज किसका करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया आपके कॉल का। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग थैंकफुल, एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यार। मतलब मैं तो हर सुबह जब उठता हूँ, इस जगह पे आता हूँ, तो एक शुक्रिया ये बनता है कि थैंक यू ऑलमाइटी फॉर कीपिंग मी सेफ, फॉर गिविंग मी अनदर डे। एंड ये जो दिन है, हम इनको इतनी वैल्यू नहीं देते। हम कहते हैं हाँ यार ठीक है, सुबह हुई, शाम हुई, कई लोगों के लिए नहीं हुई, and that is the truth of life. Aur agar aapko ye subah, aapko ek naya din mila hai, then you can do a lot of things in that day. The only person that stops you is you. This part of the show is brought to you by none other than our very own My Time Equity. They are the ones that can get your financial future taken care of. Agar aap chahte hain ki aapka paisa double ho, triple ho, then you can get with them. And they do alternative investments led by Principal Sudhir Pai. Aapko sirf unki website pe jana hai, which is mytimeequity.com, taking you to a lovely, lovely track. And uske baad thodi hi der mein aana hai, chota sa commercial break. I still have 1 hour of masti coming up, so you are not going to go anywhere. All right?

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
7: के टू ड्राइव मतलब?
8: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
9: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
18: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
19: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601
13: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
19: Amreen Salon.
20: स्टाइल दैट मूव्स विद यू।
17: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
21: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
17: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
21: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
22: May 14th to May 17th, a 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, नाम मार बिंदास बोलो, क्या हाल चाल है DFW, सब ठीक ठाक। 6:06 606 इन द स्टूडियो क्लॉक, इट्स 6 तारीख, तो आज तो 6-6-6 हो गया भैया, 3 छक्के, मतलब सूर्यवंशी तो 4 भी लगा देते हैं, और अपने युवराज 6 छक्के 6 बॉले, बट आज जो बिंदास खेल खेला है वो खेला था जी सनराइज हैदराबाद ने, एंड आई डेंट एक्सपेक्ट कि पंजाब किंग 202 तक पहुंच जाएगा, दैट इज लवली। मैंने जब देखा था तो हालात बहुत टाइट थे, देवर आई थिंक 4 or 5 गॉन अराउंड 50 स्कोर, बट आज का मैच विच वॉज द 49th गेम ऑफ द 74, सनराइज हैदराबाद पहले बैटिंग की उन्होंने, एंड 235 फॉर 4 इन देयर 20 ओवर्स। टॉप स्कोरर्स वर हेनरिक क्लासन 69 of 43, ईशन किशन 55 of 32, एंड ट्रेविस हेड 38 of 19। आज अभिषेक नहीं चल पाए, बट दैट्स ओके, वन डे इज नॉट एवरी डे इज नॉट अ संडे। किंग्स 11 केम टू प्ले कूपर कॉनली, मैन आई वांट टू गिव सल्यूट टू हिम, 107 नॉट आउट इन 59 डिलीवरीज, मार्कस टॉनिस 28 एंड सूर्यवंश शिगड़े 25, दैट टेल्स यू के इन कूपर कॉनली के अलावा किसी का बल्ला आज नहीं चला, बट इफ समबडी स्टूड देयर विद कूपर कॉनली आई थिंक दे वुड हैव बीटन सनराइज हैदराबाद टुडे, बट नॉनदलेस पंजाब किंग्स 11 तीसरा डिफीट इन अ रो है, बट दे आर स्टिल गुड इन द चार्ट्स। अभी अगर मैं आपको स्टैंडिंग्स की बात करूं तो राइट नाउ द स्टैंडिंग्स आर एज सच, सनराइज हैदराबाद इज लीडिंग द चार्ट नाउ विद 14 पॉइंट्स, पंजाब किंग 11 आफ्टर लूजिंग 3 मैचेस इज स्टिल एट 13 पॉइंट्स, उसके बाद आरसीबी है विद 12 एंड राजस्थान रॉयल्स एट 12 एंड जीटी एट 12, सो दीज आर द 6 टीम्स टू 5 टीम्स रादर टू लुक आउट फॉर। मैं लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की तरफ, उसके साथ साथ कुछ और बातें खास होती रहेंगी, बिकॉज दिस इज योर वेरी ओन, आपका अपना बिंदास शो। हमेशा की तरह कहता हूँ, बर्थडेज एनिवर्सरीज आर डेफिनेटली वेलकम ऑन आवर स्टेशन, एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग टुडे या समबडी मेड यू स्माइल, आज किसी ने मुझे बोला मारविन आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, मैंने कहा हाँ अंदर टॉर्च लगवा के आया हूँ, पिछली बारी डेंटिस्ट को मिलने गया था तो मैंने कहा चल यार भाई थोड़ी टॉर्च लगा दे, ग्लो बढ़ा दे। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर आप अपनी बीवी को आंख नहीं दिखा सकते ना, कोई बात नहीं, मकारथर रोड पे शर्मा जी हैं, उनको दोनों जाके दिखा दें।

0: वंडरफुल मूवी धुरंधर इज एक्चुअली धुरंधर भैया कमाल कर चुकी है ये फिल्म ऑन बॉक्स ऑफिस एंड आई थिंक फॉर अ वेरी गुड रीजन यार, मतलब बहुत सालों बाद बहुत डिफरेंट सी फिल्म आई है। ऑल दो मुझे ये लगता है कि जो गाली गलोच है इसमें वो रख के बिना भी फिल्म टॉप नॉच ही होती। आजकल रियलिस्टिक के चक्कर में हम तहजीब को क्यों भूलते जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें अपनी लगाम को टाइट करना पड़ेगा, ये मेरा ओपिनियन है। मैं तो भैया बोलने के लिए आया हूँ, इसी के पैसे मिलते हैं, थोड़ा सा बोल दिया गुस्ताखी माफ करना। फिलहाल अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट करना है, गृह प्रवेश आपके लिए एक शो लेके आ रहा है 9th and 10th of May एंड दिस इज एट द हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को। आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन होगा वहाँ, मैं क्यों बताऊँ, जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज उन्हीं से बात करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर श्रीनिवास वर्मा, हाउ आर यू?
1: गुड इवनिंग, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू।
0: बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ही होना चाहिए, ऊपर वाले ने आपको बड़े बड़े कामों के लिए बनाया है और अब बड़े बड़े काम लेके आप डैलस पहुंच गए हो। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां से लेके कॉन्डोमिनियम्स, अपार्टमेंट्स, फार्मलैंड, ये सब लेके आ रहा है गृह प्रवेश। पहले तो ये बताइए सर हमारे लिसनर्स को, गृह प्रवेश क्या है, व्हाट इज दिस इंडिया एक्सपो ऑल अबाउट?
1: Yeah, India Gruh Pravesh, India Property Expo is all about bringing various builders from across India, from cities like Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Visakhapatnam, Mysore, and many more cities. We are bringing all of them directly under one roof. So here, all these developers will be exhibiting apartments, open plots, commercial spaces, villas, farmlands, and independent houses. This is happening on 9th and 10th from 10 a.m. to 8 p.m. It's a free event, free entry, free parking. It is happening in Hyatt Regency Frisco this weekend. So the idea of this expo is normally if somebody is going back to India, they will, if they have to visit one project, it will take a full day. Here we are displaying 200 plus projects directly from the builders without any intermediaries.
0: Wonderful.
1: So anybody who is looking for a property, they can get full update about various cities, micro markets, and how the real estate is performing back in India.
0: वंडरफुल, 200 से भी ज्यादा वेंडर्स यू आर ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इस बार मेरे को सुनने में यह आया है कि आपके पास फार्मलैंड्स ही नहीं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, कॉन्डोमिनियम्स अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ लग्जरी प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल एज वेल। सो ये सारा कॉम्बिनेशन आप इस बार लेके आ रहे हैं?
1: Yeah, we are bringing all of them under one roof.
0: ये भी सुनने को मिला है सर कि इस पे जो डील्स होंगी वो ये एक्सपो ओनली डील्स होंगी जो कि बाहर या इस एक्सपो के आउटसाइड या इसके बिना नहीं मिलेंगी, इज दैट राइट?
1: करेक्ट, देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच आर अंडर प्री लॉन्च, दोज प्रोजेक्ट्स आर एक्सक्लूसिव फॉर पीपल हु आर लिविंग इन डैलस, सो दोज प्रोजेक्ट्स they will get a price where that will be the lowest price and from there it will start, the project will be launched from that price onwards.
0: Wonderful people, agar aapne leni hai apni property in India and you want to do it for investment purposes, this is the opportunity. India is a growing market. Aap aaj hi call karein Srinivas Verma ko 925-913-8049 or go on to the website which is grahpravesh.com. That's grahpravesh.com and you'll be able to see everything that you need to there. With that, it is thank you to Mr. Verma and I encourage you all to go out there and make sure to attend this expo if you're looking to grow your property India in India. grahpravesh.com is that website. Naya Gana from Badshah is rocking for you, came out 17 hours ago. You're listening to it first on Fun Asia.

0: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
1: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
0: रोज का सेम प्रॉब्लम।
2: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
3: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
2: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
4: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
5: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
6: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
7: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है? हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सास। चैट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
8: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट taxi@5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी टेक्सास।
9: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
14: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and 4th from 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. They are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts throughout the day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. In Ravi's, just bigger, older and be more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
16: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
17: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

मैडम जी पूछती हैं मुझ जैसे एक बच्चे से, कहती हैं अगर मेहनत करोगे तो क्या मिलेगा। मैंने बोला मैडम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी और क्या मिलेगा, इतना तो मेरे को, आई एम वेरी स्मार्ट किड इन द स्कूल। मैडम कहती वेरी गुड, और अगर नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। मैं कहा तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस। कहती व्हाट डू यू मीन, कैसा एक्सपीरियंस। मैंने कहा फेल होने का। देखो भैया फेल होना भी एक एक्सपीरियंस है, ऐसी थोड़ी यार हर बंदा पास हो जाए, ये भी दस्तूर नहीं है लाइफ का। कोई पास होता है, कोई फेल होता है, किसी के अच्छे नंबर आते हैं, किसी के कम नंबर आते हैं, बट हर बंदा अपना अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब जैसे मेरे को देख लो, मैं मैथमेटिक्स में ना 10th के बोर्ड एग्जाम में फेल हूँ, मेरे 30 नंबर आए थे, 30, पर मैं ICSE बोर्ड में था। देखो ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह होता है, यहाँ भी भगवान ने अपने को बचा लिया, क्योंकि अपना था ICSE बोर्ड, उसमें एक सब्जेक्ट में फेल होना अलाउड होता है, ये अपने बच्चों को नहीं बताना ओके, पर एक सब्जेक्ट में फेल होना अलाउड होता है, इंग्लिश को छोड़ के। और इंग्लिश में तो हम वैसे ही A1 चैंपियन, 78 नंबर थे मेरे 10वीं में। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पता कितने नंबर थे मेरे, 99। अब इसकी वजह से हमारी परसेंटेज उठ के आ गई 65, फर्स्ट क्लास में पास हुआ है लड़का, और क्या चाहिए।

आप लोग ना एक काम करना, विल्स और ट्रस्ट तो आप बनवा लेते हो, एक चीज आपने और करनी है कि अपने ना फोन का कुछ जुगाड़ कर लेना। हाँ, कहीं आप टपक गए, आप तो चले गए ऊपर, पीछे आप कर जाएगा फोन, अगर वो खुल गया तो फिर क्या होगा मेरे भाई। इसलिए एक आपने विल में ये भी लिखना है, मेरी डेथ होते ही फोन को बर्बाद कर दिया जाए, आग लगा दी जाए। आजकल ना मुझे टीचर वाली फीलिंग आ रही है। आजकल ना हम आरजेस को ट्रेन कर रहे हैं, और आज भी एक ट्रेनर हमारे पास आई है, काव्या उनका नाम है, बेंगलोर से हैं, और मुझे लगता है काव्या बड़ा अच्छा काम करने वाली है। बड़े ध्यान से हर चीज़ को देख रही हैं, नोट्स भी बना रही हैं। इससे पहले किसी ने नोट्स नहीं बनाए मेरे पास, बट ये लड़की लगता है कुछ ना कुछ करेगी। आने वाले दिनों में आंदोलन होने वाला है, आने वाले दिनों में बदलाव होने वाला है, और काव्या वो बदलाव लेके आएगी, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लगाने लगाऊँ। एक गाने की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास नुसरत साहब की आवाज़ में, और वो गाना थोड़ा सा मुझे लगा कि इस माहौल के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं सर, हम गाना वो लगाते हैं जो सबको भाए, एंड दैट इज नन अदर देन आफरीन आफरीन फ्रॉम राहत साहब, नुसरत साहब। इस गाने के साथ साथ मुझे आप लोगों से एक सवाल है कि अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड देयर डेस्टिनेशंस एंड देयर गोल्स एंड यू नो जो उनकी डेस्टिनी है वो वहाँ अपनी लाइफ टाइम में जीते जीते पहुँच जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जो जिनको उनकी मंजिल मिल जाती है, हु आर दोज पीपल जिनको मंजिलें मिलती हैं, क्या वो कुछ अलग करते हैं, क्या वो कुछ डिफरेंट करते हैं, क्या डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए मंजिल पाने के लिए, बताइए ज़रा।

0: मतलब एक टाइम पे तो वैसे गाना बहुत अच्छा गाया है, बट एक टाइम पे ऐसा लिखा था उधर चल जा, उधर चल जा, या पानी लेके आ, पानी लेके आ, मतलब गुस्से में जैसे नुसरत साहब ना गला सूख गया गाना गाते, पानी लेके आ। तो मैं अगली बार जब अगर कभी मेरा दोबारा जन्म हुआ नुसरत साहब हुए तो मैं पानी लेके खड़ाऊंगा ताकि वो पानी लेके आ ना करें। अच्छा, मैंने पूछा था कि मंजिलें किसको मिलती है, मेरे साथ जुड़े हुए अभिषेक भाई, जयपुर के अभिषेक भाई हैं ये, मथानिया मिर्च इन्होंने बहुत खाई है बचपन में। मेरे को ये बताएं अभिषेक भाई, कौन लोग हैं जिनको मंजिल मिल जाती है, व्हाट डू दे डू डिफरेंट?
1: आई थिंक कुछ डिफरेंट ही करना, बस जैसे आपने बताया 10% 65% लाने,
0: 65% ये क्या बात
1: है, उन सबको मंजिल मिल जाती है।
0: 65% ले आओ, आगे की मंजिलें बननी शुरू हो जाएंगी, क्या बात है। थैंक यू।
1: मेकर गणित में 30 मार्क्स पक्का
0: नहीं। हाँ, मैथमेटिक्स में फेल हो जाओ कोई बात नहीं, बाकी किसी में नहीं होना, मतलब बाकी में भी हो जाओ इंग्लिश में नहीं होना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। मैंने पूछा यार आप लोगों से कि वैसे नो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू नो मैं जब भी देखता हूँ तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन लाइफ। जैसे अब अगर दिलजीत दोसांझ की बात की जाए तो दिलजीत दोसांझ इज मेड फॉर सिंगिंग, दिलजीत दोसांझ इज मेड फॉर एक्टिंग, एंड ही फाउंड इट एंड ही न्यू व्हाट ही वाज मेड फॉर। और मैं ये कहूँगा कि जो उनकी मंजिल है वो उनके साथ साथ चल रही है, ही इज फाउंड इट। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट डिड दिलजीत डू स्पेशल, क्या इन्होंने कुछ डिफरेंट किया, या इनके अलावा वो कौन लोग होते हैं जिनको मंजिल मिल जाती है, क्या वो कुछ डिफरेंट करते हैं, उनका डेडिकेशन अलग है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, खाना डिफरेंट खाते हैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि ये लोग क्या ऐसा करते हैं कि इनको मंजिल या मंजिलें मिलती हैं, कौन लोग हैं ये और क्या डिफरेंट करते हैं जिनको मंजिलें मिलती हैं। सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताइए। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने इस बार फिर से टुनाइट शो पे बजा दिया पटाखा, पंजाबी आ गए ने जी, और उन्होंने बता दिया है कि पंजाबी जब आते हैं तो वाकई छा जाते हैं। Here we go with the track that is making sensations across the globe, मोरनी।

0: ऑल राइट जी, मैंने आपसे पूछा था सवाल कि भैया ये कौन बंदे हैं, मंजिलें मिल जाती हैं यार, हम लोग तो सारी उम्र लगे हुए हैं अभी तक पता नहीं लगा कौन कौन सी मंजिल है, ये लोग क्या कुछ डिफरेंट करते हैं। कई लोगों ने जवाब दिया जी, एक ने बोला जी कि 65% मारविन दास की तरह ले आओ मंजिल मिलनी शुरू हो जाएगी, किसी और ने बोला नहीं वो एक्चुअली ना दुनिया को फोकस नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हैं, डोंट लुक एट व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, एंड ऐसे हो जाता है। मेरा सवाल अभी भी आप लोगों से कंटिन्यूड है, बिकॉज मुझे पता है आपके पास इतना ज्ञान है, कोई ना कोई तो चाहेगा कि अपना टिप्पणी भी दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और इसीलिए मैं बैठता हूँ ताकि मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज देख सकूँ। और आपको पूछ रहा हूँ वही सवाल कि भाई क्या मतलब समथिंग डिफरेंट दे डू, कुछ खाते अलग हैं, माँ ने गुड़ती अलग दी होती है, मम्मा ने बादाम ज़्यादा खिलाए होते हैं भिगो के बचपन में, व्हाट इज़ द सिचुएशन आपसे पूछ रहा हूँ। पर उसके साथ साथ एक गिव अवे आ गया मेरे पास, विच इज़ फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, और रेड हॉट चिली पेपर का खाना ओए होए होए होए मत ही याद दिलाओ ना, पर क्या करें नौकरी है, रोज़ उनकी बात करता हूँ, रोज़ मुँह में पानी आता है, फिर सोचता हूँ कि नहीं नहीं बेटा घर पर बीवी ने जो बनाया वो नहीं खाया तो कल क्या करोगे, मतलब समझ रहे हो ना, हैप्पीनेस इज डिराइव्ड ऑन सिचुएशन अराउंड यू। तो आपके पास मौका है रेड हॉट चिली पेपर का बटर चिकन जीतने का जी, यमीलिशियस बटर चिकन बनाते हैं, या आप जीत सकते हैं उनका ड्राई चिली चिकन या उनका बेबी कॉर्न मंचूरियन। कंडीशन ये है कि आपने पहले ये गिव अवे नहीं जीता होना चाहिए फॉर 30 डेज, एंड इफ यू आर कॉलिंग इन एलन रिचर्डसन या मिकिनी की लोकेशन से आपको इसको पिक करना है, फ्रिस्को इज नॉट अलाउड। आज एक जन्मदिन है जी इंसान का, जिन्होंने एक टीवी सीरियल में हनुमान का रोल प्ले किया था, एंड दैट वॉज द टीवी शो कॉल्ड जय वीर हनुमान, एंड इनके पिता ने रामायण में वो ही रोल प्ले किया था। इनके पिता बहुत बड़े रेसलर थे, एक ऐसे एक्टर थे जिनसे हिंदी बोली नहीं जाती थी पर उनसे हिंदी बुलवाई जाती थी हिंदी फिल्मों में, और वो पंजाबी एक्सेंट के साथ ही बोलते थे, समझ गए आप। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि पॉल्स आ जाती है, आपने फटाफट मुझे बताना है क्या नाम है इस बंदे का जिसका आज है जन्मदिन, हनुमान का रोल प्ले किया था जय वीर हनुमान फिल्म में सीरीज में, और इनके पापा ने रामायण में हनुमान का रोल प्ले किया था। लेट्स सी कौन है मेरे साथ, इनसे कर लेते हैं हम बात, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो नहीं तो मैं आगे की तरफ चला जाता होता हूँ। आपका नाम बताओ, कॉलर नंबर 3 जो होगा उसको दूंगा मैं इनाम, पहले आप हो कौन बोल रहे हैं सर, सर या मैडम
1: कौन मेरे से बात कर रहे हैं,
0: आप ही से कर रहा हूँ मालिक,
1: अच्छा मुझे लगा रेडियो पे बोल रहे हैं आप, कॉलर नंबर 3
0: रेडियो,
1: मेरा नाम आनंद है वैसे,
0: आनंद आ गया आनंद भाई आपसे बात करके, कैसे हैं सब ठीक है
1: सब बढ़िया चंगा बिल्कुल चंगा।
0: अच्छा
1: तो आप दारा सिंह जी की बात कर रहे हैं,
0: नहीं नहीं नहीं उन्होंने तो रोल, हाँ, क्या हुआ
1: मैंने, अच्छा अच्छा
0: कोई बात नहीं, आप क्लोज हो ऐसे मत सोचना आनंद भाई कि आप बहुत दूर हो मंजिल से, मैथ्स में मैं भी फेल हुआ था 10वीं में 30 नंबर थे, कोई बात नहीं। अच्छा आपको ये पता है कि ये जो लोग जिनको अपनी मंजिल मिल जाती है, जिनको मंजिलें मिलती हैं, वो कुछ डिफरेंट करते होंगे क्या, आपकी ओपिनियन क्या है उस बारे में,
1: जिन लोगों को अपनी मंजिल मिल जाती है वो क्या करते हैं,
0: कुछ डिफरेंट करते हैं,
1: तलाश वही करते हैं बेसिकली, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलते हैं,
0: अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले जाते हैं। हेलो, अपना रेडियो का वॉल्यूम नीचे कर लो, अब मैं आपको सुन रहा हूँ, आपका नाम?
2: मेरा नाम अंशु है।
0: अंशु जी कैसी हैं?
2: अंशु जी
0: हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पिछले हफ्ते ही मैंने आपको ये इनाम दिया था, थैंक यू आपकी कॉल का, दूसरे नंबर की कॉलर आप थी। गुड इवनिंग फाइनेंशिया, कौन बोल रहा है, रेडियो वॉल्यूम लो योर वॉल्यूम अप, कौन बोल रहे हैं जी? दर्शन जी कैसे हैं, आपके दर्शन हो गए, हम आज प्रसन्न हो गए, गार्डन गार्डन हो गया दर्शन साहब,
3: धन्यवाद, थैंक यू।
0: अच्छा मतलब शादी हो गई आपकी?
3: हाँ जी बिल्कुल,
0: मतलब ना चाहते हुए बीवी को आपके दर्शन करने ही पड़ते हैं अच्छा दर्शन साहब किसकी बात कर रहा था मैं, जिन्होंने जय वीर हनुमान में हनुमान का रोल प्ले किया और इनके पापा ने रामायण में रोल प्ले किया था हनुमान का, किसकी बात कर रहा हूँ मैं
3: सर? ये बिंदु
0: दारा सिंह। अब आप मुझे ये बताओ कि आप रेड हॉट चिली पेपर की लोकेशन पे जा सकते हो?
3: हाँ जी बिल्कुल।
0: चलो फिर आप होल्ड करेंगे मेरे लिए, आप जीत चुके हैं रेड हॉट चिली पेपर का बटर चिकन, यानी कि मक्खन वाला चिकन खाएंगे, बॉडी बन जाएगी दारा सिंह की तरह, एंड यस इट इज बिंदु दारा सिंह उनका सपुत्र, सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, आप करेंगे होल्ड मेरे लिए। और ये ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बात पता क्या है, मंजिलें उनको मिलती हैं, मैं बताता हूँ इतना ज्ञान तो आपको पता है लड़के में है, मंजिलें उनको मिलती हैं बेसिकली लाइफ में जिनको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता, किसी को पहली मंजिल पे घर मिलता है, किसी को दूसरी पे, किसी को तीसरी पे, तो इन लोगों को मंजिलें मिलती हैं जिनको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलता।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Laptop, charger, coffee, phone. Oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
7: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
6: ओ गॉड, पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
7: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
6: कैसे?
7: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
6: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
7: या कैरेट लेन काइंड.
8: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
9: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
8: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
10: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: सब कुछ साफ रख सकते हो,
13: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
14: क्योंकि ये कौन बोला?
13: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
15: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
16: I've been researching retirement planning.
17: Oh, really? Where?
16: Google, YouTube, a guy on TikTok.
17: Or you could just talk to WealthTactic.
16: What's the difference?
17: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
18: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
23: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वंडरफुल ट्रैक कोक स्टूडियो, एंड कोक स्टूडियो की तो मतलब बात ही कुछ और है यार. द वे द म्यूजिशियंस कम टुगेदर, द वे दे प्लान देयर एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन कोक स्टूडियो. मैं कोक स्टूडियो का बहुत बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड आई थिंक फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज द वे दे मेक म्यूजिक इट जस्ट सिंपली टचेज योर हार्ट. यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो. 6:49 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में. दैट मीन्स आई एम अबाउट टू फिनिश माई शो. बट उससे पहले आपको मैं ये बता दूंगी, गृह प्रवेश का जो इवेंट है दैट इज गोइंग बी ऑन द 9th and 10th of May फॉर यू, एंड इट्स नॉट फार. यानी कि इस सैटरडे और संडे आप अगर चाहते हैं कि आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी हो, हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को आपके लिए ये इवेंट लाया है. 200 से भी ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होंगे. चाहे आप विलास ढूंढ रहे हैं, प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं, या मेरी तरह फार्मलैंड के शौकीन हैं, दे हैव दैट एज वेल. इफ यू लुकिंग फॉर रेडी टू मूव इन होम्स, ये भी अवेलेबल है. मतलब यू साइन द डील टुडे, यू कैन मूव इन टुमारो. लॉन्चेस हैं जो आपके लिए इस इवेंट पे वो स्पेसिफिकली डिजाइन है टू गिव यू सम ऑफ द डील्स व्हिच विल नॉट बी अवेलेबल एनीवेयर. इफ यू आर ड्रीमिंग योर होम, गेट इट राइट नाउ with Greg Pravesh. GregPravesh.com is the website to register, or you can simply walk in on the 9th and 10th of May, which is this Saturday and Sunday, Hyatt Regency in Dallas.

स्टेज थ्री इटरी अगर अभी तक आप नहीं गए हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में? डालस में इतना अच्छा गहना आपके लिए आया है, उनकी पालक पत्ता चाट खाओ, बोलो मारविन भाई ने बोला था कि जबरदस्त मिलती है, और बाई गॉड अगर मजा ना आना है पैसे मैं दूंगा, साथ साथ आप उनका गलौटी कबाब खाओ, और अगर मटन के शौकीन हो तो भैया वहाँ की नवाब्स रैनसम मटन बिरयानी आपने नहीं खाई तो जिंदगी में आपने कुछ नहीं खाया भैया। पेज थ्री इटरी नाउ विद अ फुल सर्विस बार, चाहे लंच हो, डिनर हो या हो ब्रंच, कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स आर अवेलेबल फॉर यू। पेज थ्री इटरी .com is that website. One more track और उसके बाद लूंगा आपसे आज के लिए इजाजत। एंड आई एम गोना टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट रवि इंपोर्ट्स, अ नेम दैट यू हैव ऑल हर्ड, दे ब्रिंगिंग समथिंग स्पेशल। क्या है बताता हूँ राइट आफ्टर दिस नेक्स्ट ट्रैक। हियर वी गो।

0: वंडरफुल ट्रैक, वंडरफुल मूवी. अगर आपने अभी तक शाहिद कपूर की ये फिल्म नहीं देखी है, देन आई विल रेकमेंड यू वॉच इट. मेरी रिकमेंडेशन पे देख लो. आई विल ये बोल सकता हूँ मैं आपको कि आप इस फिल्म से बोर नहीं होगे. नंबर टू, द एक्टिंग ऑफ दिशा एंड नहीं अपना ये कियारा, नहीं कियारा नहीं, क्या नाम है उसका, तृप्ति दिमरी, यार मैं यूनिवर्सल क्रश को कैसे भूल गया. तृप्ति दिमरी ने ऐसी एक्टिंग की है कि आई नो दैट शी इज़ डन 5-7 मूवीज़ बिफोर दिस, बट ऐसा लगता नहीं है कि शी जस्ट गॉट इनटू द इंडस्ट्री. इट फील्स लाइक शी इज़ अ होन्ड आर्टिस्ट. एंड शाहिद कपूर ऑफ कोर्स इज़ अ जेम ऑफ एन एक्टर. डांसिंग ले लो इनकी, इनकी इमोशनल एक्टिंग ले लो, इनकी कॉमेडी ले लो, इनका एंगर ले लो. आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट मैन व्हेन इट कम्स टू डूइंग एक्टिंग. ये फिल्म जरूर देखिएगा. मेरा वक्त हो गया है जी आज के लिए आपसे इजाजत लेने का. उस ऊपर वाले का धन्यवाद. फॉर अनदर वंडरफुल डे, आई होप दैट यू गाइज हैव अ वंडरफुल नाइट. दुआओं में मुझे याद रखिएगा. आई विल डू द सेम फॉर यू. एंड मेक श्योर दैट द मैन और द वुमन इन द मिरर, जिसको भी आप देखते हो ना, जब चेहरा अपना देखते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी सब नॉइज है. यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सो दैट अदर्स अराउंड यू आर हैप्पी एंड वेल एज वेल. विद दैट इट्स गुड नाइट. अडियोस. शबा खैर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
2: Oh. उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Chicken banana. चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Inefficient man.
11: Very complex.
12: Clumsy ho.
11: Are confusion hi confusion hai. Abhe!
13: Disjointed software को यूज करना इतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ. अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. काम एक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: यार, boss